मीडी वेव 241.546 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:56 और 42 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और

लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुने लोबिया की खेती विषय पर दिनेश कुमार सिंह की ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, आज हम लोबिया की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है। खेत पूरी तरह से समतल होना चाहिए ताकि खेत में एक समान नमी मौजूद रहे। मिट्टी में जल निकास की भी व्यवस्था होना ज़रूरी है, क्योंकि खेत में पानी लग जाने से एक तो अंकुरण सही ढंग से नहीं हो पाता है, और दूसरे यदि जमा हो भी जाता है तो ज़्यादा नमी की स्थिति में फसल की बढ़वार भी सुचारू रूप से नहीं हो पाती। खेत का सही चुनाव करने के बाद उसकी एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके दो जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। बगैर उर्वरकों के प्रयोग के कोई भी खेत तैयार नहीं कहा जा सकता। अतः लोबिया की सफल खेती के लिए 10 से 15 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से तत्व के रूप में, यानी कि 25 किलोग्राम यूरिया एवं 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरक के रूप में देना चाहिए। इतना करने के बाद खेत तैयार हो जाता है और फिर काम शुरू होता है बुआई का। इसकी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उनमें प्रमुख हैं टाइप 5269, टाइप 2 और यूपीसी 4200। इनमें से जो भी प्रजाति मिल जाए ले करके बुआई करें। एक हेक्टेयर में बुआई के लिए 30 किलोग्राम बीज लगता है। अगर दाने के लिए खेती करना है तो टाइप 2 प्रजाति लेना चाहिए। एक हेक्टेयर में बोने के लिए इसका 30 किलोग्राम बीज लगता है तथा इससे एक हेक्टेयर में 14 से 16 कुंटल दाना मिल जाता है। यह प्रजाति 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। जब अच्छी प्रजाति का बीज उचित मात्रा में मिल जाए तो बोने से पहले इसको शोधित कर लेना चाहिए, पहले थीरम नामक रसायन से और फिर विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से। थीरम की 25 ग्राम मात्रा 10 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए आवश्यक होती है। किसी घड़े में बीज एवं आवश्यक दवा की मात्रा डालकर घड़े का मुंह किसी पॉलीथीन से बांधकर घड़े को अच्छी तरह से झकझोर देते हैं। ऐसा करने से दवा बीज पर अच्छी तरह लग जाती है। फिर राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित कर लेते हैं। 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट पर्याप्त होता है। इसके लिए आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल करके फिर इस घोल को बीज में अच्छी तरह से मिला करके और फिर बुआई करते हैं। दाना व हरी फलियां प्राप्त करने के लिए बीज की बुआई पंक्तियों में ही करनी चाहिए, यानी दाने वाली टाइप 2 प्रजाति की बुआई के लिए लाइन से लाइन की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर तथा टाइप 5269 जो कि फलियां प्राप्त करने के लिए होती है, इसकी बुआई के लिए लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगर चारे अथवा हरी खाद के लिए लोबिया बोते हैं तो बुआई छिटक कर कर सकते हैं। बरसात में सिंचाई की आवश्यकता तो होती नहीं है। हाँ, यदि

0: सूखे की स्थिति हो तो एक या दो सिंचाई कर देनी चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन बाद यदि आवश्यक हो तो एक निकाई गुड़ाई भी कर देनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर लोबिया की खेती करनी चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लोबिया की खेती विषय पर दिनेश कुमार सिंह की जानकारी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रत्येक व्यक्ति के मानस पटल में बस गया है कि कोई भी कार्य आरंभ करने से पूर्व मुंह से निकल ही जाता है, आइए श्री गणेश करते हैं।

भगवान का रास्ता बड़ा ही सीधा है और बड़ा ही उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बहुत सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, भाव से चलो तो बहुत पास।

हे प्रभु, आनंद मिला बस आपकी चरणों में, अपनों की बातों में वो आनंद नहीं, सब एक ढोंग है। जो आनंद मिला बस आपके चरण कमलों में।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में आज शामिल कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, जगजीत सिंह, प्रीति सागर और डॉक्टर शांति जैन। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विचार बिंदु।
1: जब आपका मन टूटने लगे, तब भी यह आशा रखें कि प्रकाश की कोई किरण कहीं न कहीं से निकलेगी और आपकी जीवन नैया डूबेगी नहीं, पार लगेगी। चरित्र मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ संपदा है। यही वो धुरी है जिस पर मनुष्य का जीवन सुख शांति और मान सम्मान की अनुकूल दिशा अथवा अशांति असंतोष की प्रतिकूल दिशा में गतिमान होता है। जिसने अपने चरित्र का निर्माण आदर्श रूप में कर लिया, उसने मानो लौकिक सफलताओं के साथ पारलौकिक सुख शांति की संभावनाएं स्थिर कर ली, और जिसने अन्य नश्वर संपदाओं के माया मोह में पड़कर अपनी चारित्रिक संपदा की उपेक्षा कर दी, उसने मानो लोक से लेकर परलोक तक के जीवन पथ में अपने लिए कष्टप्रद पड़ाव का प्रबंध कर लिया। यदि सुख की इच्छा है तो चरित्र का निर्माण कीजिए, धन की कामना है तो आचरण ऊंचा कीजिए, स्वर्ग की लालसा है तो भी चरित्र को देवों के तुल्य बनाइए, और यदि आत्मा परमात्मा अथवा मोक्ष मुक्ति की जिज्ञासा है तो भी चरित्र को आदर्श और उदात्त बनाना होगा। जहां चरित्र है वहां सब कुछ है, जहां चरित्र नहीं वहां कुछ भी नहीं। चरित्र की रचना संस्कारों के अनुसार होती है और संस्कारों की रचना विचारों के अनुसार। अस्तु आदर्श चरित्र के लिए आदर्श विचारों को ही ग्रहण करना होगा। पवित्र कल्याणकारी और उत्पादक विचारों को चुन चुन कर अपने मस्तिष्क में स्थान दीजिए। अकल्याण कर दूषित विचारों को एक क्षण के लिए भी पास मत आने दीजिए। अच्छे विचारों का ही चिंतन और मनन कीजिए। अच्छे विचार वालों से संसर्ग करिए, अच्छे विचारों का साहित्य पढ़िए और इस प्रकार हर ओर से अच्छे विचारों से ओत प्रोत हो जाइए। कुछ ही समय में आपके उन शुभ विचारों से आपकी एकात्मक अनुभूति जुड़ जाएगी, उनके चिंतन मनन में निरंतरता आ जाएगी, जिसके फल स्वरूप मांगलिक विचार चेतन मस्तिष्क से अवचेतन मस्तिष्क में संस्कार बन बनकर संचित होने लगेंगे, और तब उन्हीं के अनुसार आपका चरित्र निर्मित और आपकी क्रियाएं स्वाभाविक रूप से आप संचालित होने लगेंगी। आप एक आदर्श चरित्र वाले व्यक्ति बनकर सारे श्रेयों के अधिकारी बन जाएंगे। मन और मस्तिष्क मानव शक्ति के अनंत स्रोत माने जाते हैं, और जो वास्तव में हैं भी, उनका प्रशिक्षण विचारों के द्वारा ही होता है। विचारों की धारणा और उनका निरंतर मनन करते रहना मस्तिष्क का प्रशिक्षण कहा गया है। उदाहरण के लिए, जो कोई भी व्यक्ति अपने मस्तिष्क में विचार रखकर उसका निरंतर चिंतन और मनन करता रहता है, वे विचार अपने अनुरूप मस्तिष्क में रेखाएं बना देते हैं। ऐसी प्रणालियां तैयार कर दिया करते हैं कि मस्तिष्क की गति उन्हीं प्रणालियों के बीच ही उसी प्रकार बंधकर चलती है जिस प्रकार नदी की धार अपने दोनों

0: तटों से मर्यादित होकर प्रवाहमान रहती है। यदि दूषित विचारों को लेकर मस्तिष्क में मंथन किया जाएगा तो मस्तिष्क की धाराएं दूषित हो जाएंगी, उनकी दिशा विकारों की ओर निश्चित हो जाएगी और उसकी गति दोषों के सिवाय गुणों की ओर न जा सकेगी। इसी प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति मस्तिष्क में परोपकारी और परमार्थी विचारों का मनन करता रहता है, उसका मस्तिष्क परोपकारी और परमार्थी बन जाता है और उसकी धाराएं निरंतर कल्याणकारी दिशा में ही चलती रहती हैं। इस प्रकार इसमें कोई संशय नहीं रह जाता है कि विचारों की शक्ति अपार है। विचार ही संसार की धारणा के आधार और मनुष्य के उत्थान पतन के कारण होते हैं। विचारों द्वारा प्रशिक्षण देकर मस्तिष्क को किसी ओर मोड़ा और लगाया जा सकता है। वस्तुतः बुद्धिमानी इसी में है कि मनुष्य मनोविकारों और बौद्धिक चिंतन में से वास्तविक विचार चुन ले और निरंतर उनका चिंतन और मनन करते हुए मस्तिष्क का परिष्कार कर डाले। इस अभ्यास से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान, परोपकारी, परमार्थी और मुनि, मानव या देवता का विस्तार पा सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुने बच्चों में सर्दी के कारण, लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर वी के शुक्ला की ये जानकारी।
2: ध्यान देना कि लेट कर कभी भी माँ दूध न पिलाए बच्चे को। ये बहुत, इसको सडन इन्फेंट डेथ बोलते हैं हम लोग, और ये बहुत होता है। हम लोग अक्सर देखते हैं बच्चे को, माँ लेटी है, दूध पिला रही है, बच्चा दूध पीते पीते सो गया और दूध सरक कर सांस की नली में चला गया। तो अगर वो 1 ml भी दूध सांस की नली में गया तो बच्चा लेटे लेटे ही उसकी डेथ हो जाती है और पता नहीं लगता। माँ सोचती है कि हम तो बच्चे को अभी दूध पिलाए हैं, बच्चा तो मेरा ठीक था। तो इसलिए लेट कर कभी दूध नहीं पिलाना है। जब भी दूध पिलाना हो, दिन में या रात में, बच्चे को बैठकर गोद में लेकर बाएं हाथ से उसके सर को थोड़ा ऊंचा उठा लें, तब उसको दूध पिलाएं। और अगर बच्चा पीते पीते सो जाता है तो थोड़ा सा उसका स्टिमुलस उसके तलवे में थोड़ा सा अंगली से गुदगुदा दें या थोड़ा सा स्क्रैच कर दें, जिससे बच्चा जब दूध पिए तो जगा रहे। नींद में वो दूध कभी ना पिए और 6 महीने तक केवल माँ अपना ही दूध पिलाएं। ये अमृत है, ये बहुत सी बीमारियों से बचाता है, ये निमोनिया से खासकर बचाता है। जो बच्चे माँ का दूध केवल पीते हैं उनको निमोनिया के वैक्सीन की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो नए हैं उनके लिए सबसे जरूरी है। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो जन्म के समय ही उसको BCG, पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी का टीका दे दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर ही उसको दे देते हैं। और उसके बाद जब बच्चा 6 वीक का होता है, 6 सप्ताह का, फिर हर 1 month पर 6 वीक, फिर 10 वीक, फिर 14 वीक, ये हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, इवन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में हम लोग इसको लगवाते हैं। और जो टीके प्राइवेट में लगते हैं, सब टीके वही जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाते हैं। प्राइवेट में बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं, 9,000-10,000 रुपए पड़ जाते हैं। ये टीके हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में और जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर फ्री में बच्चों को लग जाता है। तो टीकाकरण सबसे जरूरी है, इसको जरूर कराएं। इसमें निमोनिया का टीका भी होता है। बहुत सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से। अगर उनका सांस का गति 1 मिनट में 24 बार से ज्यादा हो रहा है तो बच्चे को तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर और हेल्थ सेंटर पर उसका इलाज करना चाहिए। कभी भी इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जो लोकली और आराम से जो आहार मिल जाए वो सबसे बेस्ट मानते हैं हम लोग। ये नहीं कि जो चीजें बहुत महंगी हैं तो वो बहुत अच्छी होंगी, ऐसा कोई एक कॉन्सेप्ट उनको नहीं रखना चाहिए। उनके क्षेत्र में अगर दाल अच्छी हो रही है, सब्जी हो रहा है, गाजर है, आंवला है, तो ये सब को वो दें। ये ना सोचे कि ये फल 600 रुपए किलो का है तो हम इसको मांगा कर इनको बच्चे को खिलाएं। आजकल ट्रेंड हो गया कि अगर आप कहिए बच्चे आएंगे, कहिए कि बुखार है इसका तो प्लेटलेट्स कम है, तो फट से कह देंगे कीवी खिला दें डॉक्टर साहब, पहला क्वेश्चन ही होता है। और जबकि उससे कुछ भी नहीं होता है। जो फल सीजनल हो, मौसमी हो, जैसे आजकल अमरूद का सीजन है, पपीते का सीजन है, संतरा का सीजन है, वो फल खिलाएं। अब ये नहीं कि इस मौसम में जो फल नहीं है वो बहुत महंगे हैं तो बहुत पैदा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हरी सब्जियां, दूध है, छेना है, पनीर है, अगर नॉन वेज खाते हैं तो अंडा सबसे बेस्ट है। अंडा जाड़े में दें बच्चे को, प्रोटीन बहुत अच्छा उससे मिल जाता है। और जो भी दें जितना बना

0: खाएं, उसको खिला दें, उसको रख कर दोबारा गर्म करके न खिलाएं। बाहर में पहले तो पानी का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, वो पानी या तो बॉयल करके पिए जहां, या तो बिसलरी का पानी पिए। हर जगह का पानी नल का है ये कभी पूर्ण पिए। पानी से ही मैक्सिमम इन्फेक्शन होते हैं, चाहे डायरिया हो, टाइफाइड हो, चीजें हो। उसके बाद खाने में विशेष ध्यान रखें, जो स्ट्रीट फूड्स हैं उसको कभी न दें। मतलब बच्चे को देने से ये रहता है कि बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस, पेट के टट्टी है, उल्टी है, ये सब डायरिया शुरू हो जाता है। हम चूंकि बनारस में गोदुलिया पर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत से टूरिस्ट आते हैं, तो ज्यादातर होटलों में रुकते हैं और यहीं बच्चों को लेके आ जाते हैं कि टट्टी हो रहा है, उल्टी हो रहा है। तो फूड पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, बल्कि घर से कुछ होम मेड फूड बना कर ले जाएं वो ज्यादा अच्छा है, और बजाय जो होटल के जो स्पाइसी फूड हैं, तेल घी चिकना और ये सब चीजें, इसको उनको अवॉइड करना चाहिए।
1: बच्चों में सर्दी कारण लक्षण और बचाव विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वी के शुक्ला की जानकारी। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने देववाणी संस्कृत में रचित मंगलाचरण से किया है। इन छंदों में शंकर तथा श्री राम सहित अन्य देवताओं की स्तुति की गई है। प्रथम सोपान बालकांड के आरंभ में सरस्वती, गणेश, पार्वती, शंकर, कविश्वर वाल्मीकि तथा हनुमान की वंदना की गई है। द्वितीय सोपान अर्थात अयोध्या कांड गुरु रूप श्री शंकर तथा नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले श्री राम की स्तुति से आरंभ होता है, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती, मस्तक पर गंगा, ललाट पर द्वितीय का बालचंद्र, कंठ में हलाहल विष तथा वक्षस्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित हैं, भस्म से विभूषित शरीर, देवताओं में श्रेष्ठ संहारकर्ता तथा भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापी कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले ऐसे देवाधिदेव महादेव से गोस्वामी तुलसीदास अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भक्त कवि की कामना है कि रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र, जिनका मुखमंडल ना तो राज्याभिषेक से प्रसन्न हुआ और ना ही जो वनवास के दुख से मलिन हुआ, सदा मंगलदायी हों। नीले कमल के समान श्याम वर्ण और कोमल अंग हैं जिनके, सीता जी जिनके वाम भाग में अवस्थित हैं, जिनके हाथों में अमोघ वाण और धनुष शोभित हैं, उन रघुवंश नाथ का तुलसीदास नमन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आज के मानस पाठ की इस कड़ी के कलाकार थे पंडित राजन साजन मिश्र। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियावेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए एक नजर डालते हैं आज केंद्र से प्रसारित प्रमुख कार्यक्रमों पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनेगा विदुषी किशोरी अमोनकर का गायन। दिन 12:45 पर सुनेगा संजय कुमार मिश्रा का शास्त्रीय गायन और सुबह 7:31 पर सुनेगा उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन। उर्दू कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनिएगा रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8:00 और दिन 12:30 पर सुनेगा प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के गाए भजन और गीत। अंग्रेजी कार्यक्रम होगा शाम 7:00 से, जिसमें सुनिएगा सोनिया कुमार की टॉक द एथिक्स ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन टॉपिक पर। किसान भाई रोजाना की तरह सुनेंगे कृषि जगत शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा खेती में उपयोग उन्नत कृषि यंत्र विषय पर डॉक्टर अनुपम कुमार नेमा से राकेश यादव की सुनेगा बातचीत। अलावा इसके सुकेशी ऋषभ का गाया लोकगीत सुनेगा। इनके गाए लोकगीतों को आप दिन 1:45 पर और सुबह 9:50 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुन सकेंगे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:15 पर। कार्यक्रम में आज की होगी बात, साथ ही मार्गदर्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और सुनेगा फिल्म संगीत। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी दिन 1:15 पर। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा होगी बातचीत, साथ ही सुनिएगा गीत संगीत और जायका। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12:00 से। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में रसमाद्री सुनिएगा रात्रि 8:15 पर, रसरंग शाम 7:31 पर, फिल्म संगीत शाम 6:10 पर और शाम 5:00। दिन में 2:30 पर सुनिएगा कॉम्पियर्ड प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत। दिन 11:00 सुनिएगा फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। झंकार का समय होगा सुबह 10:00 से और मधुरिमा हम आपको सुनवाएंगे सुबह 8:45 पर। और अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 7:00 से आप सुनेंगे आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे

आज केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। सुनेंगे संस्कृत में समाचार बस कुछ ही पलों में। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: इत्येतेः सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्यप्रशासनेन उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अन्तर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्रतन्त्रस्य अन्तर्गतम् उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।
2: लीजिए सुनिए
1: प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को नेशनल डॉक्टर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे और प्रसन्न रहे। ट्यून किया है आपने आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। गुड मॉर्निंग बनारस, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इस खुशनुमा सुबह भी आप भी एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त ललिता और सुबह की चाय की चुस्की के साथ एक बार फिर से आ चुकी हूँ आपके फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस के साथ। तो चलिए अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रोग्राम, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए बनारस से जुड़ी बातें और जानकारियां और कुछ म्यूजिक भी।
1: दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, दिन है सुहाना।

हाँ जी, आज पहली तारीख है, आज है 1 जुलाई। आज देखिए हमने नया महीना भी शुरू कर दिया है और आज के दिन सभी लोग खुश होते हैं क्योंकि सभी को 30 दिन जाने के बाद इंतजार जो होता है आज के दिन का। तो दोस्तों, ये जिंदगी है ना, ये बहुत खूबसूरत है। हमें जो ये जिंदगी सिखाती है ना, ये कोई भी किताब नहीं सिखा सकती या कोई भी इंसान नहीं सिखाता, जो हमें हमारे अनुभव, हमारा तजुर्बा हमें सिखाता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये जिंदगी कैसी है? हमें कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, तो कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं जब कहीं ना कहीं सोचने और समझने की जो शक्ति होती है बिल्कुल कहीं खो जाती है। कहते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, यानी कि हमारे पास जो भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। जैसे कि हमें बिना भी कोई कीमत चुकाए जो चीजें मिलती हैं वो सबसे ज्यादा कीमती होती हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे, आइए बताते हैं। जैसे हमारी सांसें, हमारा स्वास्थ्य, हमारी खुशी। जी हाँ, हमारी सांसें हम नहीं देखते, हम ध्यान नहीं देते, हम नहीं लेते, पर फिर भी ये सांसें आती रहती हैं, तभी तो हम जिंदा हैं। जरा सोचिए कि सिर्फ जब ये सांसें हमें हॉस्पिटल में लेनी होती हैं तब हमें इनकी अहमियत पता चलती है। जब कोई भी इंसान वेंटिलेटर की फीस देता है तब प्रति घंटा के हिसाब से उसकी पेमेंट करनी होती है हमें। इसके अलावा बाकी के घर के लोग जो परेशान होते हैं वो बिल्कुल अलग की बात है। आपको बताएं कि आज का दिन समर्पित है उन महान व्यक्तियों के लिए जो अपने ज्ञान, सेवा और समर्पण से अनगिनत जीवन में जीवन की नई उम्मीद लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम सभी मना रहे हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। और कहा भी गया है कि धरती पर भगवान का रूप अगर कोई कहलाता है तो वो डॉक्टर है जो दर्द में भी मुस्कुराना सिखाता है। दोस्तों, आपके बताओ कि 1 जुलाई को महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो आप सभी को और हमारे देश के सभी डॉक्टर्स को जो अपनी सेवाएं सभी के लिए दे रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहे, सभी प्रसन्न रहे। और बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त ललिता।

गुड मॉर्निंग वंस अगेन। देखिए ना, फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो चिंता है ना, इसका दूसरा रूप चिता हो जाती है। क्योंकि जब हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए नहीं, अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे नहीं, तो फिर चिंता क्यों ही करना। दोस्तों, आपको बताएं कि डॉक्टर सिर्फ रोगों का उपचार नहीं करते, बल्कि वे निराशा में आशा, पीड़ा में विश्वास और संघर्ष में साहस का संचार करते हैं। एक डॉक्टर का जीवन सेवा, त्याग और समर्पण का अद्भुत उदाहरण होता है। इस समय दुनिया भर में मरीजों की संख्या, ये जो दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, काफी बढ़ रही हैं। बहुत से शोध हुए हैं। आइए आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। एक रिसर्च के अनुसार अमेरिका या फिर यूरोप में हार्ट फेलियर के मरीजों की औसत उम्र 70 से 75 साल होती है। इसके विपरीत भारत में हार्ट फेलियर के मरीजों की औसत उम्र महज 53 से 55 साल है। यानी कि भारतीय लोग 10 से 15 साल पहले ही इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। और इसका मुख्य कारण है खराब लाइफस्टाइल, समय से पहले हार्ट अटैक आना, अनियंत्रित डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। तो देखिए, एक छोटा सा शोध है, लेकिन ये कितना चिंताजनक है। एक आम बीमारी जिसे कोई भी अछूता नहीं रह सका, यानी कि सिरदर्द। आइए जानते हैं कि ये सिरदर्द आखिर होता क्यों है। दुनिया भर में सेहत से जुड़ी आम परेशानियों में से सिरदर्द भी है। सिरदर्द अपने आप में एक समस्या हो सकती है, तो कई मामलों में किसी अन्य बीमारी की वजह से भी सिरदर्द की समस्या हो सकती है। सामान्य सिरदर्द की वजह क्या है, इस बारे में अभी तक कोई भी स्पष्टता नहीं हुई है। पर हाल ही में एक अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक गर्दन की मांसपेशियों में सूजन सिरदर्द की

प्रमुख वजहों में से एक मानी गई है। 20 से 31 आयु वर्ग के लोगों पर किए गए अध्ययन के आधार पर ये निष्कर्ष निकाले गए हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। अब आइए देख लेते हैं एक नजर में इतिहास में आज के दिन क्या खास हुआ।

वर्ष 1882 में विधान चंद्र राय, जो भारत के सम्मानित वरिष्ठ चिकित्सक, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिक रहे, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ। इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2017 में भारत में अब तक के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार वस्तु एवं सेवा कर को पूरे देश में 1 जुलाई की मध्य रात्रि से लागू किया गया था, आज ही के दिन।

और अब आइए एक नजर में देख लेते हैं हमारे बनारस में क्या कुछ खास रहा। तो आपको बताएं कि पूर्वांचल में बहुप्रतीक्षित मानसून आखिरकार कल यानी मंगलवार को अपने भाव में प्रवेश कर ही गया। लगभग 9 दिन के विलंब के बाद पूर्वांचल में मानसून नमी के साथ प्रवेश किया, तो मिर्जापुर सहित सोनभद्र के कुछ क्षेत्र में बूंदाबांदी हुई और पूर्वांचल के अन्य जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ वातावरण में नमी का असर भी दिखा। तो वहीं आसमान में सुबह से बादलों की आवाजाही के साथ ही मौसम का रुख बदला रहा और बादलों की आवाजाही का रुख रहने के साथ ही हीट वेव का असर भी कम हुआ। यानी कि मिला जुला के कहे तो इतने दिन से जो चिलचिलाती हुई गर्मी में हम सभी परेशान हुए हैं, कल से सभी को इसमें राहत मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भी करिए भाई, क्योंकि हमारे प्रकृति में जो है ना, हम सभी का ही योगदान है। आज हम सभी ये जो दिन देख रहे हैं, आप सभी आए दिन सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, देखिए देश और दुनिया में क्या हो रहा है, रोडें पिघल रही हैं, लोग परेशान हैं, तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है और हमें दूर करने की जिम्मेदारी भी इसकी, ये भी हमारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और देखते हैं। IIT BHU के संस्थान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के तकनीकी विकास के लिए हमें आपके अनुसंधान और विशेषज्ञता की जरूरत है। यूपी को विकसित बनाने में ऊर्जा, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल डिवाइस, रक्षा विनिर्माण और हाईटेक तकनीक क्षेत्रों में लगातार आपके योगदान की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे और अपना संबोधन दे रहे थे। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और आपको बता दें कि 4 साल बाद 2 से 4 जुलाई को होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यानी कि UPTET 2026 रिटायर्ड IAS और IPS अधिकारियों की निगरानी में होगी। इस परीक्षा के लिए जिले में 68 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 3 दिनों में 16,379 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। शुरूआती 2 दिनों और अंतिम दिन में एक पाली में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। हाँ, परीक्षा आयोजित होगी, तो आप सभी जितने भी लोग परीक्षा देने जा रहे हैं थोड़ी तैयारी कर लीजिए और गर्मी के मौसम को देखते हुए अपना ख्याल भी रखिए। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बताएं कि स्वरवेद महामंदिर धाम में सद्गुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव का कल यानी कि मंगलवार को समापन हुआ। संत प्रवर विज्ञान देव महाराज ने कहा कि जब तक हम अपने भीतर का अंधकार नहीं समझेंगे तब तक बाहर का प्रकाश अधूरा है। संत कबीर की वाणी हमें बाहर नहीं बल्कि भीतर झांकने का दृष्टिकोण देती है। उन्होंने कहा कि विवेक, धैर्य, क्षमा और शांति मनुष्य के आभूषण हैं। व्यवहारिक जीवन में इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। मानव में परस्पर प्रेम और सद्भावना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी शहर बनारस से जुड़ी हुई कुछ बातें और अब चलिए चलते हैं कुछ गीत संगीत की तरफ और आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत और थोड़ा थिरकते हैं, सुबह का समय है। चलिए आइए।

जी हाँ दोस्तों, जी तो सभी का करता है कि हम कुछ ना कुछ बवाल ही करते रहे। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। दोस्तों देखिए ना, हम सभी का ये जो जीवन होता है, हमें हमारे ये जीवन हमारे बुजुर्गों से, हमारे माता पिता से मिला है। तो जो हमारे माता पिता हैं वो हमारे भगवान होते हैं इस धरती पर। आप सभी को उनका सम्मान करना चाहिए, हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए, और ये सम्मान ही हम सभी का सम्मान है। और अब एक नज़र में बनारस में ट्रैफिक की बातचीत कर ले। देखिए ये एक ऐसा शहर हमारा जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, आज नहीं इतिहास से प्रसिद्ध है। तो ये आज का जो वर्तमान समय है ना, थोड़ा सा ट्रैफिक जो है बहुत परेशानी हो जाती है इसमें। कभी कभी कोई भाई अचानक से गाड़ी मोड़ लेते हैं, कभी कोई लगातार हॉर्न बजाते रहता है। तो भाई इसका क्या है ना, सभी के ऊपर असर थोड़ा सा खराब होता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर आपसे हम एक बात कहें कि प्रकृति मानव जीवन का आधार है, यानी हमें ये जो जीवन मिला है इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है। प्रकृति ने हमें अनमोल उपहार दिए हैं, और इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। जैसे ये शुद्ध हवा, पीने का पानी, भोजन और जीवन जीने के लिए सभी जरूरी संसाधन हमें प्रकृति देती है। तो प्रकृति का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा कर्तव्य है भाई। क्योंकि जब हम अपनी प्रकृति की रक्षा करते हैं तो अपने जीवन को, अपने समाज को और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित बनाते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ये गुड मॉर्निंग बनारस यहीं तक, और चलते चलते एक छोटा सा और प्यारा सा संदेश आप सभी को जरूर देंगे। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से आप पर नहीं, और रोए तो आपके लिए आपकी वजह से नहीं। तो बेवजह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। और अब मुझे दीजिए विदा इस प्रोग्राम से। सुबह की 7:18 होने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। और अभी के लिए आपको करते हैं बाय बाय, और आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को।

0: करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी

0: बूढ़ी वादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का लिया निर्णय। UPTET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। UPTET 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कल से लेकर 4 जुलाई तक आयोजित हो रहे UPTET 2026 परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इस बीच प्रदेश सरकार ने UPTET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर सहित प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा।
3: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
2: रामपुर के बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VVG रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो रहा है। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्य

0: प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रदेश के सभी जिलों में आज से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनेगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कल आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है।
2: वो लोक माता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी, लोगों के दुख पीड़ा को एहसास कर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके।
0: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आज से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहन के धारक स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक 100% स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। प्रदेश के सभी जिलों में आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत करीब 1 दर्जन सरकारी विभाग आपसी समन्वय बनाकर पूरे माह संचारी रोगों की रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करेंगे। राज्य के लगभग सभी जिलों में मॉनसून की दस्तक हो गई है। मॉनसूनी वर्षा शुरू हो जाने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर सहित कई जिलों में कल से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है।
3: 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले 2 दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले 3 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे।
0: प्रदेश में टाइगर रिजर्व के लिए 1 नवंबर 2025 से जारी पर्यटन सत्र कल संपन्न हो गया। 8 महीने तक चले इस सत्र के दौरान लखीमपुर खीरी के दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों ने वन्य जीवों का अवलोकन किया।

0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का लिया निर्णय। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन। राग है अहिर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत की है पंडित ललित कुमार ने।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन, राग था अहिर भैरव। आपके साथ तबला संगीत की थी पंडित ललित कुमार ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

हम सभी का एक किनारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

0: जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @AIR वाराणसी। इसमें ए और वी कैपिटल लेटर्स में है। तो हमें सुनिए, फील कीजिए और लिख भेजिए अपने विचार। मीडियम वेव FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अब हम हैं आपके साथ हर पल हर घड़ी। मोहब्बत है
1: ये जी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, सुनेंगे समाचार प्रभात बस कुछ ही पलों में।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी राम जी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों

0: पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ESI अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को

0: सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है PM की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर PM ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: से कहा भी गया, उनको समय भी दिया गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा और इससे जुड़िएगा, सबकी एक शिक्षा होगी, एक सम्मान होगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। और अल्पसंख्यक में मुस्लिम ही नहीं है, सिख भी है, तो ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है।
1: सभी मदरसों को तालीम से मुतालिक मुत्तहदा जिला इत्तिलाती निजाम के नंबर अलॉट किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुर जिले में जंतुलूरू के मकाम पर आंध्र प्रदेश की मरकजी यूनिवर्सिटी के पहले तकसीम असनाद जलसे में शिरकत करेंगी। वो उन 1268 तलबा को डिग्रीज अदा करेंगी जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल की है। वो 56 तलबा को उनकी गैर मामूली तालीमी कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल भी अदा करेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियां से टेलीफोन पर बात की। इस गुफ्तगू के दौरान ईरान के सदर ने जनाब मोदी को मगरबी एशिया के हालात वाकयात और आगे बढ़ने के लिए इकदामात से वाकिफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुफाहमत पर इत्तेफाक राय होने का खैर मकदम किया और भारत के इस मौकिफ को दोहराया कि सभी मामलात मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त के तहफ्फुज नीज तिजारत के लिए कोशिशें जारी रखे जाने की जरूरत दोहराई। ईरान के सदर ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान अमन और इस्तेहकाम और इलाकाई इश्तराक की हिमायत करने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जाती रोल की सदाइश भी की। इधर भारत में ईरान के सिफारतखाने के मुताबिक इस बातचीत में सदर पेजिशकियान ने भारत में ब्रिक्स के तवानाई महकमे के वजीरों की मीटिंग की मेजबानी और इसकी कामयाब मंसूबाबंदी के तहत इत्मीनान का इजहार भी किया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाइची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा होगा। मोहतरमा तकाइची वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कल 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगी। इस सरबराह मुलाकात से तरफैन को इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने और उन्हें मुस्तहकम बनाने का मौका मिलेगा। हमारे नामनिगार ने बताया है कि भारत और जापान की दोस्ती तवील अरसे से कायम है और ये सदियों से सकाफती और तहजीबी तबादले, रूहानी रिश्ते, नीज आज़ादी, जमहूरियत और कानून की अमलदारी के तई एहतराम की मुश्तरका अकदार पर मबनी है। एक रिपोर्ट।
2: भारत जापान बाहमी ताल्लुकात को 2014 में खुसूसी कलीदी और आलमी साझेदारी की सतह पर पहुंचाया गया था। अब जबकि दोनों मुल्क अगले साल अपने सिफारती ताल्लुकात के कयाम को 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसमें तिजारत, सरमायाकारी, इक्तसादी सिक्योरिटी, दिफा, साइंस, टेक्नोलॉजी, सकाफत और अवाम से अवाम के राबते भी शामिल हैं। भारत जापान जाम इक्तसादी साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 को नाफिज हुआ था। इधर साल 2025-26 के दौरान बाहमी तिजारत 27 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गई। जापान भारत में सरमायाकारी करने वाला 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। जापान ने अप्रैल 2000 और मार्च 2026 के दरमियान 48 अरब 17 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की। सकाफती इश्तराक भी काफी मजबूत है और जापान ने योग समेत भारतीय सकाफत में बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: मरकज ने आज से 15 दिन के लिए बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर आयद महसूल की शरों में तब्दीली की है। वजारत खजाना की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन नई शरहों के तहत बरामद किए जाने वाले पेट्रोल पर 4 रुपए फी लीटर मुकर्रर किए गए हैं। डीजल पर यह महसूल 8.5 रुपए होगा जबकि पहले यह महसूल 14 रुपए था। वजारत ने बताया कि हवाई जहाज के ईंधन की बरामदात पर आयद खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी को 12.5 रुपए से कम करके 7.5 रुपए कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जब यह बरामदाती ड्यूटी इब्तदाई तौर पर नाफिज की गई थी तो बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर सरकारी शोबे की तेल कंपनियों ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए छूट फराहम की थी। अब इस छूट में तौसी कर दी गई है और इसमें मॉरिशस और मालदीव भी शामिल कर लिए गए हैं। 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस आज जयपुर में शुरू हो रही है।

मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। सुनेंगे मधुरिमा प्रोग्राम, पहले सुन लेते हैं ये संदेश।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें
5: 0542227658,
6: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: मधुरिमा प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को चित्रा का नमस्कार। श्रोताओं, मॉनसून के आगमन में देरी और भीषण गर्मी के बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में लोग बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। उमस भरी गर्मी से बेहाल आम जनता बारिश के फुहारों के लिए आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। हालांकि कल से बादलों की उमड़ घुमड़ थोड़ा चालू है, लेकिन अच्छी बारिश की अभी भी दरकार है और इसी इंतजार में आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को।

बारिश के इंतजार में अक्सर लोगों के दिल की गहरी भावनाएं, यादें और उम्मीदें झलकती हैं। ये एक ऐसा एहसास है जो गर्मी की तपन और सूखे को मिटाने के साथ साथ मन की सूखी जमीन को भिगाने की चाहत रखता है।

इस बार बारिश का इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है। जून बीत चुका है, बादल आते हैं, ठहरते हैं और बिना बरसे लौट जाते हैं। खेतों से लेकर शहरों तक हवा में एक बेचैनी सी घुली हुई है। ऐसे में बारिश का होना बहुत जरूरी है, बस इंतजार है ठंडी हवा का।

अक्सर तपती गर्मी से राहत बादलों की बेरुखी और किसी के आने की उम्मीद से जुड़ी होती है। प्यासी धरती मांग रही जग के दाता पानी दे, सागर सागर जल थल कर दे दरिया दरिया पानी दे।

बारिश से मन का रिश्ता बहुत गहरा है। मन का मौसम बारिश से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। किसी की याद सताने लगती है तो कभी खुशनुमा सा मौसम लगता है। तो इस बदलते मन को काबू में लाने के लिए ये

बारिश की बूंदें ना तो अमीरी देखती है ना गरीबी देखती है, वो ना ऊंच देखती है ना नीच देखती है। उनको बरसना है तो बरसते हैं ताकि हर जगह खुशियों की बौछार पहुंच सके।

इत्र की औकात सामने आ गई जब बरसात की पहली बूंद गिरी। बारिश के इंतजार में और इन लाइनों के साथ समाप्त होता है मधुरिमा प्रोग्राम। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी।
1: चलो अभी आप सुन रहे थे मधुरिमा प्रोग्राम। सुबह के 9:15 होने वाले हैं, सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हाथरस और भदोही जिलों की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए भदोही और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख है संजय कुमार का।
2: भदोही में अनुसूचित

0: जाति बाहुल्य गांवों के विकास को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 30 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। प्रत्येक गांव में करीब 20-20 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क, नाली निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा चयनित गांवों का सर्वे पूरा कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। बजट स्वीकृत होते ही विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2019-20 से अब तक जिले के 128 गांव इस योजना में शामिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 50 से अधिक गांवों में कार्य चल रहा है, जबकि शेष गांवों में ग्राम विकास योजना और बजट की स्वीकृति मिलने के बाद कार्य प्रारंभ होंगे। शासन की इस योजना से अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुई भीषण अग्निकांड के घटना के बाद भदोही जिले में भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर DIOS भदोही, औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम लगातार होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही है। विशेष अभियान में कुल 145 प्रतिष्ठानों की जाँच की गयी। जाँच के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले 85 संचालकों को नोटिस जारी किया गया, जबकि गंभीर अनियमितता मिलने पर 6 कोचिंग सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि जिले के कई प्रतिष्ठानों ने अब तक अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तक नहीं लिया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। साइबर थाना पुलिस ने निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर देश भर में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्ञानपुर के नंदापुर निवासी मन्नू सिंह और चख सिखारी निवासी ओम प्रकाश गौतम ने लोगों को कम समय में 3 गुना लाभ देने का झांसा देकर फर्जी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ठगी करते थे। जांच में सामने आया है कि इनके नेटवर्क से जुड़े 50 से अधिक खातों के माध्यम से 50 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी की गई है। इनके खिलाफ केरल, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में 50 से अधिक NCRP शिकायतें दर्ज हैं। 5 ATM कार्ड, 3 पासबुक, 3 चेकबुक, 47 फर्जी आधार और पैन कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन, स्टाम्प पैड तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस जांच में विभिन्न बैंकों के खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी मिली है। गिरोह के सरगना सुमित सिंह समेत 4 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। औराई क्षेत्र के समधा गांव में 106 हेक्टेयर में फैले विशाल ताल को राज्यपाल द्वारा आधिकारिक रूप से वेटलैंड अर्थात आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के तहत चयनित इस ताल को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिला वेटलैंड समिति का गठन किया जाएगा, जो विकास की विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगी। यहां प्रवासी पक्षियों के अनुकूल प्राकृतिक वातावरण विकसित करने के साथ साथ पर्यटकों के लिए वन डे टूर, भ्रमण पथ, बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और जिले में पर्यटन की नई संभावनाएं भी विकसित होंगी। नगरपालिका प्रशासन ने लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे नए शहरवासियों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य कराए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि वर्षों से उपेक्षित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे नागरिकों को बेहतर शहरी जीवन मिल सके। पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गोपीगंज में भदोही साइकिलिंग क्लब की ओर से साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। बड़ा चौराहा से शुरू हुई यह यात्रा क्लब अध्यक्ष अताउल मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में निकाली गई। जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी जर्जर विद्यालय भवनों को प्रत्येक प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर उन्हें पूरी तरह बंद कराया जाए, ताकि कोई भी छात्र या अन्य व्यक्ति उनके अंदर प्रवेश न कर सके।
1: भदोही जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार का।
2: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कलेक्टर

0: सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों का प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जन प्रतिनिधियों के साथ अवलोकन किया। प्रभारी मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों व संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी दी। इस उपलक्ष्य में सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 12 वर्ष विषयक समेकित जन कल्याण का एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत विकास खंड मुरसान ग्राम पंचायत रायक नगला लच्छी सैनपुर अर्जुनपुर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में केंद्र सरकार द्वारा विगत 12 वर्षों में संचालित जन कल्याणकारी योजना गरीब कल्याण कार्यक्रम एवं विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीणों को प्रदान की गई। साथ ही आम जन को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रदेश की महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने यहां अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में तहसील सदर हाथरस में के ग्राम अधीसा भगवंतपुर में अटल कन्वेंशन सेंटर व गेस्ट हाउस निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि लगभग 200 लोगों की क्षमता वाले इस कन्वेंशन सेंटर में सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक प्रशासनिक एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक लोगों को विभिन्न आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता था, लेकिन इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के बाद यह समस्या समाप्त हो जाएगी और जनपद को एक आधुनिक एवं सुव्यवस्थित आयोजन स्थल प्राप्त होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना परियोजना पर लगभग 7 से 7.5 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने केलोला चौरा स्थित ठाकुर मलकान सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही जनपद हाथरस में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से संबंधित विभिन्न परियोजना का अवलोकन पर एवं शिलान्यास किया तथा जनपद में धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण विकास हेतु जनपद वासियों के लिए सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी द्वारा 1024.70 लाख रुपए लागत की 9 पर्यटन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण पर किया। इनके विकास भवन स्थित पर्यटन केंद्र निर्माण एवं विकास कार्य मोड़ा बाली माता मंदिर दावजी महाराज मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर उदय सिंह की कचहरी परिसर में लैंडस्केपिंग एवं जनसभा कार गंगागढ़ी स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर सिद्धपीठ पर्वशाला तीर्थ भूमि कर ढकपुरा मंदिर स्वर्ग आश्रम तथा काली माई मंदिर के पर्यटन विकास कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 308.80 लाख रुपए लागत की 4 परियोजना का शिलान्यास भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम पर्यावरण चेतना अभियान की शुरुआत की गई। इस खास मौके पर वन विभाग के तत्वाधान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शासनीय स्थित नगर वन में संपन्न हुआ, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को भारी उत्साह देखने को मिला। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जनपद के बाल श्रम उन्मूलन एवं बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा कलेक्टर परिसर में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

थाना चौक से प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष शर्मा पुत्र लखनलाल निवासी CK 10/65 ब्रह्मनाल चौक वाराणसी। संतोष शर्मा दिनांक 19 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को अंतिम बार मैदागिन स्थित सप्तसागर दवा मंडी के पास इन्हें देखा गया था। ये मानसिक रूप से पीड़ित हैं। इनकी उम्र है 69 साल।

रंग है इनका गेहुआ, सफेद बाल है, दाढ़ी सफेद है। लापता होने के समय इन्होंने सफेद धोती, पूरी बांह का सफेद काला धारीदार स्वेटर और हाथ में छड़ी ले रखा था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या थाना चौक को सूचित करें।

थाना चेतगंज से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहित कुमार पुत्र मगन कुमार, रोहित कुमार दिनांक 26 जून 2025 से लहुराबीर से लापता हो गए हैं। रोहित कुमार के बारे में जानकारी की बात इस प्रकार है, उम्र है इनकी 23 वर्ष, कद 6 फिट, रंग इनका सांवला है। लापता होने के समय इन्होंने पीले रंग का टी शर्ट और खाकी कलर का लोअर पहन रखा था। ये बोल नहीं सकते हैं। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या थाना चेतगंज को सूचित करें।

थाना लंका से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोहन भारती, इनकी पत्नी है शशि भारती, निवासी J4/63A जैतपुरा थाना, जैतपुरा वाराणसी। सोहन भारती दिनांक 27 जून 2025 को करीबन दिन में 2:30 बजे से BHU हॉस्पिटल से गायब हो गए थे। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र है इनकी 65 वर्ष, कद 5 फिट 2 इंच, ये हिंदी बोल सकते हैं, इनका रंग है गेहुआ। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या थाना अध्यक्ष लंका को सूचित करें।

थाना फूलपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंजलि चौरसिया पुत्री अनिल चौरसिया निवासी फूलपुर पोस्ट फूलपुर वाराणसी। अंजलि दिनांक 21 जून 2025 को स्कूल जाते समय लगभग 10 बजे से लापता हो गई हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र है इनकी 21 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच। लापता होने के समय इन्होंने आसमानी रंग का सूट और सफेद कलर का सलवार पहन रखा था और इनके गले में काले रंग का धागा था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थानाध्यक्ष फूलपुर को 9454040395 पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 होने वाले हैं। उर्दू प्रोग्राम सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: आज की पेशकश आकाशवाणी प्रयागराज के मरकज से है। आइए सुनते हैं मकाला, बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार। मकाला निगार हैं डॉक्टर नीलोफर हफीज और कलाम शायर हैं असलम आदिल। आइए सुनते हैं।
1: हर रोज एक नया समा बंधता है आवाज की इस महफिल में, हर रोज एक

0: नया समा बंधता है, बात पहुंचती है जो आप तक, वो दिल को छू जाती है। इन्हीं खूबसूरत अल्फाजों और जज्बातों के साथ आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं आपकी मेजबान निकहत सिद्दीकी। कबूल करें मेरा आदाब। सामिन, आज उर्दू बज्म में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकाला, बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार, और कलाम शायर के तहत सुनिएगा जनाब असलम आदिल से उनका कलाम। सबसे पहले समाअत फरमाइए डॉक्टर नीलोफर हफीज से मकाला, बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार।
1: वालिदैन की तवज्जो और रहनुमाई बच्चों की अखलाकी दुरुस्तगी, किरदार साजी और समाजी सलाहियतों के फरोग में हमेशा ही अहम रही है, लेकिन दौरे हाजिर में वालिदैन की जिम्मेदारियाँ पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा हो चुकी हैं, और इसकी वजह यह है कि अब बच्चों की तालीमी और तफरीही ज़राए में बड़ी हद तक तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। कदीम रवायात की पासदारी या पाबंदी से अब हमारे बच्चों को कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रह गई है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इन बच्चों को उनकी उम्र से पहले ही बालिग और संजीदा कर दिया है। असर हाजिर की नज़ाकतों की बुनियाद पर ही शायद परवीन शाकिर ने कहा था, जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। हम सभी देख रहे हैं कि मौजूदा वक्त में बच्चों को तालीम से दूर करने और उनके अखलाक व किरदार को मुतासिर करने वाली काफ़ी दाखली और खारजी मसरूफियात पैदा हो गई हैं। तहकीक से पता चलता है कि बच्चों की बेहतर कारकर्दगी और आला दर्जात तक उनकी रसाई वालदेन की तालीमी सरगर्मियों, दिलचस्पी और तावुन से ही मुमकिन है, मगर अफसोस के दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के पेश नज़र और अपने बच्चों को अहद जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करने और उनका मयार ज़िंदगी बुलंद करने की खातिर जहाँ एक तरफ माँ और बाप दोनों ही मुलाजिमत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से बेपरवाह होकर इन मासूम नौनिहालों को गैर तरबियत याफ्ता घरेलू मुलाजमीन के सुपुर्द कर देते हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों की शख्सियत बुरी तरह मुतासिर होती है। वालिदैन की तवज्जो और मोहब्बत से महरूम बच्चे अक्सर डरे सहमे और खौफजदा रहते हैं और अपनी अमली ज़िंदगी में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाते। नाकामी से दोचार होने के सबब बाज़ औक़ात न सिर्फ अपनी पूरी शख्सियत तबाह कर लेते हैं बल्कि ख़ुदकुशी जैसे ख़तरनाक इकदाम उठाने से भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। इस किस्म की सदहा मिसालें हमें अपने आसपास देखने को मिल जाती हैं, जिनमें बच्चे छोटी छोटी बातों की ताब न लाकर अपनी जान दे देते हैं। हमेशा याद रखें कि वालदेन अपने बच्चों की पहली दरसगाह होते हैं और उनकी तालीम और तरबियत में बुनियादी किरदार अदा करते हैं, लिहाजा इस तालीम और तरबियत में की गई ज़रा सी लापरवाही या कोताही बाज़ औक़ात बड़े खौफनाक नतायज का पेशखीमा साबित होती है। आज हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ मादी तरक्की हासिल कर लेने का नाम है और ये मादी तरक्की और कामयाबी हमें तालीम के ज़रिए हासिल हो सकती है। यही सबब है कि आज हर तालीमी इदारे में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने की एक दौड़ हो रही है, बच्चों को कॉम्पिटिटर बनाने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और तरबियत को सिरे से नज़रअंदाज किए जाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दोनों ही एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। मौजूदा वक्त में बच्चों की तालीम और तरबियत सिर्फ स्कूल से जोड़ दी गई है, घरों में वालदैन का अपने बच्चों की तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेने और तरबियती उसूलों की पाबंदी करने के सिलसिले में कोई ख़ास अहतमाम नहीं किया जा रहा है। आज हम तालीम पर तो बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन तरबियत के सिलसिले में गफलत का शिकार हैं, जबकि हमें समझना चाहिए कि तालीम इल्म तक पहुँचने का एक रास्ता है और हम लोग अपनी कमफहमी के सबब इस रास्ते को ही अपनी मंजिल समझ बैठते हैं, जबकि हकीकी मंजिल तो इल्म है और इस रास्ते को जो चीज़ रोशन या मुनव्वर करती है, इंसान को ठोकर लगने से महफूज रखती है, वो चीज़ तरबियत है। बज़ाहिर तरबियत नज़र नहीं आती, लेकिन जब हम ज़िंदगी के सफ़र पर चलते चलते लड़खड़ाने लगते हैं, मायूस होने लगते हैं, तो इंसान की उंगली पकड़कर उसे दुरुस्त रास्ते पर जो चीज़ ले जाती है वही दर हकीकत तरबियत होती है, जिसकी तरफ से हम शऊरी और लाशऊरी दोनों एतबार से गफलत इख्तियार किए रहते हैं। बच्चे को एक अच्छा मजबूत और बाशऊर इंसान बनाने के लिए تعلیم اور تربیت دونوں ضروری ہیں۔

कहते हैं वालिदैन और असातज़ा ये दोनों किरदार बच्चों की शख्सियत साजी और तालीमी सफ़र में बुनियादी अहमियत रखते हैं, क्योंकि वालिदैन का रवैया और उनकी मोहब्बत बच्चों की शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करती है। हम में से हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा नेक, ईमानदार, काबिल एतबार, मेहनती, सेहतमंद और बाखलाक हो। वो जहाँ भी जाए अपनी खूबियों से, अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को अपना गिरविदा बना ले। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि आपका बच्चा उन तमाम खूबियों से मुजयन हो जो आप उसमें देखने के ख्वाहिशमंद हैं? यकीनन मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमें अपना मुहासबा करना होगा। मैं अक्सर कहती हूँ कि जो जो खूबियाँ आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं उनकी एक मुकम्मल लिस्ट तैयार कीजिए और इस लिस्ट को दो खानों में तकसीम कर दीजिए। एक खाने में वो तमाम खूबियाँ लिख लीजिए जो आप अपने बच्चों में देखने के ख्वाहिशमंद हैं, और दूसरे खाने में आपने सिर्फ 10 में से नंबर देने हैं और ये देखना है कि वो खूबी आप में कितने फीसद पाई जाती है। मसलन आप अपने बच्चे के लिए ये चाहते हैं कि वो कभी झूठ ना बोले, तो आप अपना मुहासबा करें। ये सिफत आपके अंदर किस हद तक मौजूद है? क्या आप झूठ बोलते हैं? और इसी तरह जो भी खूबियाँ आप उसमें देखना चाहते हैं पहले इन तमाम को अपने ऊपर नाफिस कीजिए और देखिए कि आपका अपना कितना स्कोर है। अगर आपका स्कोर हाई है तो आप इत्मीनान से रहिए, क्योंकि ये खूबियाँ खुद ब खुद आपके बच्चे में मुंतकिल हो जाएंगी। अलबत्ता अगर आपको ये लगे कि आप में ये आदत है कि आप कभी कभी झूठ बोल लेते हैं, तो आपको अपने बच्चे को सच्चा बनाने के लिए पहले खुद पर मेहनत करना पड़ेगी और अपनी इस झूठ बोलने की आदत को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के आसपास जो माहौल होता है वही उनके मिजाज का हिस्सा बनता है। लिहाजा वो वालदैन जो अपने औलाद की जिस्मानी, दीनी, रूहानी बामकसद ज़िंदगी गुजारने और उनके शऊर की तरबियत करने के मुतमन्नी हैं, उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि पहले वो अपने आप को इन सिफात का हामिल बनाएं। हमेशा ये बात जहन में रखें कि बच्चे नसीहतों और बातों से उतना नहीं सीखते जितना कि वो अपने बड़ों के रवैयों को देखकर सीखते हैं। अगर माँ बाप ही हक के रास्ते पर नहीं, उनको खुद ही मकसद ज़िंदगी का शऊर नहीं, तो वो हरगिज़ भी औलाद को ईमानदार, परहेजगार और एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने की तरबियत देने में कामयाब नहीं हो सकते। वालिदैन को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के बुनियादी उसूलों के बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। मसलन बच्चों की जिस्मानी और जहनी तरबियत का पहला उसूल यह है कि उनको अच्छी ग़िज़ा दी जाए और ऐसी ग़िज़ाओं से बचाया जाए जो उनको नुकसान पहुँचा सकती हैं। बाहर के खानों की वजह से बच्चों की तबीयत और मिजाज पर बहुत ही मनफी असरात मुरतब होते हैं। जंक फूड हमारे बच्चे आज बहुत खाते हैं, इस फूड में ग़िज़ाइत की कमी होती है जिसकी वजह से बच्चों के मिजाज में चिड़चिड़ापन, मोटापा, शुगर और दीगर बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ख़राब सेहत की वजह से उनकी तालीमी सरगर्मियां भी मुतासर होती हैं। मगर अफसोस कि आजकल बच्चों की ग़िज़ा के सिलसिले में वालदेन की तरफ से बड़ी गफलत इख्तियार की जा रही है और ये बे एहतियाती बाज़ोकात बच्चों में मुस्तकिल जिस्मानी कमज़ोरियों का सबब बन जाती है और उनकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देती है। लिहाजा ज़रूरी है कि वालदेन एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाएं और अपने बच्चों के लिए सेहत बख्श ग़िज़ा फराहम करें। दूसरी अहम चीज़ जो बच्चों की जिस्मानी और जहनी सरगर्मियों पर असरअंदाज होती है वो अच्छी नींद है। सही और वक्त पर नींद ना होने की वजह से बच्चों की तबीयत और मिजाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए वालदैन बिलखसूस माँ की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की नींद की सही तरतीब बनाए और उस पर सख्ती के साथ अमल करें। नींद सही ना होने की सूरत में भी बच्चों की जिस्मानी और जहनी नश्वोनुमा रुक जाती है और उनकी तालीम पर भी ख़राब असर पड़ता है। एक और बहुत अहम चीज़, वालदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की तालीम में गहरी दिलचस्पी लें, पढ़ाई के दौरान पेश आने वाले मसाइल को हल करने की कोशिश करें, खुद भी किताबें पढ़ें और अपने बच्चों को भी अच्छी किताबें पढ़ने की तरगीब और तशवीक दिलाएं और पढ़ाई के लिए ऐसा माहौल फराहम करें जहां हमारे बच्चे खुद को महफूज और पुरएतमाद महसूस कर सकें। उन्हें तालीम हासिल करने के लिए हर मुमकिन सहूलत देने की कोशिश करें। इसके साथ साथ उन्हें ये भी समझाएं कि तालीम सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्रियों की जमा आवरी का नाम नहीं है, बल्कि ज़िंदगी को बेहतर और सरबुलंद तरीके से जीने का एक बड़ा ज़रिया है। यानी अपने बच्चों को ज़िंदगी गुजारने के फ़ायदेमंद तरीके सिखाएं, ऐसी महारतें और सलाहियतें उनमें परवान चढ़ाएं जो उनको उनकी अमली ज़िंदगी गुजारने में मददगार साबित हों। इसी के साथ साथ बच्चों की जज्बात

0: अभी आप जनाब असलम आदिल से उनका कलाम समात फरमा रहे थे। और इसी के साथ आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार उर्दू प्रोग्राम को खत्म करने की अपनी मेजबान निकहत सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। इस प्रोग्राम की पेशकश थी प्रदीप मिश्रा की।
1: आज के उर्दू कार्यक्रम की पेशकश थी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। पहले सुन लेते हैं यह संदेश।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार, विज्ञापनों

0: के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
2: 0542227658।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: लोक संगीत के कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं सुकेशी ऋषभ। इनके स्वर में आइए सबसे पहले सुनते हैं गंगा गीत।

0: खिमटा के साथ ही समाप्त होता है लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार थीं सुकेशी ऋषभ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, सुनेंगे झनकार। पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अचरा से रहिया।
4: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस

इसका है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

झनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को चित्रा का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद रशीद खान की, जिनका जन्म आज के दिन यानी 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। वो हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे। वो रामपुर के सहवासन घराने में संबंधित थे और घराने के संस्थापक इनायत हुसैन खां के पड़पोते भी थे। कोई जगह ये सुनने में आया है कि पंडित भीमसेन जोशी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राशिद खां भारतीय गायन संगीत के भविष्य के लिए आश्वासन थे। उन्हें 2006 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री, साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 में उन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये इस कलाकार के हमारे प्लेलिस्ट में ज़्यादा तो गीत नहीं हैं, दो गाने हैं, जिसमें हम आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं जब वी मेट का ये गीत। आवाज़ है उस्ताद राशिद खां की, इरशाद का मिलके बोल है। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म माय नेम इज खान से, आवाज उस्ताद रशीद खान की, बोल है निरंजन अयंगर के और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

हमारे प्लेलिस्ट में अब अगला गीत है फिल्म दबंग 2 से। राहत फतेह अली खां की आवाज है, समीर के बोल है और संगीत है साजिद वाजिद का।

अभी आपने सुना दबंग 2 फिल्म से ये गीत राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से। आवाज है आतिफ असलम की, बोल है इरशाद कामिल के और संगीत है प्रीतम का।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है फिल्म टू स्टेट से अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीप्रदा की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल है और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

अभी आप सुन रहे थे शेफ फिल्म से गीत अमान मलिक की आवाज़ में। संगीत था अरमान मलिक का और इसको लिखा था रश्मि वाघ ने। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वांटेड से। श्रेया घोषाल और की आवाज़ है और साथ में है शान। अरुण भैरव के बोल और संगीत है साजिद वाजिद का।

अभी आप सुन रहे थे प्रेम रतन धन पायो फिल्म से ये गीत। आवाजें थी अन्वेषा, विनीत, हर्षदीप कौर और साहेब साबरी का। इरशाद कामिल के बोल थे और संगीत था हिमेश रेशमिया का। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं सुई धागा फिल्म से। पेपॉन और रोंगिनी गुप्ता की आवाज है, वरुण ग्रोवर के बोल और संगीत है अनु मलिक का।

अभी आपने सुना रांझणा फिल्म से ये गीत, जावेद अली की आवाज थी, इरशाद कामिल के बोल और संगीत था ए.आर. रहमान का। कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म कृष्णा कॉटेज से। श्रेया घोषाल की आवाज है, नीलेश मिश्रा का गीत है और संगीत है अनु मलिक का। और इसी गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं झंकार कार्यक्रम में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: कृष्णा कॉटेज फिल्म के इस गाने के साथ ही झनकार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को स्वस्ति श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का हमारे ये कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आधारित होता है आपके ईमेल संदेशों पर, जो अभी आपको तुरंत नहीं करना है। जो संदेश आपके पहले से ही हमें प्राप्त हो चुके हैं, उन्हीं फरमाइशों को हम आज इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे।

आप सबके बहुत सारे ईमेल हमें प्राप्त हो चुके हैं और आज इस सुरीले कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म के गाने से आवाज मोहम्मद रफी की है, गीत आनंद बख्शी का, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुने ये प्यारा सा गीत और फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे किन श्रोताओं ने इस गाने को पसंद किया है।

है तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी का लिखा यह गीत था जिसकी तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस प्यारे से गीत की फरमाइश हमें भेजी जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिम्पल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल ने इस गाने को पसंद किया था। इसी गाने के लिए हमें संदेश प्राप्त हुआ टेडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का। कालका से इस गाने को पसंद किया शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले का संदेश हमें मिला सिद्धार्थ नगर दरियापुर वाबली से। इसी गाने को सुनना चाहते थे जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। पटेल नगर मुगल सराय से इस गाने को पसंद किया सुनील कुमार सिंह ने। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोध, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा का संदेश प्राप्त हुआ। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गौरैया जालंधर से आप सबने हमें ईमेल भेजा। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से इस गाने को पसंद किया पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रव्या रामटेके ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। इसी गाने के लिए हमें मेल भेजा पिपरिया जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू, आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ। इसी गाने को सुनना चाहते थे नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़।

इसी गाने के लिए मेल भेजा मजनू कटिल्ला दिल्ली से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। संबलपुर कांकेर से हमें मेल प्राप्त हुआ फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का। वार्ड नंबर 1 पोफाली, जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी का मेल प्राप्त हुआ। इसी गाने को सुनना चाहते थे ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, आबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। और अब हम आपको कार्यक्रम में सुनवाने जा रहे हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है जब

प्यार किसी से होता है। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की हैं, गीत हसरत जयपुरी का है, संगीत शंकर जयकिशन का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म का प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे और इस गाने के लिए हमें फरमाइश भेजी गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार जिला चंदौली से विजय जायसवाल और सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल और देवंती जायसवाल, नई बाजार भदोही से विनोद जायसवाल और आशा जायसवाल ने हमें संदेश भेजा, इसी गाने को सुनना चाहते थे। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी दीपिका चौधरी, लड्डू चौधरी और आपके परिवार के सभी सदस्यों ने इस गाने को पसंद किया। इसी गाने के लिए हमें संदेश प्राप्त हुआ। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जोहानुल हुदा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से इस गाने को पसंद किया था दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। पोटियाकला दुर्ग से इस गाने को पसंद किया संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू ने। कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से इस गाने को सुनना चाहते थे सैयद मशरूर, शाइना हसन।

नाजिया, इब्राहिम और आपके ढेर सारे साथी। तेलंगाना बोंगीर से इस गाने को पसंद किया मोहम्मद बुरहानुद्दीन और मोहम्मद यूसुफुद्दीन।

इसी गाने को सुनना चाहते थे आजाद आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। भोपालगढ़ राजस्थान से इस गाने को पसंद किया धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने। गांव नथाना पंजाब से इस गाने को पसंद किया हरजिंदर छिंद्रा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने। इसी गाने के लिए मेल भेजा दत्रेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा।

कृष्णा पार्क दिल्ली से इस गाने को सुनना चाहते थे सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना। इसी गाने के लिए मेल भेजा छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से इस गाने को सुनना चाहते थे विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपतु साहू। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है 14वीं का चांद। आवाज मोहम्मद रफी की है, गीत शकील बदायूनी का, संगीत रवि का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

चौदहवीं का चांद, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज थी। शकील बदायूनी का लिखा गीत था जिसकी तर्ज बनाई थी रवि ने, और इस गाने को पसंद किया आप सभी श्रोताओं ने। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल ने इस गाने को पसंद किया। इसी गाने को सुनना चाहते थे टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहर निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने इस गाने को पसंद किया। इसी गाने के लिए मेल भेजा पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से हमें संदेश भेजा सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया ने। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से इस गाने को सुनना चाहते थे मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार मुराना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप का मेल प्राप्त हुआ।

रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हमें मेल भेजा लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। इसी गाने के लिए मेल प्राप्त हुआ दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने।

रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से हमें संदेश प्राप्त हुआ, जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी का। और अब हम कार्यक्रम में अगला गाना सुनवाने जा रहे हैं, प्रेम रोग फिल्म का। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की, गीत नरेंद्र शर्मा का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

प्रेम रोग फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। गीत नरेंद्र शर्मा का था, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और इस प्यारे से गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोताओं के नाम हैं शाहकुटी मुगल सराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगल सराय से डब्लू जायसवाल और माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल और पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल और पिंकी जायसवाल ने इस गाने को पसंद किया। इसी गाने के लिए हमें मेल भेजा राज पैलेस मऊ नाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने हमें मेल भेजा। इसी गाने को सुनना चाहते थे जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसमा अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी।

इसी गाने के लिए हमें संदेश प्राप्त हुआ पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। मोताला महाराष्ट्र से इस गाने को पसंद किया विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार ने। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी और आराध्या साहू ने इस गाने के लिए मेल भेजा। मुजफ्फरपुर से राजू कुमार का मेल प्राप्त हुआ। नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से इस गाने को सुनना चाहते थे मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुसरत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। इसी गाने के लिए संदेश भेजा मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से इस गाने को पसंद किया मोहम्मद आसिफ खान और निकहत।

परवीन ने। इसी गाने के लिए मेल भेजा बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी का मेल प्राप्त हुआ। गोला बाजार बक्सर से मेल भेजा श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य ने। सारिंगपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी का मेल प्राप्त हुआ।

तालुका पंढरपुर से हमें मेल भेजा जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी, सुबान मुलाणी, समीर मुलाणी, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बानू बी मुलाणी और बादशाह मुलाणी और पूरा मुलाणी परिवार इस गाने के लिए हमें मेल भेजा। इसी गाने को सुनना चाहते थे अड़ार नांदगढ़ छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा। कुंभार कली कोलगांव से हमें संदेश भेजा पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन, पांडुरंग कुंभार, आप सभी का मेल प्राप्त हुआ। इसी गाने के लिए मेल भेजा पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता ने।

गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से हमें मेल भेजा जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, और आप सभी ने हमें मेल भेजा, इसके लिए शुक्रिया। इसी गाने को सुनना चाहते थे किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया। इसी गाने के लिए मेल भेजा पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनोली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। आप सभी का मेल प्राप्त हुआ। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। आवाज किशोर कुमार की है, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

किशोर कुमार की आवाज में ब्लैकमेल फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत से संवारा था कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गाने के लिए हमें मेल भेजा आप सभी श्रोताओं ने। करौता वाराणसी से अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिवप्रकाश प्रजापति, मोनी प्रजापति और राहुल प्रजापति। सकरडीहा चंदौली से ग्राम भट्टी पोस्ट सकरडीहा चंदौली से हमें मेल भेजा इमरती यादव ने, और इसे गाने के लिए हमें मेल प्राप्त हुआ कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरुशब्द सिंह राहुल ने। इसी गाने के लिए मेल प्राप्त हुआ शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजक रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और उनके मम्मी पापा।

रोहित ऋतु मुकेश जगता, आप सभी का। झज्जर हरियाणा से इस गाने को पसंद किया बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने। इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर और जियाउल हक डावर। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी ने इस गाने को पसंद किया। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से इस गाने को सुनना चाहते थे सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह का मेल प्राप्त हुआ। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया और विशाल विवेक ने मेल भेजा।

भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का मेल प्राप्त हुआ। नागपुर से हमें मेल भेजा बिट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव और पवन राजे जाधव ने।

इसी गाने के लिए हमें मेल प्राप्त हुआ पांडरकवड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से। अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे, बल्लार शाह से सूरज लोंढे, प्राची लोंढे, एकलव्य लोंढे और आपके परिवार के सभी सदस्यों का मेल प्राप्त हुआ। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से हमें मेल भेजा अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर ने। रामस्वरूप गुप्ता, विवेक गुप्ता, एचडी गुप्ता, आप सभी ने हमें संदेश भेजा कोदवा छत्तीसगढ़ से।

इंदिरा विहार दिल्ली से इस गाने को सुनना चाहती थी। बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू अंसारी, उमर खेड़ से अजिता मदारी और प्रमिला मदारी, आपने इस गाने को पसंद किया।

किसी गाने को सुनना चाहते थे? गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल। आप सभी ने इस गाने के लिए मेल भेजा, शुक्रिया। इसी गाने को सुनना चाहते थे लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी। चंदापुर से दयाशंकर यादव, प्रीति यादव और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें मेल भेजा। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान। आवाज लता मंगेशकर की है, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

झुक गया आसमान, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत हसरत जयपुरी का था, संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने, और इस गाने के लिए हमें मेल भेजा आप सभी श्रोताओं ने। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय, हिमाक्ष, आप सभी का मेल हमें प्राप्त हुआ इस गाने के लिए। इसी गाने को सुनना चाहते थे आप सभी श्रोता। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान ने इस गाने को सुनना चाहा, इसी गाने के लिए मेल भेजा। खंडवा मध्य प्रदेश से संचिता बमारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, आपका मेल प्राप्त हुआ। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से इस गाने को पसंद किया जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह ने। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा ने हमें मेल भेजा नारी पचदेवरा गाजीपुर से। मलियान सरदना मेरठ से इस गाने को पसंद किया अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन ने, मास्टर जीवियम जैन, आप सभी ने इस गाने को सुनना चाहा। इसी गाने के लिए मेल भेजा रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार ने।

धनौरी तेली वाला से हमें मेल भेजा निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू ने। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा और आपके परिवार के सभी सदस्यों का संदेश प्राप्त हुआ। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल ने हमें मेल भेजा लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से।

इसी गाने के लिए मेल प्राप्त हुआ बेवरा संबलपुर से शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा, तुषार वर्मा और वंशिका वर्मा का। इसी गाने को सुनना चाहते थे पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन। आप सभी ने मेल भेजा। ग्राम लसोड़िया, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से इस गाने को सुनना चाहते थे गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र टांगी। इसी गाने के लिए हमें मेल भेजा गढ़नोखा लालगंज रोहतास से राजकिशोर सिंह, बड़क सिंह, राम खरवल, गढ़नोखा से मोतीलाल गुप्ता, लाल बिहारी सिंह और बीरा सिंह। लिवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजदास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी ने इस गाने के लिए हमें मेल भेजा और इसके साथ ही दीजिए इजाजत स्वस्ति श्रीवास्तव को कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस समाप्त करने की। अगले कार्यक्रम में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
0: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
0: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर

0: हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं
0: जी,
1: ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
0: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
1: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है,
0: जी।
1: मूल्यवान भी है, रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
0: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है। तो
0: जी।
1: विमलेश जी, आप जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
0: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
1: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
0: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
1: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
0: जी
1: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
0: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
0: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीटरॉइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए।
0: जी
1: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
0: जी जी जी सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
1: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
0: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
1: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
0: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं, कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं, तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं, लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
0: जी
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के

0: फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की।
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: आह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
5: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
5: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
5: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: हाँ, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
5: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
5: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम।

0: हमेशा याद रखेंगे।
1: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
2: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
3: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
2: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
4: सॉइल इरोजन,
2: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
1: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
2: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
5: जी मैम।
0: यस मैम।
2: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
0: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
2: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
3: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
2: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
2: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
2: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
2: अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
4: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
4: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद मैम।
6: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।

0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
2: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूं कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई मैं भी चलता हूँ।
2: ए, ए, ए, कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया।

0: पान गुई का मकान है।
1: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
0: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
1: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है बोलो।
1: मैं बोलो। अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो। गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
2: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
0: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करे? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
4: मुखिया जी,
5: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
4: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
5: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
4: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
5: तो भरने दो।
4: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
5: अरे तो जाने दो।
4: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
5: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
4: लेकिन मुखिया जी,
5: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
4: जी मगर
5: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
6: मुखिया जी,
5: अब क्या है?
6: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
5: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
2: मुखिया जी,
5: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
2: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
5: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो, सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
2: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
5: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यहीं रहूंगा।
2: जैसी आपकी मर्जी।
5: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो। अरे ये क्या, अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ मैं?

किसी पानी में डूब रहा हूं मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है, कोई है, अरे बचाओ, बचाओ मुझे, अरे मैं डूब रहा हूं मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़े धरती पर धंसाए बैठा है। अगर अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा, मैं उसे पकड़ूंगा, किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन लेकिन ये पानी तो मुझे मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर आखिर पहुंच ही गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद शायद मेरी मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार। उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। आइए इनकी आवाज में आपको सुनवाते हैं ये भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के गाए भजन। आइए सुनते हैं इनका गाया अगला भजन।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आज के कलाकार थे प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए

0: हुए कलाकारों के पसंदीदा लोकगीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
1: हम गवन मनाही जय बेबी नारे झूलनी, हम गवन मनाही जय बेबी नारे।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे संजय कुमार मिश्रा का गायन। राग है शुद्ध सारंग। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं नंद किशोर मिश्रा, और सारंगी पर हैं संतोष कुमार मिश्रा।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संजय कुमार मिश्रा का गाया राग शुद्ध सारंग। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे नंदकिशोर मिश्रा और सारंगी पर थे संतोष कुमार मिश्रा। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने वाला है, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृह मंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं और उसके बाद हम आपको बताएंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आइए सुन लेते हैं खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं। थाना लंका जनपद वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदीप यादव, जिनके पिता का नाम है श्री गोपाल सिंह, पता है लेन नंबर 6 गंगोत्री विहार कॉलोनी नगवा लंका वाराणसी, पिनकोड 221005 उत्तर प्रदेश। ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 23 वर्ष, लंबाई 5 फीट 7 इंच, रंग गेहुआ है। घटना के समय इन्होंने धारीदार टी शर्ट, भूरे रंग का पैंट और नीले रंग का जूता पहना हुआ है। पावर का चश्मा ये लगाए हुए हैं। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना लंका जनपद वाराणसी। मोबाइल नंबर 9569410934 और 9454404390। थाना कपसेठी जनपद वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अशोक कुमार यादव, जिनके पिता का नाम है स्वर्गीय दीनानाथ यादव, पता है लोहरा डी कपसेठी वाराणसी 221403, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 55 वर्ष, लंबाई 5 फुट, रंग गोरा है। घटना के समय इन्होंने सफेद शर्ट और ग्रे कलर की पैंट पहनी हुई है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना कपसेठी वाराणसी। मोबाइल नंबर 9454404387 और 8545073131, इन नंबरों पर सूचित कर सकते हैं। इसके साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा विदुषी किशोरी अमोनकर का गायन। रात 10 बजे आप सुनेंगे रूपक, चौथे पहर की धूप। लेखन और प्रस्तुति होगी उमेश दीक्षित की। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम

अंजुमन आपको सुनवाएंगे रात 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे आज के कलाकार होंगे प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। अंग्रेजी कार्यक्रम में शाम 7 बजे आप सुनेंगे सोनिया कुमार की अंग्रेजी वार्ता, जिसका विषय होगा द एथिक्स ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर अनुपम कुमार नेमा और राकेश यादव की बातचीत, विषय होगा खेती में उपयोगी उन्नत कृषि यंत्र। इसका विषय होगा खेती में उपयोगी उन्नत कृषि यंत्र। साथ ही किसान भाई आनंद उठा सकेंगे सुकेशी ऋषभ के गाय लोकगीत का। युवा साथी अपने कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:15 पर फिल्म संगीत के साथ ही सुनेंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहने 1:15 पर गीत संगीत चर्चा जायका के साथ ही सुनेंगी अलका पांडे की वार्ता, रिसाइकलिंग है जरूरी। श्रोता फिल्म संगीत का आनंद उठा सकेंगे शाम 5 बजे से शाम 6:10 पर, शाम 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम में और रात 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम में। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने वाले हैं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। रियासती हुकूमत ने मुलाजिम असातिज़ा के लिए अलग से टीचर अहलियत टेस्ट TET कराने का फैसला किया है। UP TET 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल इस सिलसिले में अफसरान को वाज़ह हिदायत दी। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने कल से 4 जुलाई तक मुनक्किद हो रहे UP TET 2026 इम्तिहान की दयानतदारी और शफाफियत व उम्मीदवारों की सहूलियत को यकीनी बनाने पर खसूसी जोर दिया। इस दरमियान रियासती हुकूमत ने UP TET 2026 के इम्तिहान में शिरकत कर रहे बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूलों में मुलाजिम असातिज़ा को खसूसी छुट्टी देने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 102 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने बोर्ड के इम्तहानात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा और मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को लैपटॉप और ग्रांट के चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत रामपुर समेत रियासत के रूहानी विरसे के मकामात को जिंदा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर इलाके में तरक्की को मजीद मजबूत करेगा।
1: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
0: रामपुर के बाद वजीर आला ने बरेली में तरक्याती काबों और अमन अमान का जायजा लिया। उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत रोजगार गारंटी और रोजी रोटी मिशन देही VBG रामजी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो गया है। इसके मुल्क गिर नफाज की माकबल शब पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी अहल देही मजदूर एक दिन के लिए भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुनासिब माली वसायल दस्तियाब करा दिए गए हैं, अमल दरामद का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तैयार है और चल रहे काम बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। जनाब चौहान ने कहा कि

0: 125 दिन की तनख्वाहदार मुलाजमत की बढ़ाई गई गारंटी देही माश को मजबूत करेगी। ये एक्ट हर एक अहल देही कुनबे के लिए कानूनी तनख्वाहदार रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करता है। मुतादी बीमारियों पर काबू पाने की मुहिम आज रियासत के तमाम अजला में शुरू हो रही है। इस मुहिम के तहत तकरीबन एक दर्जन सरकारी महकमे पूरे महीने में मुतादी बीमारियों की रोकथाम से मुतालिक सरगर्मियों को मरबूत और मुनज़म करेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने देही इलाकों के शहरियों को राहत फराहम करते हुए एक अहम कदम उठाया है। अब रियासत भर के तमाम गाँव सेक्रेटरीटों में लेखपाल बाकायदगी से दस्तयाब होंगे। इस कदम का बुनियादी मकसद गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप के अहद को पूरा करते हुए रेवेन्यू सर्विसेज को आसान, तेज़तर और ज़्यादा शफाफ बनाना है। इस हुकूमती फैसले से देही इलाकों के शहरियों को अब गैर ज़रूरी तौर पर छोटी और बड़ी रेवेन्यू खिदमात के लिए तहसील हेडक्वार्टर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आज से 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर के नाम से रियासत गिर मुहिम शुरू कर रहा है। इस मुहिम में दफ्तर सतह से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल गाड़ियों के लिए मैनेजरों और प्रिंसिपलों को नोटिस या फ़ोन के जरिए अलर्ट किया जाएगा कि वो जुलाई के पहले हफ्ते तक 100% स्कूली गाड़ियों का फिटनेस कराएँ और दुरुस्त परमिट हासिल करें। मानसून रियासत के तकरीबन तमाम अजला में पहुंच चुका है। मानसून की बारिशों के आगाज से गर्मी की शिद्दत से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अम्बेडकर नगर और गोरखपुर समेत कई अजला में कल से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। महकमा मौसमियात के सीनियर साइंसदान अतुल कुमार सिंह ने रियासत के कई हिस्सों में भारी बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: सखियों के साथ,
1: सखियों की बात,
0: सखियों के जज्बात,
2: गृह लक्ष्मी।
3: फूलों की खुशबू लेकर आई है नई सी एक बहार, सखियों के संग सजेगी आज हंसी खुशी की ये फुहार।
4: ढेर सारी बातें, अपनापन और प्यार, तो सखियों अपना रेडियो सेट ऑन कर लीजिए क्योंकि हम कर रहे हैं आपका इंतजार।
3: गृहलक्ष्मी सुनने वाली सभी सखियों को निशा
4: और सिम्मी का
2: प्यार भरा नमस्कार।
3: अच्छा सिम्मी, गर्मी कितनी पड़ रही है ना?
4: बहुत ज्यादा।
3: और ऐसे में कभी धूप हो जा रही है, कभी बादल आ जा रहा है, और लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर बारिश कब होगी, और बारिश हो जाती तो राहत मिल जाती ना।
4: पता है निशा, अगर हमारे आसपास ना बहुत सारे पेड़ पौधे हों, यानी हरियाली हो ना, तो बारिश अच्छी भी होती है। और जब हरियाली होती है हमारे आसपास, अंदर बाहर पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उससे हमारा जो आसपास का वातावरण है उसका तापमान भी नियंत्रित रहता है, यानी उससे गर्मी थोड़ी कम रहती है। पर आज हमारे आसपास हरियाली उतनी रही नहीं है क्योंकि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और बढ़ते आधुनिकीकरण के कारण पर्यावरण असंतुलित हो गया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए, वनों के महत्व को बताने के लिए और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष हम सभी 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाते हैं, ताकि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और अधिक से अधिक पौधे लगाएं।
3: वन महोत्सव के नाम से जाना जाने वाला ये राष्ट्रव्यापी अभियान, जिसे वन उत्सव भी कहा जाता है, वृक्षों का त्योहार कहा जाता है, ये उत्सव हमें ये याद दिलाता है कि जैव विविधता को बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, जल संरक्षण और आजीविका को सहारा देने में वनों की बहुत ही अहम भूमिका है ना।
4: और साथ ही जो वन है ना, वो हमसे लेते तो कुछ नहीं है बल्कि हानिकारक गैसों को सोख कर जलवायु स्वच्छ रखते हैं, साथ ही मिट्टी का कटाव भी रोकते हैं। और इससे जब जैव विविधता अच्छी होती है तो हम सभी को नया जीवन भी इन्हीं पेड़ पौधों से मिलता है।
3: और इस महोत्सव की शुरुआत सिमी 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री के एम मुंशी ने

0: बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए की थी।
1: और निशा, जानते हो हम हर वर्ष जुलाई के समय ही वन महोत्सव क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये जो समय होता है ना, मानसून के आगमन का होता है, और इसलिए इस समय अगर हम नए पौधों का रोपण करते हैं ना, तो उन्हें प्राकृतिक रूप से पानी मिल जाता है, जिससे पौधे थोड़ी सी देखभाल से अच्छे से बढ़ने लगते हैं। तो सखियो, आप सभी संकल्प ले कि ज्यादा नहीं तो कम से कम एक पौधा तो जरूर लगाएंगे, और लगाना ही नहीं है, उसका ध्यान भी रखना, यानी अच्छे से देखभाल करनी है, ताकि वो एक अच्छा सा पेड़ बन सके।
0: तो जल्दी से बारिश हो जाए और हम लोग भी एक एक पेड़ और एक एक पौधा जरूर
1: जरूर
0: लगा लें,
1: लगा है।
0: है ना।
1: हाँ
0: अच्छा सिमी, अगर हमारे आसपास जगह नहीं है, हाँ बहुत ज्यादा जगह नहीं है,
1: हाँ
0: तब क्या
1: आजकल तो
0: करें?
1: देखिए अभी घर छोटे होते जा रहे हैं, उतनी जगह भी नहीं है, तो हमारे पास बालकनी तो है ना भाई।
0: हाँ,
1: बालकनी है,
0: छत भी
1: छत
0: है।
1: भी है,
0: हाँ
1: और अगर बालकनी भी छोटी है तो हम हैंगिंग प्लांट्स भी लगा सकते हैं ना। क्योंकि और जानती हो, जब हम घर में इंडोर प्लांट्स लगाते हैं तो घर की सजावट तो बढ़ती है, घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा और शुद्ध हवा आने से मानसिक शांति भी मिलती है।
0: अगर हम लोग सुबह सुबह उठें और सामने हरा भरा पौधा दिखाई दे तो कितना अच्छा लगेगा ना।
1: और उसपे अगर चिड़िया आए, चीची चीची करके अपनी मधुर मधुर आवाज में हमको उठाए, तो मन और तन एकदम प्रसन्न सा हो जाता है। तो सखियो, घर की खिड़कियों में, बालकनी में आप हैंगिंग प्लांट्स लगा सकते हैं। उसमें आप मनी प्लांट्स है, एरेका पाम है, पाइन प्लांट्स है, और पॉम लिली के बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो घर में लगा सकते हैं। इससे घर के लुक में बहुत ही सुंदर बनता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके अलावा बुक शेल्फ है, टीवी यूनिट के आसपास भी छोटे छोटे रंग बिरंगे पौधे और बेम्बू प्लांट्स लगाकर घर के माहौल को खुशनुमा और तरोताजा बनाया जा सकता है।
0: और ये देखने में बहुत सुंदर भी लगता है और सुकून भी देता है।
1: हाँ, और अगर बालकनी में भी हम घर पे अपने से औषधीय गुणों से युक्त तुलसी, एलोवेरा, गिलोय के पौधे भी लगा सकते हैं।
0: हाँ
1: और निशा, सिर्फ
0: हाँ
1: पौधों को लगाना ही नहीं है, बल्कि समय समय पर उनकी देखभाल भी करनी है। इसके लिए उन्हें समय समय पर खाद पानी भी देना है, और साथ ही जो वो पौधे हैं ना, इनकी सूखी पत्तियों को हटाकर इनको अच्छा भी रखना। इससे क्या होगा ना, घर की हरियाली और खूबसूरती हमेशा बनी रहेगी। और इसलिए ना, तो मेरा मन भी करता है कि कभी कभी घर मेरा जो घर है वो ऐसी जगह हो जहाँ खूब सारे पौधे हों, रंग बिरंगे फूल हों,
0: मतलब फूलों क्यारियों से घिरा हुआ हो, है ना।
1: कुछ इस गीत की तरह।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
0: 0542227658।
4: सिमी, अच्छा, जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं ना जब उम्मीद की डोर कमजोर पड़ने लगती है। बड़ी से बड़ी बीमारी से लेकर सर्दी बुखार में भी हम डॉक्टर को ढूंढते हैं, है ना, उन्हीं के पास जाते हैं, और डॉक्टर न केवल दवा देते हैं बल्कि ये भी विश्वास दिलाते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, है ना।
5: बिल्कुल, आपातकालीन परिस्थितियों में डॉक्टर ही हैं जो हमारे ओठों पर मुस्कान लाते हैं और हर वर्ष हमारे जीवन की रक्षा करने डॉक्टरों के निस्वार्थ समर्पण, सेवा और उनके अथक प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम सभी आज के दिन राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस भी मनाते हैं।
4: और ये दिन महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि पर उनके स्मृति में समर्पित है। उन्होंने चिकित्सा सेवा को मानवता की सबसे बड़ी पूजा माना।
5: और जानती हो, धरती पर भगवान का रूप माने जाते हैं डॉक्टर। डॉक्टर न केवल बीमारों का इलाज करते हैं बल्कि उन्हें नया जीवन और स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं। तो उन सभी डॉक्टरों को हमारी तरफ से आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निशा देखो, हाँ। ना, अगर हम रोज ताजा फल खाएं, मौसमी फल खाएं, तो जल्दी से बीमार नहीं होंगे। और दुनिया भर में फलों के स्वास्थ्य लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, फलों को संतुलित आहार में शामिल करने के लिए आज के दिन हम अंतरराष्ट्रीय फल दिवस भी मनाते हैं।
4: यानी कि रोज तो फल खाना ही, लेकिन आज स्पेशली खाना।
5: हाँ, जरूर। भाई, फल खाने से हम स्वस्थ भी तो रहते हैं ना। हाँ। क्योंकि फलों में जो मौजूद विटामिन से
4: मेरे कहने का मतलब है कि आज फल खाना बिल्कुल भूलना नहीं है सखिया।
5: हाँ, क्योंकि फलों में मौजूद विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, है ना। और फलों का तो फायदेमंद होते ही है रोज खाने से, पर उनके जो छिलके होते हैं ना, वो भी कम फायदेमंद नहीं होते।
4: हाँ, देखिए, संतरे का जो छिलका होता है ना, उसका जब पाउडर बना करके, सुखा करके पाउडर बना के फेस पैक यूज किया जाता है, ये त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम चाहें तो उसके छिलकों को जब नहाने का जो पानी होता है ना, उसमें डाल के भी नहा सकते हैं, तरोताजा महसूस होता है। ऐसे ही जो भी केले का छिलका, जो भी फल है, उनके छिलके बड़े काम के होते हैं।
5: हाँ, उनसे अच्छी खाद भी बन सकती है जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसी तरह से और भी बहुत सारी बेकार चीजें होती हैं जिन्हें अगर हम इकट्ठा कर लें

0: तो उन्हें और नई प्रक्रिया से गुजार दे तो उससे नए और उपयोगी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इससे कचरे का ढेर तो कम होता है, प्राकृतिक संसाधन भी बचते हैं और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है।
1: हाँ, ऐसी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, संसाधन होते हैं जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं और उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो इसी से संबंधित एक वार्ता सुनवा देते हैं अपनी सखियों को, जिसका विषय है रिसाइकलिंग है जरूरी। वार्ताकार हैं अलका पांडे।
2: रिसाइकलिंग क्यों जरूरी है? यह एक ऐसा विषय है जिसकी बात अक्सर की जाती है। यह देखने में साधारण सा है, लेकिन इसकी तह में जाने पर पता चलता है कि यह विषय सीधा साधा न होकर हमारी जिंदगी की बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। रिसाइकलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें पुराने बेकार और इस्तेमाल किए हुए सामान को दोबारा उपयोगी बनाया जा सकता है। रिसाइकलिंग का शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो इसका है कचरे को संशोधित कर उसे फिर से यूज के लायक बनाना। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वह जलवायु संकट, जनसंख्या विस्फोट, संसाधनों की कमी, बढ़ते प्रदूषण और कचरा प्रबंधन की विफलताओं से भरा पड़ा है। ऐसे समय में रिसाइकलिंग न केवल एक विकल्प है बल्कि आवश्यकता और उत्तरदायित्व भी है। पृथ्वी के संसाधन जिन पर हमारा जीवन निर्भर है, जिसमें जल, खनिज, लकड़ी, तेल आदि सीमित मात्रा में है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण इन संसाधनों पर दबाव बहुत बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में रिसाइकलिंग के माध्यम से हम पुराने उत्पादों का पुनः उपयोग कर नए वस्तुओं के निर्माण की आवश्यकता कम करते हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम किया जा सके। भारत जैसे देशों में लाखों टन कचरा डेली उत्पन्न हो रहा है और बहुत सारे लैंडफिल तेजी से भरते जा रहे हैं और आसपास के वातावरण और जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं। रिसाइकलिंग से हम इस कचरे के बड़े हिस्से को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे महानगरों में प्लास्टिक और गीले कचरे को अलग करने की कोशिशों से लैंडफिल का दबाव घटा है। रिसाइकलिंग की आवश्यकता औद्योगिक गतिविधियों में भी बहुतायत से है, क्योंकि औद्योगिक कचरे को जलाने पर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे हानिकारक गैस उत्पन्न होती हैं। रिसाइकलिंग ऊर्जा की बचत करता है और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है। जैसे लगभग प्रति एक टन रिसाइकल कागज से 17 पेड़ बचते हैं और 60 पौंड CO2 गैस कम उत्सर्जित होती है। रिसाइकलिंग केवल वैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन है जिसका मूल आधार मानव व्यवहार में बदलाव है। किसी भी परिवर्तन की शुरुआत समाज और शिक्षा से होती है। अगर हम पर्यावरण संरक्षण और संसाधन बचत को जनजीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत लोगों के विचारों से करनी होगी और यह तभी सफल होगा जब समाज इसे अपनी जिम्मेदारी समझे और शिक्षा उसे अपनी प्राथमिकता में स्थान दे। समाज ही हमें सिखाता है कि हम जो उपयोग करते हैं वह केवल हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी है। व्यक्ति जब कचरे का वर्गीकरण करता है, जैसे प्लास्टिक का कम प्रयोग या पुराने सामान को पुनः प्रयोग में लाता है, तो वह समाज के लिए एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें संस्कृति के विकास के साथ लोग पर्यावरण के प्रति भी अधिक संवेदनशील होते हैं। रिसाइकलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कबाड़ी वाले, सफाई कर्मचारी, एनजीओ कार्यकर्ता, पर्यावरणविद और छात्रों की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। सर्कुलर इकोनॉमी में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका है, चाहे वह उत्पादक हो, उपभोक्ता हो या व्यवसायी हो। तीनों स्तरों पर पुनः उत्पाद करना आवश्यक हो जाता है। कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग, फील्ड वर्क और इको क्लब के माध्यम से भी इसमें सक्रियता लाई जा सकती है। रिसाइकलिंग को केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रखकर प्रयोगात्मक और अनुभव आधारित शिक्षा के रूप में भी विकसित करना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों में विविध कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का

आयोजन भी किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर रिसाइकलिंग को लेकर जो इकाइयां काम कर रही हों, उनका भ्रमण भी छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता का विकास करवाएगा। शिक्षकों की भूमिका रिसाइकलिंग में काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे केवल किताबी नहीं बल्कि इन कार्यों को व्यवहारिक स्तर पर करने की प्रेरणा भी देते हैं। पर्यावरण को लेकर भारत में चल रही प्रमुख सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जिसने स्वच्छता और कचरे के प्रति जागरूकता को जन आंदोलन बना दिया। भारत सरकार की राष्ट्रीय हरित कार्यक्रम छात्रों को यंग ग्रीन सिटीजन बनने के लिए प्रेरित करता है, जो रिसाइकलिंग सहित सभी पर्यावरणीय विषयों पर काम करते हैं। यूनेस्को की शिक्षा में सतत विकास पहल जैसे कार्यक्रम भारत के कई शैक्षणिक संस्थाओं में लागू हो रहे हैं, जिसमें रिसाइकलिंग को पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाया जा रहा है। अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज हम विकास की ऊंचाइयों पर हैं, तो रिसाइकलिंग फिर से जरूरी हो गई है, लेकिन इस बार धरती को बचाने के लिए। रिसाइकलिंग से पेड़ बचते हैं, क्योंकि रिसाइकल्ड पेपर बनाने में नए पेड़ों को काटना नहीं पड़ता एवं ऊर्जा की भी बचत होती है और जल एवं वायु प्रदूषण में कमी आती है। रिसाइकलिंग केवल पर्यावरण की रक्षा ही नहीं करता, वरन यह आर्थिक रूप से भी बहुत उपयोगी है। कचरे को संसाधन बनाना कम लागत का विकल्प है। भारत में 2025 के अंत तक यह क्षेत्र 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे सकता है। भारत में बहुत सारे स्टार्टअप्स अब इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक और अन्य कचरे रिसाइकल नवाचार ला रही हैं। आज जब पूरी दुनिया जलवायु संकट, प्रदूषण और संसाधनों की कमी से जूझ रही है, तब रिसाइकलिंग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में वृक्षों और जल का सम्मान हमेशा रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात समग्र धरा को परिवार मानना हमें यही सिखाता है कि हमें केवल अपने लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों की रक्षा करना है। रिसाइकलिंग इसी कर्तव्य का एक आधुनिक स्वरूप है, जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ा है। यह अभियान तभी सफल होता है जब इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित हो। स्थानीय समितियों और पंचायतों के माध्यम से कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाना इसका हिस्सा है। भारत में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां इस बात की जागरूकता की आवश्यकता ज्यादा है। कहा जाता है कि जब कोई बात हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है, तभी वह वास्तविक रूप से स्थायी होती है। इसी जीवन शैली से कचरा प्रबंधन की सोच बदलेगी। हमें प्लास्टिक बैग्स, डिस्पोजेबल बर्तन आदि से बचना चाहिए और पारंपरिक वस्तुओं को अपनाना चाहिए। यह विषय न केवल पर्यावरण का बल्कि समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र और नीति निर्माण का भी अभिन्न हिस्सा है। मध्यकाल से ही भारत में रद्दी और कबाड़ी वाले का सामाजिक और आर्थिक महत्व स्थापित माना जाता है। विशेष रूप से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जब संसाधनों की कमी हुई, तो अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में सरकारों ने जनता से अपील की कि वे धातु, रबर, कागज और अन्य सामग्रियों को जमा करें ताकि सेना के लिए सामग्री बनाई जा सके। 21वीं सदी में रिसाइकलिंग काफी तेजी से आगे बढ़ा, जैसे ई वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक, फास्ट फैशन और मेडिकल वेस्ट इत्यादि। रिसाइकलिंग विकल्प नहीं है, आज की आवश्यकता है। ऐसा बहुत से लोग मानते हैं कि रिसाइकिल करके हम बहुत सारी चीजों में बचत कर सकते हैं। रिसाइकलिंग की प्रक्रिया सिर्फ कचरे से उत्पाद बनाने तक सीमित नहीं है, यह एक जागरूकता योजना और प्रबंधन का परिपूर्ण चक्र है। दुनिया के कुछ देशों में रिसाइकलिंग के सफल मॉडल दिखाई देते हैं, जैसे जर्मनी को विश्व का रिसाइकलिंग चैंपियन कहा जाता है। यहाँ रिसाइकलिंग दर 65% से ज्यादा है, जिसका श्रेय उनके सख्त कानूनों और जन जागरूकता अभियानों को जाता है। जापान में अनुशासन और नवाचार के मॉडल को अपनाकर रिसाइकलिंग को बहुत बढ़ावा दिया गया है। स्वीडन में केवल 1% अब

0: अपशिष्ट को लैंडफिल में डाला जाता है, बाकी सब रिसाइकलिंग या ऊर्जा में बदल जाता है। अमेरिका में किसी बात की कमी नहीं, फिर भी रिसाइकलिंग दर 35 से 40% है। भारत में रिसाइकलिंग दो प्रमुख स्तरों पर काम करती हैं, औपचारिक क्षेत्र जिसमें सरकारी और निजी संस्थाएं होती हैं, अनौपचारिक जिसमें कचरा बीनने वाले कबाड़ी और व्यक्तिगत तरीके से काम करने वाले लोग शामिल होते हैं। भारत में रिसाइकलिंग की यात्रा अभी आरंभिक दौर में है, किंतु संभावनाएं असीम हैं। बेंगलुरु शहर में घर घर अलग अलग तरह के कचरे के लिए अलग अलग संग्रहण केंद्रों की स्थापना की गई है। वर्तमान समय में रिसाइकलिंग का महत्व पहले से ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण और उपभोक्तावाद के कारण धरती पर कचरे का अंबार लग रहा है। संसाधन सीमित हैं और उनका दोबारा उपयोग न करने से वे जल्दी समाप्त हो रहे हैं। रिसाइकलिंग से इन संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। तकनीकी प्रगति ने रिसाइकलिंग को और अधिक प्रभावी और किफायती बना दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण संभव हो पाता है। सिर्फ तकनीक ही नहीं, बल्कि शिक्षा और जन जागरूकता भी रिसाइकलिंग की सफलता के लिए आवश्यक है, क्योंकि रिसाइकलिंग विकल्प न होकर हमारे अस्तित्व की आवश्यकता है। इसे अपनाना और बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कचरा समस्या नहीं, समाधान है। दुनिया भर के रिसाइकलिंग मॉडल हमें बताते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, तकनीकी सहयोग और सामाजिक प्रतिबद्धता हो तो कोई भी देश अपशिष्ट को संसाधन में बदल सकता है। इस दिशा में भारत में बहुत से प्रयास हुए, किंतु इनका स्वरूप असंगठित, खंडित और क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित रहा है। जहां एक ओर जनसंख्या, शहरीकरण, उपभोग की संस्कृति और औद्योगिकरण के कारण अपशिष्ट का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस अपशिष्ट को संसाधन में बदलने की पूरी क्षमता का विकास हो पाया है। यदि सरकार, उद्योग जगत, नागरिक और अनौपचारिक क्षेत्र आपस में जुड़कर संभावित प्रयास करें, तो रिसाइकलिंग न केवल पर्यावरण रक्षा का माध्यम बन सकती है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए नए रोजगार का साधन भी बन सकती है। भारत के लिए आवश्यक है कि वह इन नवाचारों को अपनाकर आधुनिक, टिकाऊ और समृद्ध रिसाइकलिंग प्रणाली स्थापित करे, जिससे पर्यावरण सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय संभव हो सके, क्योंकि रिसाइकलिंग आज की जरूरत बन चुकी है। जब हम किसी फेंकी हुई वस्तु को नया जीवन देते हैं, तो हम केवल वस्तु को नहीं बल्कि पृथ्वी के जीवन चक्र को पुनर्जीवित करते हैं। रिसाइकलिंग हमारे भविष्य के लिए एक सुनहरा बीज है, जिसे यदि आज बोया जाए तो कल वह एक हरित और स्वस्थ संसार बनकर फल देगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम बेकार को बहुमूल्य, कचरे को संसाधन और धरती को फिर से हरी भरी बनाने के लिए रिसाइकलिंग को अपनाएंगे, क्योंकि रिसाइकलिंग केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करती है, यह जीवन को सम्मान करना भी सिखाती है। यह एक छोटी सी आदत है जो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान बन सकती है। आज जो हम रिसाइकल करते हैं, वही कल हमारी धरती की मुस्कान बन जाएगी।
1: अभी सखिया सुन रही थी वार्ता, रिसाइकलिंग है जरूरी। वार्ता काल थी अलका पांडे।
2: सिमी, हम लोग फलों की बात कर रहे थे ना?
1: हाँ।
2: और अभी तो आम भी बहुत सारे आ रहे हैं ना?
1: भी गर्मी का मौसम है, आम तो आएंगे।
2: और आम फलों का राजा, भला ये किसे नहीं पसंद है ना? अच्छा, इसमें बहुत सारे विटामिन सी और बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, है ना? तो इसका ना अगर कस्टर्ड बना के पिए गर्मी में, तो ठंडा ठंडा कितना अच्छा लगता है ना?
1: क्योंकि स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये पौष्टिक भी होता है। तो अपनी सखियों को आज मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी बता देते हैं।
2: इसके लिए सखियों, आधा लीटर दूध ले लीजिए और 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर जो वनीला फ्लेवर में हो उसे ले लीजिए, और 3 से 4 बड़े चम्मच यानी जैसे भी आपको स्वाद अनुसार जितना आपको चीनी चाहिए वो ले लीजिए, और 2 पके आम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, और ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता या जिससे भी आप सजाना चाहें उसे रख लीजिए अपने पास।
1: तो सखियो, थोड़े से जो कटे हुए आम है ना, उसको अलग रख दीजिए, थोड़ा से, ज़्यादा नहीं, और बाकी आम की प्यूरी बना लीजिए। अब उसमें आम में थोड़ा सा

0: लेके बारीक काट के अलग भी रख दीजिए। अब एक कटोरी में आधा कप दूध लेकर उसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाकर अच्छे से चला लीजिए। ध्यान रखना है कि उसमें गांठ ना पड़े, बाकी दूध को उबाल लगा ले और उबाल आने पर उसमें चीनी मिला दे। अब गैस धीमी करके उस दूध को गाढ़ा करने के लिए कस्टर्ड का घोल मिला दे और धीमी गैस पर चलाते रहे लगातार। और जब गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें और इसे कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें। ध्यान रखें कि बीच बीच में भी इसे चलाते रहना, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे ना तो मलाई जम जाएगी। और जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो उसमें आम की प्यूरी डालकर अच्छे से फेंट लें और फिर उसके बाद ठंडे ठंडे होने पर आम के टुकड़े और ड्राई फ्रूट से सजाकर सर्व करें। खुद भी पिए और परिवार में भी सभी को पिलाएं।
1: और इसी के साथ, अच्छा सिमी, कहा जाता है कि हंसना एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है ना। अगर हम
0: भाई
1: हंसते हंसे मुस्कुराएं तो कितना अच्छा, मतलब देखने में भी अच्छा लगता है, औरों को भी अच्छा लगता है और हम भी स्वस्थ रहते हैं, है ना।
0: और परिवार में जब एक साथ हो और आम वगैरह हर चीज खाए पिए तो वैसे भी हंसी खुशी का माहौल बन ही जाता है। तो हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि हंसने से मन का तनाव भी दूर होता है। और कितनी भी परेशानी होती है ना, जब हम खुश होकर काम करते हैं तो हर समस्या का समाधान बहुत आसानी से मिल भी जाता है, क्योंकि हंसना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।
1: तो सखी, हमारी सखियां जो हैं वो भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और आज के लिए सखियों बस इतना ही। अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी निशा को।
0: और सिम्मी को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।

अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं सुकेशी ऋषभ। सबसे पहले इनके स्वर में आइए सुने इनका गाया लचारी लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सुकेशी ऋषभ का गाया लोक गीत। इनके स्वर में अभी आप सुन रहे थे लचारी, और अब आइए सुनते हैं पूर्वी गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सुकेशी ऋषभ के गाए लोक गीत। इनके स्वर में अभी आप सुन रहे थे पूर्वी, और अब आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं विवाह गीत। स्वर सुकेशी ऋषभ।

0: World Cup knockout stage win in 40 years. Earlier, Kylian Mbappe further enhanced his World Cup legacy to lead France to a comfortable 3-0 win against Sweden in the round of 32. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Norway has also sailed to the round of 16, beating Ivory Coast 2-1 in Texas. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under the Viksit Bharat G. Ramji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dhiraj Seth stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा।

0: पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीवी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो चार दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए।

0: एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: India's engagement.
3: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयाँ और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियाँ भी उपलब्ध कराता रहा है।
2: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ यार न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। तीस नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में

0: जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले दो दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी चाहे जैसे भी करके एक एक दिन कट रही है, पर जब कभी कोई तबीयत पूछ ले, हाल पूछ ले, खैरियत पूछ ले, तो कितना अच्छा लगता है ना, कितना सुकून मिलता है, कितना असर होता है ना सिर्फ किसी के एक बार पूछ लेने से कि कैसे हो, खैरियत पूछ लेने से। तो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुकी हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त ललिता, प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत के साथ। नमस्कार।

ये उनकी अदाएं ये उनका सताना, ये उनकी अदाएं ये उनका सताना, मेरे यार का ऐसे बातें बनाना कयामत है, ऐसे मोहब्बत जताना।

तुझे ख्वाबों में पाकर दिल का करार खो ही जाता है। मैं जितना रोकूं खुद को, तुझसे प्यार हो ही जाता है।

एक पल को मुझे देख के शर्माई थी आंखें, आंखों से गुजरता हुआ मुस्कान का साया, शायद मेरी खामोशी ने है कह दिया तुमसे वो राज जो मैंने तुमसे कभी भी नहीं कहा।

दोस्तों, हमारा आज का ये प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत यहीं तक। अब दीजिए अपने रेडियो दोस्त ललिता को इजाजत। नमस्कार।

5519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981।

0: बजने दे जरा।
1: जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़, DTH न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बज चुके हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा सायंकालीन सभा के साथ। शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.56 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आरडी वर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने जावेद अख्तर का लिखा गीत सुना। आवाज थी किशोर कुमार की और फिल्म थी सागर।

अभी आपने सुना फिल्म साजन का गीत। आवाज़ थी अलका याग्निक की, गीत लिखा था समीर ने और संगीत दिया किया था नदीम शवन ने। यह है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

आशा भोसले गाए फिल्म यादों की बारात के गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों कार्यक्रम युववाणी।

0: चलते रहो तो रास्ते भी हम सफर बन जाते हैं, सीखते रहो तो हर दिन नए अवसर बन जाते हैं। उम्मीदों की रोशनी अगर दिल में हमेशा जलती रहे तो छोटे छोटे कदम भी मंजिल का सफर बन जाते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ शिवानी।
1: और मैं हूँ भव्या। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने प्रिय कार्यक्रम युववाणी में, एक ऐसा मंच जहाँ हर मुलाकात होती है नई सोच के साथ, नई जानकारी के साथ और कुछ ऐसी बातों के साथ जो जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करती है।
0: बिल्कुल, हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। कहीं कोई नई प्रेरणा होती है, कहीं कोई नई सीख और कहीं ऐसे विचार जो हमारे सोचने का नजरिया ही बदल देते हैं। बस जरूरत होती है उन्हें समझने और अपने जीवन में अपनाने की।
1: तो आइए आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं पूरे उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के साथ।
0: दोस्तों, प्रकृति, स्वास्थ्य और भाषा, ये तीनों हमारे जीवन की ऐसी अमूल्य धरोहर हैं जिनके बिना एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संयोग की बात यह है कि आज का दिन हमें इन तीनों विषयों के महत्व को समझने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर दे रहा है।
1: बिल्कुल दोस्तों, अब बात करते हैं वन महोत्सव सप्ताह की, जो शुरू होता है 1 से और चलता है 7 जुलाई तक, जिसकी शुरुआत हर वर्ष 1 जुलाई से होती है। पूरे सप्ताह देश भर में वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है।
0: दोस्तों, पेड़ केवल हमें छाया ही नहीं देते बल्कि स्वच्छ हवा, वर्षा, उपजाऊ मिट्टी और असंख्य जीव जंतुओं के लिए जीवन का आधार भी हैं। आज जब जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण और घटते वन क्षेत्र पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बन चुके हैं, तब अधिक से अधिक पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी ही तो है।
1: दोस्तों, एक पेड़ लगाना जितना महत्वपूर्ण है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसे बड़ा होने तक सुरक्षित रखना। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल का संकल्प ले तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ वातावरण मिल सकता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, पेड़ केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बढ़ाते बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर बनाते हैं। इसलिए इस वन महोत्सव सप्ताह आइए हम सभी पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के साथ साथ उन्हें संरक्षित रखने का भी प्रयास करें।

0: तो सुना दोस्तों, ये धीमे धीमे पुरवैया तब चलेगी जब हम पेड़ लगाएंगे, अपने आसपास पर्यावरण को बचाएंगे। तो इसी के साथ आज हम स्मरण करते हैं भारत के महान चिकित्सक, शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर विधान चंद्र राय को।
1: आज उनकी जयंती भी है और पुण्यतिथि भी। ये एक दुर्लभ संयोग है कि उनका जन्म और निधन दोनों 1 जुलाई को ही हुआ था।
0: दोस्तों, डॉक्टर बीसी राय ने चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया। वे केवल एक कुशल चिकित्सक ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी प्रशासक भी थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शिक्षा, स्वतंत्र स्वास्थ्य और शहरी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए थे।
1: उनके सम्मान में भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। ये दिन उन सभी डॉक्टरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जो दिन रात मानव सेवा में समर्पित रहते हैं।
0: बिल्कुल, आज का दिन हमें ये भी याद दिलाता है दोस्तों कि स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए और उन चिकित्सकों का सम्मान करना चाहिए जो समाज की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं।
1: दोस्तों, आज हम महान स्वतंत्रता सेनानी, हिंदी प्रेमी और भारत रत्न पुरुषोत्तम दास टंडन जी की पुण्यतिथि पर भी उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं।
0: उन्होंने हिंदी भाषा के विकास और उसे राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था दोस्तों कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी विरासत की सबसे बड़ी धरोहर है।
1: स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने जीवन भर देश, समाज और भारतीय भाषाओं के सम्मान के लिए कार्य किया। उनके विचार आज भी युवाओं को अपनी संस्कृति और अपनी भाषा पर गर्व करना सिखाते हैं।
0: तो दोस्तों, आज का दिन हमें 3 महत्वपूर्ण संदेश देता है। प्रकृति की रक्षा करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी भाषा तथा संस्कृति का सम्मान करें। यही छोटे-छोटे प्रयास से एक बेहतर समाज और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव बनते हैं। दोस्तों, आगे कार्यक्रम में आपके लिए है अभी मार्गदर्शन, लेकिन वो सुनने से पहले ये जरूरी संदेश।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई

0: लाभ नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
7: 0542227658।
4: 0542227658।
5: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।
8: दोस्तों, जीवन में सही समय पर मिला एक अच्छा मार्गदर्शन हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे भविष्य तीनों को नई दिशा दे सकता है। कई बार किसी अनुभवी व्यक्ति का एक छोटा सा विचार भी हमें आगे बढ़ने की नई प्रेरणा दे जाता है।
9: बिल्कुल, जब अनुभव और सकारात्मक सोच साथ मिलते हैं तो कठिन से कठिन राह भी आसान लगने लगते हैं। इसलिए युवाणी में हम समय समय पर विशेषज्ञों को अपने बीच लेकर आते हैं जिनके विचार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं।
8: दोस्तों, अब समय है मार्गदर्शन का, जिसका विषय है निशानेबाजी शौक से शिखर तक का सफर। तो आइए सुनते हैं सत्यम सिंह से जयशालिनी गुप्ता की ये बातचीत।
10: दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का युवाणी के इस खास सेगमेंट मार्गदर्शन में। मैं आपके साथ हूँ जयशालिनी। दोस्तों, कहते हैं ना, सही निशाना सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि धैर्य, फोकस और आत्मविश्वास से लगता है। आज के समय में युवा नए नए करियर विकल्प तलाश रहा है और उन्हीं में से एक है शूटिंग, जो अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक मजबूत करियर के रूप में भी उभर रहा है। लेकिन सबसे पहले जो सवाल मन में आता है कि आखिर इस फील्ड में शुरुआत कहाँ से होती है, क्या चुनौतियाँ आती हैं और कैसे जुनून को प्रोफेशन में बदला जा सकता है। लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण समय पर सही दिशा नहीं मिल पाती है। और आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शूटिंग कोच सत्यम सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद जयशालिनी जी।
10: तो सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपसे हमारा पहला प्रश्न यही है कि सर, आप अपने सफर के बारे में बताइए, आपकी शूटिंग में रुचि कब शुरू हुई और कब से आपको लगा कि मैं इसे एज अ करियर शूटिंग को अपना सकता हूँ?
11: देखिए जयशालिनी जी, जैसा कि सभी बच्चों का शुरू में होता है कि वो लोग किसी न किसी स्पोर्ट्स को खेलते हैं, किसी न किसी खेल में जाते हैं, तो शुरू में हम लोग के समय में क्रिकेट एक बहुत ही फेमस गेम था, सब लोग उसको खेलना चाहते थे, हम लोग भी खेलते थे और हमने करियर अपना क्रिकेट में ही शुरू किया था। मैं उस समय क्लास 7th में था, लेकिन चूंकि बहुत कम समय में मैंने ट्रेनिंग की क्रिकेट की और उसमें मुझे इंजरी हो गई। चूंकि मुझे खेलना था, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य था बचपन से कि मुझे सिर्फ खेलना है और मुझे कुछ नहीं करना है। तो मेरे एक पड़ोसी थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रैक्टिस पे नहीं जा रहे हो? तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक गेम और है, अगर तुम देखना चाहो तो मैं तुमको ले चल सकता हूँ वहां पे। तो फिर उन्होंने मुझे उस दिन रेंज दिखाई, ले आके शूटिंग रेंज, और उन्होंने मुझे एक टास्क दिया कि आप एक शॉट चलाइए, अगर आप हिट करते हैं तो आप इस गेम को एक बार कंटिन्यू करके देखिएगा, अदरवाइज आप अपना क्रिकेट कंटिन्यू करिएगा। तो उन्होंने मुझसे 2-3 शॉट चलवाए और अच्छा हिट हुआ।
10: अच्छा।
11: तो फिर उन्होंने कहा कि सत्यम, इसमें टाइम कम लगता है, इंडिविजुअल गेम है, तुम्हारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी, तो एक बार तुम इसको करके देखो, 1 महीने 2 महीने जो भी हो। तो मैंने अपना उसको कंटिन्यू किया, मुझे भी अच्छा लगा। शूटिंग ऐसा गेम है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाला गेम है, इसमें सब लोग इंटरेस्ट भी रखते हैं क्योंकि जहां पे राइफल पिस्टल गोलियां चल रही हैं, और तो थोड़ा सा लोग अपना मूवी वगैरह से भी उसको रिलेट करते हैं। तो हर

0: कोई चाहता है कि हम इस ऐसा एक्सपीरियंस एक बार अपने जीवन में मतलब करके देखें कि क्या होता है। तो मुझे भी अच्छा लगने लगा और मेरा टाइम बचने लगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। और इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, इसमें आपका अच्छा फोकस बनता है, आप मेंटल पीस रहता है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ये किसी भी टाइम आप खेल सकते हैं और कभी भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 24 आवर्स। ये
1: जी
0: इंडोर गेम है, ये आपने घर में खेल कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप बाहर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि अब आगे जा करके मुझे अगर पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू करनी है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत अच्छा गेम है, और मैं गेम से जुड़ा भी रहूंगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने गेम की शुरुआत की और फिर आज अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं।
1: तो सर, अब आप हमें बताइए कि आपने शूटिंग कोच बनने का सफर कहाँ से और क्यों शुरू किया, और कैसे मतलब दिमाग में आया कि अब हमें कोच के तौर पर काम करना है?
0: इसमें दो चीजें होती हैं, कोई खिलाड़ी कोच नहीं बनना चाहता, वो खिलाड़ी ही रहना चाहता है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे अभी हम लोग जब खेल रहे थे, खेलने के बाद क्या हुआ कि अच्छा चल रहा था सब कुछ, बीच में कोरोना आया। कोरोना ने सबके जीवन के दिशा को बहुत बदला अपने अनुसार, ना कि हम लोगों के अनुसार। तो उस वक्त क्या होता कि हम लोग कॉलेज पास आउट हो चुके थे, गेम भी अच्छा चल रहा था, ट्रायल चल रहे थे इंडिया टीम के। बट एक चीज हमेशा होता था घर से, समाज से सवाल कि क्या कर रहे हो या नौकरी कब करोगे, फॉर्म भरे हो कि नहीं भरे हो। तो ये सब चीज सुनने के बाद चूंकि प्रेशर रहता ही है कि भाई आप ठीक है खेल रहे हैं पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, बट आगे क्या। तो मैंने सोचा कि अब अगर कहीं मैं नौकरी करने जाता हूं तो मेरा गेम छूट जाएगा, मैं इसको परस्यू नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने एक रास्ता निकाला कि अगर खेलना है तो क्यों ना हम इसी में अपना कैरियर बनाए, तो मेरा खेल भी कंटिन्यू रहेगा और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और जरूरी भी है एक समय के बाद आपको उतनी अर्निंग चाहिए होती है कि आप अपना घर चला सके।
1: जी
0: इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया, बाकी मेरे बहुत सारे जूनियर्स थे बट ये हुआ था बाय डिफॉल्ट। लॉकडाउन के बाद मैं बनारस आया, मैंने पहले इसकी शुरुआत अलाहाबाद से की थी कोचिंग
1: अच्छा
0: की, वहां पे मैं कोरोना में था तो मैं वहीं पे मतलब कुछ बच्चों को मैंने सिखाना शुरू किया था, ऐसे जस्ट शूटिंग के बारे में जानकारी या अवेयरनेस की क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग शूटिंग को वो वाली शूटिंग समझते हैं जो
1: हाँ
0: फिल्म वाली
1: फिल्मों
0: शूटिंग
1: वाली।
0: है। हाँ, फिर उसके बाद मैं बनारस आया तो मेरे बहुत सारे जूनियर्स यहाँ पे थे, तो मतलब उनका ये रहता था कि वो आते थे रेंज पे हमसे पूछते थे कि कैसे करना है क्या करना है, भैया इसको बताइए ऐसे। तो हुआ क्या कि उस समय जब मैं उन लोग को बताता था तो उन लोगों को चीजें बहुत अच्छे समझ में आती थी। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, पता नहीं चला कि मैं कब उस प्रोफेशन में एंटर कर चुका हूं। तो फिर बच्चों ने ही कहा कि सर ऐसा, उस समय चूंकि कोई ऐसा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और ऐसी रेंजेस वगैरह नहीं थी, प्राइवेट एकेडमीज नहीं थी, तो उन लोगों ने कहा कि भैया आप एक काम करिए, हम लोगों को आप सिखाना भी शुरू कर दीजिए, आप 1-2 घंटे की क्लास लीजिए बट सिखाइए। मैं था नहीं, मैं कुछ काम से मुंबई गया था, मेरे एक बच्चे का ट्रायल था। जब मैं वहां से आया तो ये लोग रेंज ओपन कर चुके थे, डायरेक्ट मुझे ये लोग रेंज खेलने के लिए
1: अच्छा
0: बोले कि सर ये रेंज है और आपको आज से सिखाना है। मैंने बोला ठीक है। तो वहीं से फिर अब चूंकि सब लोग, सबका इंटरेस्ट था, सब लोग चाहते थे, तो मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो गया और उसी तरीके से सफर शुरू हुआ और आज 5 साल के ऊपर हो गया इस करियर को, अच्छा रहा है।
1: सर, ये बताइए कि शूटिंग असल में दिमाग का खेल ज्यादा है या फिर हाथों का?
0: देखिए शूटिंग एक साधना है, इसमें किसी एक चीज का रोल अगर हम निर्धारित करें तो ये सही नहीं होगा। ये एक ऐसा गेम है जिसमें कि आपकी ब्लड प्रेशर, आपकी फोकस, आपका माइंड, मतलब आपके शरीर के सारे ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जब तक ये सारी चीजें इन्वॉल्व नहीं है, आपका फोकस नहीं है, आप किसी एक चीज पे निर्भर होकर के इस गेम को नहीं कर सकते। और हाँ, ये जरूर है कि फोकस बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन फोकस तभी बनेगा जब आप फिट
1: फिजिकली और
0: रहेंगे,
1: मेंटली
0: फिजिकली फिट
1: फिट।
0: रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, इकोनॉमिकली फिट रहेंगे। क्योंकि शूटिंग क्या है कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि इसको इकोनॉमिकल बनाया जाए, इसको सभी लोग परस्यू कर सकें, जो हमारा मीडियम क्लास है लोअर क्लास है वो भी खेल सकें, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये एक महंगा गेम है। तो इस वजह से इसमें यही है कि आपको सभी तरीके से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, और जब आप शूटिंग कंटिन्यू करना है, आपको अगर खेलना है नॉट एज अ हॉबी, सिर्फ हॉबी के लिए नहीं, अगर आपको इसमें
1: करियर
0: कैरियर बनाना
1: बनाना।
0: है, इसमें आगे जाना, अच्छा खेलना, इंडिया रिप्रेजेंट करना, तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं कि आप अपने लाइफ स्टाइल को इस तरीके से रखें कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बहुत मेजर समस्या नहीं हो। क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जब हम शॉर्ट चलाते हैं तो उसमें हमारा माइंड एकदम ब्लैंक होता है, और होना भी चाहिए। बट होता क्या है कि जब अगर कुछ भी आपके साथ हुआ है, अगर वो चीज 2 साल पुरानी भी है, आप जब शूट करने जाओगे तो वो चीज ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आने लगती है। तो जिसकी वजह से आपको सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं चाहिए, पावर ही नहीं चाहिए, आपका फोकस सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका मेंटल फिटनेस बहुत अच्छा होना चाहिए।
1: तो सर आप हमें ये बताइए कि क्या शूटिंग करने के लिए कोई उम्र सीमा भी होती है, जैसे हर स्पोर्ट्स में होता है कि इस उम्र तक अगर आपने खेलना शुरू कर दिया है तो आगे आपका स्कोप है, पर क्या शूटिंग में भी

0: ऐसा कुछ होता है?
1: नहीं देखिए, शूटिंग बाकी गेम से बहुत अलग इसलिए है, कुछ गेम हैं मतलब इस तरह से, बट शूटिंग में क्या है कि आप पार्टिसिपेशन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी वो है 10 साल। हमारे यहाँ 10 साल से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी इवेंट में। आप 10 साल के अगर हैं तो आप ओलंपिक भी खेल सकते हैं, और उसके बाद इसकी कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। आप 40 साल में शुरू कर सकते हैं, आप 35 साल में शुरू कर सकते हैं, आप 50 साल में। सब एज कैटेगरी अलग अलग है, 10 साल से लेकर के 16 साल तक हमारे यहाँ सब यूथ में खेलते हैं बच्चे। उसके बाद 16 साल से 18 साल यूथ, 18 साल से 21 साल जूनियर, 21 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं और 45 साल से नीचे के जो होते हैं वो सीनियर कैटेगरी में खेलते हैं, और 45 साल के प्लस जो होते हैं वो सुपर सीनियर हो जाता है, और 60 प्लस में सुपर मास्टर हो जाता है, मास्टर और सुपर मास्टर। फिर उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो वेटरन कैटेगरी आती है। तो इसमें आप नियर अबाउट, हमें जहां तक लगता है हमारे गेम में 85-90 ईयर्स तक के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एज क्राइटेरिया का कोई इशू नहीं, हाँ बस स्टार्टिंग करने के लिए 10 साल होना चाहिए मिनिमम पार्टिसिपेट करने। एक चीज और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब 25 साल, 30 साल, 40 साल के हो गए तो अब कैसे हम स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर सकते हैं या आगे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन है, उनका अपना जॉब है, कोई कहीं पे है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस गेम में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे इंडिया का ही, अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है अभिषेक। ये हरियाणा के रहने वाले हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं हरियाणा हाईकोर्ट में। इन्होंने अपने शूटिंग का करियर 32 ईयर्स में स्टार्ट किया, 32 साल की एज में स्टार्ट किया, जस्ट हॉबी। बट ये था कि वो डेली प्रैक्टिस करते थे, धीरे धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती चली गई, और 1 साल 1.5 साल लगा उनको इंडिया टीम में आने में। 1.5 साल के अंदर वो इंडिया टीम में आ गए, वो वर्ल्ड कप खेले, मेडल उन्होंने लिया, और पिस्टल शूटर हैं ये, बहुत अच्छा उन्होंने किया। और 2024 ओलंपिक में आप देखेंगी, टर्की के एक प्लेयर हैं, 45 ईयर्स के हैं वो, बिना किसी
0: ग्लासेस के,
1: एक्सेसरीज के,
0: हाँ
1: बिना किसी ब्लाइंडर वगैरह के, उन्होंने मेडल वो लेकर के आए। तो
0: जी,
1: हमारे गेम में क्या है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, आपके पास जब भी अगर आधे घंटे 1 घंटे का टाइम मिलता है और आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं।
0: जी सर। तो सर अब आप हमें ये बताइए कि आपके पास अगर कोई खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए आता है तो आप उसमें क्या-क्या क्वालिटीज देखते हैं पहले?
1: हमारे पास जो भी खिलाड़ी आता है तो सबसे पहली चीज तो मैं ये देखता हूं कि उसके पास समय कितना है, और दूसरी चीज ये है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे से। उसके बाद हम लोग बच्चे से बात करते हैं, उसका हाइट वेट ये सारी चीजें देखी जाती हैं, और उसके बाद फिर मैं उन्हें अपने जो हम लोगों का क्राइटेरिया है सिखाने का उनको बताया जाता है कि देखिए इस तरह से इस गेम में होता है, और फिर ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी होंगी, अदरवाइज हम लोग इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप एग्री करते हैं तो आप आ सकते हैं। दूसरी चीज होती है पैसन, जो मेन चीज होती है, बाकी सारी चीजें डेवलप की जा सकती हैं, बट पैसन ऐसी चीज है जो आप किसी के अंदर डेवलप नहीं कर सकते, वो उसका खुद का
0: नेचुरल
1: पर्सनल
0: होता
1: होता है,
0: है।
1: नेचुरल होता है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो बात करने से, बच्चे को ट्रीट करने से पता चल जाता है कि ये किस हद तक हम लोग के साथ जा सकते हैं। मेन ये क्राइटेरिया होता है कि आपका कितना उसका इंटरेस्ट है, कितना पैशन। दूसरा चीज कि बच्चा खुद से आया है या गार्जियंस को लेके आया, ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि
0: जी
1: जो जब गार्जियन बच्चे को लेके आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब प्रैक्टिस हार्ड होती है, क्योंकि एक समय के बाद थोड़ा सा लेवल अच्छा हो जाता है, तो उस समय बच्चा ये कहने लगता है कि सर हमें तो मतलब गार्जियन ने सजेस्ट किया था ऐसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि बच्चा अगर खुद इंटरेस्टेड है, उसका पैशन है, वो उसको कंटिन्यू करना, तो ये बहुत अच्छी चीज है।
0: सर, जैसा कि आपने बताया कि आप हाइट और वेट भी चेक करते हैं, तो क्या हाइट का भी कोई मेजर रोल होता है शूटिंग के गेम में?
1: नहीं, हाइट वेट हम लोग इसलिए चेक करते हैं कि हाइट और वेट से बस ये पता लगाना होता है हम लोगों को कि इस बच्चे को हम लोग किस इवेंट में सजेस्ट करें, कि किस इवेंट में पार्टिसिपेट करने पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी हाइट कम है। हमारे गेम में एक चीज और बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ जैसे डेफ कोई है तो उसके लिए अलग कैटेगरी है, पैरा के लिए अलग कैटेगरी है, और जो नॉर्मल है उनके लिए अलग कैटेगरी। तो सबके लिए हमारे गेम में मतलब कोई ऐसा नहीं है जो इस गेम को नहीं कर सकता, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी इस गेम को कर सकता है, वो कैसा भी हो।
0: तो सर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं शूटिंग में?
1: इवेंट्स शूटिंग में बेसिकली 3 मेजर इवेंट्स होते हैं, पिस्टल इवेंट, राइफल इवेंट एंड शॉटगन इवेंट। पिस्टल इवेंट में होते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल, 25 मीटर रैपिड पिस्टल, 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल एंड 50 मीटर पिस्टल। ये होते हैं पिस्टल के इवेंट्स। राइफल में होते हैं 50 मीटर प्रोन, 10 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर 3 पोजीशन, और राइफल में ही एक अलग कैटेगरी है बिग बोर इवेंट की, जिसकी दूरी होती है 300 मीटर। उसमें भी सेम इवेंट होते हैं, 50 मीटर प्रोन, 50 मीटर थ्रीपी एंड ओपन साइड, पीप साइड

0: ओपन साइट, ये दो कैटेगरी होती है बिग बोर में। और एक इवेंट बचता है हमारा शॉटगन। शॉटगन में क्या होता है कि इसमें बर्ड्स होती हैं, क्ली बर्ड्स होती हैं, जिन्हें हमें हिट करना होता है। वो हवा में
1: अच्छा
0: मशीन के थ्रू हवा में जाती हैं और उन्हें एट अ टाइम हमें हिट करना होता है। जितनी देर वो हवा में हिट कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसमें भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि स्किट है और उसके बाद ट्रैप है, डबल ट्रैप है। ये तीन इवेंट होते हैं और उसी में से एक इवेंट है ट्रैप, जिसमें कि राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने 2004 एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल लाया था।
1: आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी। अब इसके बाद हमें ये बताइए कि जो बच्चे शूटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे?
0: जो लोग शूटिंग में करियर बनाना चाहते हैं उनको मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस गेम को समझें, अच्छे से खेलें, और जब तक आपको इस गेम में समझ में नहीं आने लगे कि नहीं हम इस गेम को समझ चुके हैं, अच्छा कर रहे हैं, या कुछ अचीव करें, पहले सबसे पहले आप कुछ अचीव करना कि एक अच्छा परफॉर्मेंस लाइए। जब आप इस गेम को अच्छे से खेलेंगे, कुछ अच्छा अचीव करेंगे, तो आपको धीरे धीरे जब आप बड़े मैचेस में जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, हम लोग के गेम में बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है कि सभी तरह के खिलाड़ी, सभी तरह के बिजनेसमैन, सभी तरह के आर्मी के सभी जो हेड होते हैं वो लोग आते हैं, मतलब हर तरीके के लोग आते हैं। तो वहां से हमें ऑटोमेटिकली बच्चा ये समझ जाता है कि मैं इस गेम में कैसे करियर बना सकता हूं। कहने का मतलब ये है कि आपको, ठीक है कैरियर बनाना अलग चीज है, बट सबसे पहला यही है क्राइटेरिया कि आपको इस गेम को समझना होगा, इसको खेलना होगा और इसमें कुछ अच्छा अचीव करिए। आगे इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी करिए, चाहे आप पढ़ाई के थ्रू जा सकते हैं इसमें। अभी हमारे जस्ट रिसेंटली 3 साल पहले शूटिंग एज अ कोर्स पीएचडी में इनरोल हुआ है। अब आप शूटिंग से पीएचडी भी कर सकते हैं, तो आप इसमें भी करियर बना सकते हैं, पढ़ाई में भी, आप बिजनेस में भी, जैसे शूटिंग के पार्ट्स हो गए, किट्स हो गई, उसमें भी जा सकते हैं, नौकरी में भी जा सकते हैं, कोचिंग में भी जा सकते हैं, ज्यूरी बन सकते हैं, जज बन सकते हैं।
1: हाँ
0: अभी हमारे यहाँ से भारत के पहले जो ओलंपिक में रेफरी बने हैं पवन सिंह, जो अभी करंट में हमारे एनआरआई, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, तो वो 2 बार से लगातार ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ रेफरी एंड ज्यूरी। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है।
1: सर, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं आपके श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि शूटिंग को आप लोग एक बार जानिए और एक बार अपने जीवन में जरूर इस एक्सपीरियंस को फील करिए। एक बार आप किसी भी रेंज पे, जब जहां भी आप हैं, आपके आसपास जो भी रेंज है, एक बार जाइए और अपने परिवार को भी अपने साथ ले जाइए और एक बार इस गेम को जरूर खेल करके देखिए। ये आपके जीवन में, आपके करियर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है इस गेम की।
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे हर एक सवालों का बहुत ही बेहतरीन ढंग से जवाब दिया है, और श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आपके लिए भी ये लाभदायक होगा और आप भी इससे जरूर कुछ सीखेंगे।
2: तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का ये मार्गदर्शन आपको पसंद आया होगा, और आप में से सभी युवा जो निशानेबाजी का शौक रखते हैं, आपको उचित जानकारी इस मार्गदर्शन से मिली होगी। और हम धन्यवाद करते हैं सत्यम सिंह का भी, जो स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं के बीच निशानेबाजी के बारे में इतनी सारी बातें बताएं। तो दोस्तों, अभी हो गया है मार्गदर्शन, तो थोड़ा मनोरंजन होना भी बनता है। तो सुनते हैं अभी एक प्यारा सा गीत,

0: दोस्तों, हम हमेशा जानकारी के साथ मनोरंजन करना नहीं भूलते हैं, वरना आप कहेंगे कि सिर्फ जानकारियां ही दे रही हैं हमारे युवा साथी, मनोरंजन तो हो ही नहीं रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आपका मनोरंजन हुआ होगा। तो दोस्तों, अब समय हो गया है यूथ डायरी का। यहाँ हम हर दिन सीखते हैं कुछ नए शब्द, उनके अर्थ और उसका सही प्रयोग, क्योंकि जितनी समृद्ध हमारी भाषा होगी, उतनी ही प्रभावशाली हमारी अभिव्यक्ति भी होगी।
1: बिल्कुल, नए शब्द केवल हमारी शब्दावली ही नहीं बढ़ाते, बल्कि हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। तो आइए जानते हैं आज के हिंदी और अंग्रेजी शब्द के बारे में।
0: दोस्तों, आज का हमारा हिंदी शब्द है प्रतिमान, और प्रतिमान का अर्थ होता है आदर्श, मानक या ऐसा उदाहरण जिसे श्रेष्ठ मानकर उसका अनुसरण किया जाए। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपने उत्कृष्ट कार्यों से समाज के लिए मिसाल बन जाता है, तो वह दूसरों के लिए एक प्रतिमान बन जाता है। उदाहरण के लिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक प्रतिमान है, यानी ऐसा आदर्श जिससे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
1: दोस्तों, अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है अबहोर। अबहोर का अर्थ होता है किसी बुरी या गलत बात से अत्यधिक घृणा करना या उसका कड़ा विरोध करना। जैसे हम कह सकते हैं, वी शुड अबहोर वायलेंस एंड ऑलवेज चूज द पाथ ऑफ पीस, अर्थात हमें हिंसा से घृणा करनी चाहिए और हमेशा शांति का मार्ग अपनाना चाहिए।
0: शब्द तो तुमने अच्छे बताए भव्या, लेकिन इसके स्पेलिंग भी बता दो ताकि जो हमारे दोस्त हैं नोट करते हैं उन्हें पता चल जाए।
1: बिल्कुल, अंग्रेजी शब्द अबहोर की स्पेलिंग है ABHOR।
0: तो दोस्तों, आज के शब्द रहे प्रतिमान यानी आदर्श या मानक, और अभोर यानी किसी गलत बात से गहरी घृणा करना।
1: उम्मीद है कि आप इन दोनों शब्दों का प्रयोग अपनी रोजमर्रा की बातचीत और लेख

0: जीवन में अवश्य करेंगे।
1: इन्हीं नए शब्दों के साथ अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर।
0: दोस्तों, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन इतिहास अपने भीतर ऐसे अनगिनत प्रसंग समेटे रहता है जो हमें कई प्रेरणा नई सीख देते हैं। आइए नजर डालते हैं आज के दिन इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर।
1: दोस्तों, 1867 में आज के ही दिन ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट लागू हुआ, जिसके तहत कनाडा, नोवा स्कोटिया और न्यू ब्रसविक को मिलाकर डोमिनियन ऑफ कनाडा की स्थापना की गई। दोस्तों, यह कनाडा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है।
0: दोस्तों, 1949 में भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना की गई। ये संस्था देश में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे को व्यवस्थित करने और उसके मानकों को बनाए रखने का कार्य करती है।
1: इसी के साथ ये भी जान लीजिए दोस्तों कि 1962 में आज ही के दिन भारत की सीमाओं की सुरक्षा और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की स्थापना की गई थी। तब से लेकर आज तक BSF देश की सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
0: वहीं 2017 में भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लागू किया गया। ऐसे ऐतिहासिक कर सुधार ने देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एकीकृत करते हुए एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को साकार किया।
1: इतिहास की ये घटनाएं हमें बताती हैं दोस्तों कि समय के साथ लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय और दूरदर्शी कदम किसी भी देश के विकास और भविष्य को नई दिशा देने का काम करते हैं। इसी प्रेरणा के साथ अब बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ जी, तो चलते चलते हम आ गए हैं रोजगार सूचना की तरफ।
1: दोस्तों, अगर आप भी अपने करियर को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो एक बेहतर अवसर की तलाश में हैं, तो अब समय है रोजगार सूचना का। आइए जानते हैं आज की एक महत्व

0: महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSSC ने वन संरक्षक और वन्य जीव संरक्षक के 708 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 20 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इस फॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट UP SSSC.gov.in पर जा सकते हैं।
0: यदि आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं, तो अंतिम तिथि का इंतजार न करें, समय रहते आवेदन करें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएं। दोस्तों, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की, लेकिन आज का सवाल पूछने से पहले आइए जानते हैं कल का प्रश्न।

0: मदर डे की। लेकिन आज का सवाल पूछने से पहले आइए जानते हैं कल का प्रश्न और उसका सही उत्तर।
1: दोस्तों, हमने आपसे कल पूछा था कि भारत 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता कर रहा है, जिसका सही जवाब है ब्रिक्स। और जिन लोगों ने ये सही जवाब दिया है उनके नाम है मुकेश कुमार प्रजापति सिगरा वाराणसी से, चंदा चंदौली से। इन्हीं के साथ हैं प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ग्राम सिमरौल से हैं रवि मौर्य। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और अब आज का सवाल। हमारा आज का आपसे सवाल है कि वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई। फिर से सुनिएगा दोस्तों कि भारत में वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत किस वर्ष की गई थी।
0: तो देर किस बात की, अपना जवाब हमें हमारी इंस्टा आईडी यूथ AIR वाराणसी या फिर हमारी ईमेल आईडी youthairvns@gmail.com पर भेज दीजिए। हो सकता है अगली बार विजेताओं की सूची में आपका नाम भी शामिल हो।
1: दोस्तों, विदा लेने से पहले बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। विषय है जल प्रदूषण।
0: दोस्तों, कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन आज यही जीवनदायी जल बढ़ते प्रदूषण के कारण संकट में है। नदियों, झीलों और तालाबों में औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक कचरा, रासायनिक पदार्थ और घरेलू गंदगी लगातार मिल रही है, जिससे जल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
1: दोस्तों, जल प्रदूषण केवल जल स्रोतों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, कृषि, जलीय जीवों और पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। दूषित पानी कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है और प्राकृतिक संतुलन को भी बिगाड़ देता है।
0: लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समस्या का समाधान हमारे छोटे छोटे प्रयासों से भी संभव है। पानी को व्यर्थ न बहाना, नदियों और तालाबों में कूड़ा या प्लास्टिक न फेंकना, जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखना और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक रखना, ये सभी कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं।
1: तो हम फिर मिलेंगे नए दिन, नए विषय, नई जानकारियों और नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, पर्यावरण के प्रति सजग रहिए और मुस्कुराते रहिए। आज आप सुन रहे थे शिवानी
0: और मुझे भव्या को।
1: इसी शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम वेद प्रकाश पाठक। डिजिटल इंडिया अभियान का आज 11 वर्ष पूरा हो गई। ए मौका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने की डिजिटल इंडिया अभियान सुशासन के नया दिशा आज देश के समग्र विकास की गति देले हो। पिछला 11 वर्ष में डिजिटल इंडिया अभियान के उपलब्धियन के लेके प्रस्तुत बाई को रिपोर्ट।
1: भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं।

0: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर में प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 का शुभारंभ कयने। इस मौके पर मुख्यमंत्री लोगों से स्कूल चलो अभियान के जन आंदोलन का हिस्सा बनौले का आह्वान कयने।
2: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अधिक बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20 फीसदी का घट करके आज 3-4 फीसदी तक रह गया है। लेकिन मेरा मानना है एक स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। स्कूल चलो अभियान को एक जन आंदोलन का हिस्सा बनाए, हर बच्चे को स्कूल पहुँचाए।
1: महाराजगंज या सीतापुर के सतही प्रदेश के कई गो और जिलों में स्कूल चलो अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन कर गयी। मुख्यमंत्री सहारनपुर में आज 613 करोड़ रुपया से बेसी के लागत के कई गो परियोजना का लोकार्पण आ शिलान्यास कयने। प्रदेश भर में 31 जुलाई ले चले वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का आज से शुरुआत हो गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ में ए अभियान के साथे साथे 11 से 31 जुलाई ले प्रस्तावित दस्तक अभियानों का उद्घाटन कयने है। ए मौके पर श्री पाठक जन जागरूकता रैली के हरियर झंडी दिखा के रवाना कयने और रैली में प्रतिभागो कयने। वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया, अम्बेडकर नगर के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में जन जागरूकता रैली निकाल के लोगों के बीच संचारी रोगन से बचाव का संदेश दे गये। गोरखपुर में अभियान का उद्घाटन करने के बाद महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव मीडिया से बात कहने हैं।
3: पूरे महीने में जो है इस तरह का कार्यक्रम संचालित रहेगा। विभिन्न मलिन बस्तियों में कार्यक्रम होने हैं, वार्ड वाइज भी कार्यक्रम होने हैं। तो इस महीने हम एक सघन अभियान चलाकर इस संचारी रोगों के प्रति जागरूक बनाने का और साथ ही साथ उनको शिक्षित करना है कि इसको क्या क्या हमें फायदे हैं।
1: प्रदेश सरकार अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदा गमन के आरोपियों के जांच कर रहल विशेष जांच दल एसआईटी के 15 दिन का और समय दे ले हो। 15 जून के गठित एसआईटी के 7 दिन के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिन के भीतर आखिरी रिपोर्ट प्रस्तुत कैले का निर्देश दिया गया है, जेकर समय काल ही पूरा हो गयी। विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम आज से लागू हो गयी हो। अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरों आज से लागू हो गयी।
4: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। सेटलिंग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: उन्नाव जिला के बांगरमऊ थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज तड़के एगो स्लीपर बस आकार में भइल टक्कर में 5 जने का मौत हो गई, वहीं कई जने और घायल हमें। एक दुर्घटना वो समय भइल जब हरियाणा से बिहार जा रहल स्लीपर बस वही लेन में आगरा से लखनऊ जा रहल एगो कार के पाछे से टक्कर मार देलस। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। वक्त हो चला है आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की जानकारी देने का, तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात 10:30 पर आज हम आपको सुनवाएंगे गायन। कलाकार होंगी विदुषी किशोरी अमोनकर।

कृषि जगत कार्यक्रम शाम 6:30 पर सुनेगा। इसमें आज आप सुनेंगे खेती के उन्नत कृषि यंत्र विषय पर डॉक्टर अनुपम कुमार नेमा से राकेश यादव की बातचीत। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। आइए आपको कल के कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। खेती की बातें ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल प्रातः 6:05 पर। इसमें करेली खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना आप सुनेंगे कल प्रातः 6:10 पर। स्वास्थ्य चर्चा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल प्रातः 6:35 पर। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ आप सुनेंगे कल प्रातः 6:40 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रातः 7:31 सुनेंगे गायन। कलाकार होंगे संजीव अभयंकर। लोक संगीत सुनेगा 9:50 पर। हमारे कवि कलाकार होंगे विश्वनाथ और साथी। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस ईमेल पर आधारित ये कार्यक्रम आपको सुनाएंगे कल दिन में 11:00। दिन में 12:00 सुनेगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। श्रोताओं को याद दिला दें कल रात 10:30 पर सुनिएगा ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2025 के अंतर्गत ओवल क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल।

अभी आपने राजकमल के संगीत निर्देशन में यशुदास के गाया फिल्म सावन को आने दो का गीत सुना।

0: लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म फर्ज का गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: नवनवत्यधिकचतुश्शतोत्तर नवतिसहस्राधिकाः जनाः अस्मात् प्रकोपात् प्रभाविताः सन्ति। अरुणाचलप्रदेशे समीक्षां विधाय केन्द्रीयमन्त्रिणौ चौहान रिजिजू इत्येतौ असमराज्यस्यापि जलाप्लावेन ग्रस्तक्षेत्राणां निरीक्षणाय प्रस्थितवन्तौ। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवनियुक्तः सेनाध्यक्षः जनरल धीरसेठ इत्येषः वर्धमान सुरक्षा वातावरणस्य समाह्वानानां निवारणाय सेनायाः आधुनिकीकरणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं प्रदत्तवान्। एकत्रिंशत्तम सेनाध्यक्षत्वेन कार्यभारं स्वीकृत्य अद्य प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् जनरल सेठः अधोरेखितवान् यत् भारतीयसेनायाः उद्देश्यं प्रविधीयुतस्य भविष्यस्य कृते सज्जीभूतस्य सेनायाः निर्माणमस्ति। सहैव यश्च प्रत्येकस्मिन् विषये सशक्तं बहुविधक्षेत्रेषु कार्यं कर्तुं च समर्थं भवेत्।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: दिल्ल्यां वसन्तकुञ्जक्षेत्रस्य नेल्सन् मण्डेलामार्गेण सह द्वारिकादूतमार्गं संयोजयन् दिल्लीनगरे अष्टचत्वारिंशदधिकैकशत एई राष्ट्रियराजमार्गस्य कृते षड्मार्गीयसुरङ्गस्य निर्माणाय अद्य सर्वकारेण अनुमतिः प्रदत्ता। अद्य राष्ट्रियराजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनीवैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रियराजमार्गस्य चतुस्त्रिंशत् इत्यस्य 17.7 किलोमीटर सुदीर्घस्य कानपुर कवराईखण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगमनियन्त्रितमार्गस्य निर्माणमपि सर्वकारेण अनुमोदितमस्ति, यत्र संरचनाः षड्मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पनाः सन्ति।
2: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: भारतीय ऋतुविभागः अवदत् यत् आगामि दिनेषु दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु दक्षिणपश्चिम प्रावृट्कालः अग्रे गमिष्यति। आगामि दिनद्वयोः उत्तरप्रदेशे बिहारे उत्तराखण्डे ओडिशाप्रदेशे विदर्भक्षेत्रे च प्रचण्डतः अतिवृष्टेः ऋतुविभागेन नारङ्गवर्णीया पूर्वसञ्चेतना प्रसारिता। फीफा विश्वकप क्रीडायां मेक्सिको देशः अद्य प्रातः मेक्सिको सिटी क्रीडाङ्गणे राउण्ड ऑफ 32 क्रीडायां एक्वाडोर देशं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान्। नॉर्वे देशः अपि टेक्सास नगरे आइवरी कोस्ट देशं 2-1 इत्यंकैः पराजित्य 16तमे चरणे प्रविष्टवान्। इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान भाई कार्यक्रम कृषि जगत।

0: खातो का आजकल।
1: अरे भाई देखा, ये मौसम चलत हो ना, अब मौसमी चीज का तो आनंद पूछा मत।
0: भाई
1: और
0: तो
1: खास करके देखा, ये जो मौसम आम का हो और आम जो ना फलन का राजा हो, और हमन हमेशा खेती बारी के बात कही करीला, तो ये बतावा कि कहाँ से चाहे हाथे में लगे, मुंहे में लगे, चाहे शर्ट में लगे, चाहे धोती में लगे, भाई वो तो हम लेवाही के बा।
0: भाई ऐसन ई फले है। और कहल जाओ ना कि मौसमी फल भाई एगो मौसम में मिली, फिर ओकर मौसम का अगला इंतजार करे के पड़ेला खाए में। तो भाई कहल जाओ कि महीना 2 महीना जोने भी मिलत है ओके
1: हाँ
0: खा लिहल जा, ओकर स्वाद ले लिहल जा। लेकिन यही में ना सुधु भैया देखा आज ना अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस भी है।
1: भाई, यही से तो देखा हम कहे कि यह दिखाई अपन दागी लगल तो तुम्हें याद आ जाई जल्ले ना, ये एक रहस्य देखा तू बुझला ना। हाँ अहे देखा, ये प्रकृति की तरफ से हमहन के जौन उपहार मिलल हो कि जब मौसम परिवर्तन होला तो कौने मौसम में हमरे शरीर के का चाहिए, है ना, ये समझ ला कि प्रकृति में रहे बदे के स्वस्थ, वो प्रकृति की तरफ से अपने आप उपहार के स्वरूप में हमन के मिलल हो,
0: एकदम
1: है ना।
0: उपहार के स्वरूप में जो फल कहत हो ना भैया, कि भाई देखो जब कहल जाला ना, कहे डॉक्टर लोग भी कहे ना, डॉक्टर भैया लोग, कि भाई मौसमी फल खा।
1: खा।
0: काहे
1: हाँ
0: से कि उस देखो वो मौसमी में, वो मौसम में जब वो फल आयल है,
1: हाँ
0: पैदावार भइल है, पेड़ पर लगल है,
1: हाँ
0: तो ई जान लो कि वो हमने के शरीर खातिर
1: आवश्यक हो।
0: एकदम आवश्यक है। और उसे हमने के पौष्टिकता कई गुना ज्यादा मिली, काहे से कि वो मौसम के प्रतिकूल भइल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो यही वजह से कि अपने फल के प्रति भी लोगन का झुकाव होए, आकर्षण होए, ओकरे महत्व के जाने कि फल का कितना उपयोगिता हमान के शरीर बदे हो, बहुत सा ऐसा जौन हो तत्व होला जौन कि फल के माध्यम से हमान के चाहला, है ना, और वही से मिलाला, तो ओकरे बदे जरूरी हो जाला कि जौने मौसम में जौन फल आवत हो ओके ग्रहण करें, थोड़े बहुत जौने मिल जाए, है ना ओके।
0: और सुधु भैया ये जान लग कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मनौला का एक और ही उद्देश्य है ना, कि भाई जोना देश में जोनी फल का उत्पादन कम है। जैसे देखा कहल जाला कि अपने यहाँ जोन खजूर है उतनी जोन गर्म देश हो वहाँ से आवेला, चाहे अपने यहाँ आम हो तो अपने यहाँ से विदेश में जाला। तो भाई जब ओकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब देश मिल के मनावत है, तो भाई जोना देश में जोनी फल का उत्पादन कम है वहाँ का, भाई वहाँ के लोगों के भी तो पौष्टिकता
1: भाई
0: चाहिए।
1: आपस में आदान प्रदान करके ओकर
0: हाँ
1: भरपाई हो जाए,
0: भरपाई हो जा,
1: बोले।
0: और सब लोग जाने कि फल का क्या महत्व है अपने ये पृथ्वी पर, अपने सारे जीव जन मसु कह लो कि प्राणी बदे
1: बिल्कुल
0: मनुष्य
1: बिल्कुल।
0: बदे। तो भाई ओकर लोग महत्व भी जानस, तो देखा यही खातिर ना ये आज अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस भी मनावल
1: एक
0: जाता।
1: बात और बा
0: कहो।
1: कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनावल जाता ना, हर साल एकर एक थीम होले,
0: अच्छा
1: और ए साल का थीम जो है जब तू बतियौला तो हमारे याद आएगल,
0: कहो।
1: एक फल होला और ए साल के जानत हुआ का हा?
0: का
1: खजूर जौन तू
0: अच्छा
1: कहला है। हाँ तो ए साल के जौन फल का थीम हो वो हो खजूर, कि खजूर के प्रति भी लोग जाने, और देखा हो जब बरती ओरती कुछ संप्रदाय के लोग रहा ना एक एक महीना का ना, तो उमन देखा खजूर का सेवन ढेर करना, और डॉक्टर भैया लोग भी कहने कि देखा ये आयरन का बहुत बड़ा स्रोत होला,
0: वाह।
1: है ना, तो एक ही जौन हो अब शुभकामना के रूप में भी देखा ये मनावल जात हो,
0: हाँ
1: भैया अपने जौन प्रिय फल हो अपने प्रिय लोगन के दे के शुभकामना देत हुआ
0: बिल्कुल
1: कि भैया अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस
0: दिवस।
1: जौन तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे एक बदले शुभकामना हो, तो भाई कहे के मतलब ये हो कि एकरे प्रति जागरूकता बढ़त हो
0: और
1: और यही
0: एगो
1: वजह से मनावल भी जाला ही
0: एगो और बात कहो सुधु भैया,
1: भैया।
0: ये जान ल कि आज से ना एगो सप्ताह भी शुरू होत है। आ जो अबे तू कहल है ना मानी कि प्रोग्राम में अला से पहले,
1: हाँ।
0: तो तनि भैया उनके बताओ ओकरे बारे में।
1: अरे भाई देखा, हर साल मनावल जाला ये जौन वन सब महोत्सव होला ना, ये जुलाई महीना में 1 तारीख से 7 तारीख तक साप्ताहिक रूप से मनावल जाला, यही वजह से कि अपन वन का भी अपने जीवन में कितना बड़ा योगदान हो, है ना, कहल जाला कि धरती का सिंगार,
0: हाँ
1: है ना, हरा भरा हो जब कतो चल जा, जब हरियर भरे पेड़ एकदम दिखाई पड़ल, आ जाए सिवाने में चल जा खेत लहरात हरियर दिखाल, मन में एक अजीब प्रसन्नता हो जाले।
0: भाई अभी देखो अबे हाले फिलहाल में जब खेत खाली रहल है
1: हाँ
0: और खेत खाली रहल खाली जमीने जमीन दिखत रहल है लोगन के वो समय, और जब खेते में फसल लहराले हरियाली रहले वो समय का जो भाव रहेला अपने जीवन में या कह जाएगा कि अपने पास, तो ये देखे के मिलेला कि भाई देखो हरियाली में जो अपन मन रहला वो गदगद रहला।
1: एकदम।

0: पंचो राम राम।
1: राम
0: सुधू भैया,
1: राम सत्तू भैया।
0: अरे हम तो कहते हैं कि मार देखा था कि भाई शॉर्ट में लगा ले लो बड़ा आम आज दोपहरियों में।

0: और यही ना, जब जंगल का बात हो ले ना, या कह लो कि पेड़ पौधा का बात हो ले, तो जब देखो कि भाई जहाँ पेड़ पौधा ना हो और ऐसा प्रदेश में, ऐसा देश में चल जा जहाँ मार एकदम जंगल है, बन लगल हो सा, तो ओजा भी जेल पर मनई का मन एकदम गदगद हो जाला कि देखो कितना
1: बिल्कुल
0: बन है और बन का हमने के पास जरूरत भी है।
1: भाई, खाली मन का ही प्रसन्नता गदगद भइले के बात ना, ये आवश्यकता हो।
0: बिल्कुल
1: यही वजह से धरती के श्रृंगार के रूप में पेड़ पौधा देखा बनावल गए,
0: हाँ।
1: जल ना।
0: और एगो और चीज़ है कि अब इस समय ना अपने यहाँ वन महोत्सव सप्ताह मनीला का एगो और ही कारण है शुद्ध भैया, कि भाई अब हमने की मौसम का करोट लेला इस समय और बरसात का शुरुआत होले, तो भाई अगर इस समय ज्यादा से ज्यादा अगर हमने को पौधा लगाओ जी, तो ज्यादा पौधन के बचे का भी उम्मीद रहेला
1: रहला
0: कि वो बच जइह, वो तैयार हो जइह।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: भाई एहू बदे ए सप्ताह का बहुत बड़ा कहल जाए महत्व है, और भैया लोग जितना से हो सके ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगावें।
1: लगावे, और गड्ढा अगर खोदले हो तो ओकर बढ़िया से जो है ना गोबर का खाद डाल करके ओके ढक दे, जैसे कि जब बारिश समय देखा कहीं कहीं भइल हो, कहीं कहीं तो नहियो भइल हो, जब बढ़िया से बारिश हो जाए, मट्टी बैठ जाए, ओकरे बाद मन पौधा लगे है ना, तो निश्चित रूप से वो पौधा पकड़ ली मजे का, जलन
0: और
1: है
0: एक और चीज़ और हम तो से
1: भैया।
0: कहल चाहे शुद्ध भैया, कि देखा अपने जहाँ हमने के समाज में रहते हैं, यहाँ यहाँ कुछ अल्पसंख्यक भाई लोग भी रहते हुए, और अपनी सरकार की तरफ से हमेशा सबके देख रेख बदले, वो चाहे कौनो समाज के लोग हो का, कौनो वर्ग के लोग हो का, तो सरकार की तरफ से भिन्न भिन्न योजना आवेली वो समाज के बढ़ावे खातिर, वो समाज के उत्थान बदे। तो देखा अपने अल्पसंख्यक भाई लोगों बदे ना कई गो योजना है।
1: अरे भाई, चाहे शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे उनके रोजगार से संबंधित हो, उनके समझ ला कि कर्ज लोन है ना, या तो उनके जो वजीफा मिला पढ़ाई में
0: हाँ
1: तेज हुआ आगे तक, या
0: बिल्कुल।
1: आर्थिक रूप से कमजोर हुआ तो ओकरे बदे बढ़ावा बदे मिलल,
0: और
1: तो इस सुविधा लेवे के बदे के जाए के पड़ी जानकारी लेकर के
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: और भाई देखा हम कहते ना कि तू कौनो वर्ग में रह,
1: हाँ
0: देखा हर कुछ कुछ करे के ना, अपने नजदीकी जो नहीं ऑनलाइन केंद्र खुलल हो, जनसेवा केंद्र चाहे कुछ नहीं
1: ब्लाके
0: के,
1: पर चल
0: हाँ
1: जाओ
0: ब्लाके
1: हो,
0: पर चल जा, तहसील पर चल जा, जिला मुख्यालय पर चल जा,
1: और का
0: और हर जगह ना बनल है वो अल्पसंख्यक अगर समुदाय से तू आओ तो करी बदे, या कोनो जाति समूह से आओ तो कोनो वर्ग में आओ तो सबकी कल्याण बदे विभिन्न विभिन्न योजना है, और वो योजना लाभ का है।
1: एकदम बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ओकर लाभ अगर लेवे के है तो देखा हमने के तनी जागरूक होके के पड़ी, और जाके अपने अगले बगल पता करे के पड़ी, जहाँ भी हमने के बताई नहीं जावे कि जिला पर, तहसील पर, वहाँ तो देखो वहाँ से लेके एकर जानकारी और हमने के ओकर लाभ लेवे के चाहिए। तो
1: बिल्कुल।
0: सुधु भैया
1: हाँ सब तो भैया,
0: हम तो कहब ना कि तनी यही कुछ संदेश ऊ हो
1: हाँ
0: जा
1: सने
0: करी,
1: सुनवा दा, फिर खेती
0: तो हम तो कहब कि
1: किसानी के बताई
0: अभी
1: होगी।
0: संदेश नहीं, अपनी खेती में ना का उन्नत यंत्र का जो कृषि का उन्नत यंत्र हुआ,
1: हाँ
0: डॉक्टर अनुपम कुमार नेमा से राकेश यादव बतीले हुआ, ये बतकई हो
1: अच्छा,
0: को,
1: बतकई हो जा पहले
0: हाँ बतकई हो जा।
1: सुनवा दा।
2: आज अपने पंचायती में डॉक्टर अनुपम कुमार नेमा आयल हुन, आप प्रोफेसर हुआ कृषि अभियांत्रिकी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आज हम आपसे बात करें कि खेती में उपयोगी जो उन्नत कृषि यंत्र हुआ उनके बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका पंचायती में स्वागत हुआ।
3: नमस्कार किसान भाई।
2: डॉक्टर साहब, जैसे कि किसान भाई लोग तरह तरह का कृषि यंत्र का प्रयोग करें ना, आप पहले जैसे खेती करें लोग तो बड़ा समय लगा बैली से जुताई करें,
3: जी
2: देसी खाद डालें, अब जमाना बहुत बदलल बाय, तो ये जो कृषि यंत्र हुआ एकर खेती में का महत्व है?
3: किसान भाई, आज सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि कृषि यंत्रों का महत्व क्या है। कृषि यंत्र का प्रयोग करने से किसान कम समय में ज्यादा खेती की क्रियाएं आप कर सकते हैं,
2: जी
3: और कृषि यंत्रों के प्रयोग से कृषि के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की जाती है, और जल जल संरक्षण की जब हम बात करते हैं, या फर्टिलाइजर की जो यूज इफिशिएंसी होती है
2: जी
3: उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है।
2: जी
3: अभी तक हमने ये देखा है, हमने ये पाया है कि किसान भाइयों को ये हमेशा रहता है कि अच्छा बीज और ज्यादा से ज्यादा खादों का प्रयोग करके वो कृषि का उत्पादन बढ़ा सकता है,
2: जी
3: लेकिन कृषि यंत्र भी एक महत्वपूर्ण अंग है, और अगर इनका उचित प्रयोग करें, उन्नत कृषि यंत्र करें, तो कृषि में आप उत्पादकता में वृद्धि पाई जाती है।
2: जी तो डॉक्टर साहब, जैसे खरीफ का फसल का जुताई का मौसम हुआ, किसान भाई लोग तैयारी भी करते हुआ, तो कौन कृषि यंत्र हुआ जो उनकी अनुशंसित मानल जाला?
3: किसान भाई।

0: जैसे कि अब खरीफ का सीजन स्टार्ट होने वाला है, जब हम वाराणसी और आसपास के क्षेत्र की बात करते हैं तो जून के तीसरे सप्ताह में यहाँ पे वर्षा संभावित होती है। लेकिन एक और चीज जो आज महत्वपूर्ण है वो है जलवायु परिवर्तन।
1: जी
0: हम लोग जलवायु परिवर्तन पे बहुत बात हो रही है, और जलवायु का अगर हम कृषि से संबंध देखा जाए तो दो मुख्य फैक्टर हैं, दो मुख्य अव्यय हैं,
1: जी
0: एक वर्षा और दूसरा तापमान।
1: जी जी
0: इनमें भी कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि परिवर्तन दर्ज किया गया है, और उससे कृषि बहुत बहुत बुरी तरह से हम कह सकते हैं कि प्रभावित भी हो रही है।
1: जी
0: वर्षा की जब हम बात करते हैं तो वर्षा में दो महत्वपूर्ण कारक हैं कि एक तो असामान्य वर्षा हो रही है। असामान्य वर्षा का मतलब, तात्पर्य मेरा यह है कि आप देखेंगे कि किसी क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि वर्षा हो रही है और आपसे 1 किलोमीटर दूर कोई वर्षा नहीं है, तो ये असामान्य वर्षा है। पहले जो होती थी, सभी जगह बड़े क्षेत्र में एक साथ वर्षा होती थी। और दूसरा एक और चीज जो देखी गई है वो है कि वर्षा की तीव्रता में वृद्धि। वर्षा की तीव्रता में मतलब, अब
1: जी
0: आप देखेंगे कि बहुत तेजी से आधे घंटे बारिश होगी और उसके बाद एकदम से बारिश रुक जाएगी। जो पहले रिमझिम बारिश होती थी, जो कृषि के लिए उपयोगी थी, वो अब कम देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ वर्षा के दिनों में भी कमी ऑब्जर्व की गई है। तो ऐसी ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है कि
1: जी
0: आप देखेंगे कि वर्षा होती है तो ज्यादा पानी बहता है, जमीन के भीतर कम सोखता है और बहता ज्यादा है, क्योंकि तीव्रता इतनी अधिक होती है कि वर्षा का अप्रवाह होता है, रन ऑफ जिसको हम लोग बोलते हैं, पानी
1: जी
0: ऊपर बहने लगता है।
1: जी
0: तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम इस जो बहता पानी है इसको खेतों में रोकें, और जिससे कि उसको समय मिले और वो जमीन के अंदर जाए, और जो हमारा रिचार्ज है या भूमि के अंदर जो नमी का संरक्षण है उसको बढ़ाए। तो अब हम यंत्रों की बात करते हैं कि बहुत सारे कृषि यंत्र नए नए विकसित किए गए हैं, और इन कृषि यंत्रों का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा खेत का पानी खेत में रोकने की कोशिश करें। तो अब हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि जो हमारे हल हैं, जो कि प्लाउ जिसको हम कहते हैं, जो
1: जी
0: गहरी जुताई के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन कृषि यंत्रों की। तो एक सबसे पहले इसमें नाम आता है मिट्टी पलट हल, जिसको हम MB प्लाउ बोलते हैं। ये
1: जी
0: हल है जो कि गहरी जुताई करता है, और गहरी जुताई का मतलब 20 सेंटीमीटर या उसके आसपास की जुताई। और सबसे ज्यादा अच्छा है कि ये मिट्टी को पलट देता है। मिट्टी को पलटने से तात्पर्य यह है कि ये ऊपर नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, और ऊपर की मिट्टी जो होती है जिसमें कि खरपतवार वगैरह होते हैं वो नीचे चली जाती है, और मिट्टी में दब के वो खरपतवार धीरे धीरे सड़ जाते हैं और खाद का काम करते हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि ये मिट्टी को लूज कर देता है, जिससे कि वर्षा का जो पानी है वो अवशोषित होता है, उसी में रह जाता है, बहता नहीं है। तो एक ये मिट्टी पलट हो गया। ज्यादातर ये ट्रैक्टर चलित मिट्टी पलट हल बाजार में उपलब्ध हैं, दो फार वाले होते हैं। इनके लिए लगभग 50 HP का ट्रैक्टर, 45 HP का ट्रैक्टर उपयोगी होता है, वो उसकी सहायता से इस हल का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा एक और हल इस कड़ी में हम बोलना चाहेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क प्लाउ बोलते हैं, या तवेदार हल होता है। ये जो
1: जी
0: हल होता है इसमें भी दो बड़े बड़े तवे लगे होते हैं, और वो कहीं ना कहीं झुके होते हैं। इस तवेदार हल का प्रयोग उन क्षेत्रों के लिए किए जाते हैं जिसमें कि नीचे हो सकता पत्थर हो, चट्टाने हो या जड़े हो, तो ये तवेदार हल उस जड़ों के ऊपर को काटते हुए आगे निकल जाते हैं। तो ये दो जो मुख्य हल हैं जिनका कि प्रयोग ज्यादातर समर प्लाइंग, जिसको हम ग्रीष्मकालीन जुताई कहते हैं, उसमें किसानों को करना चाहिए और खेत को तैयार कर लेना चाहिए। इसके अलावा एक
1: जी
0: सबसॉइलर का भी उपयोग होता है। इसको हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कम से कम किसान 3 साल में एक बार सबसॉइलर का प्रयोग करे। सबसॉइलर करता क्या है कि 50 सेंटीमीटर गहरी जुताई करता है, या जो मिट्टी में एक हार्ड लेयर बन जाती है उसको तोड़ देता है, और पानी नीचे की ओर जाता है या जड़ों के विकास में सहायक होता है। एक और चीजल प्लाउ, एक और इसी कड़ी में एक उपलब्ध कृषि यंत्र है। चीजल
1: जी
0: प्लाउ मिट्टी को पलटता नहीं है, लेकिन एक कड़ी मिट्टी को उसमें पेनिट्रेट करता है, उसमें अंदर जाता है और उस मिट्टी को ढीली कर देता है, लूज कर देता है। जब मिट्टी ढीली होगी, लूज होगी, तो पानी जो वर्षा का पानी होगा वो जमीन में अवशोषित होगा और पानी बहेगा कम। तो ये चार कृषि यंत्रों की अगर हम बात करें, जो कि इसको हम लोग प्राथमिक भू परिष्करण की श्रेणी में लाते हैं, जहां पे मिट्टी को खोलना, गहरी जुताई करना, मिट्टी को पलटना, ये सब काम होते हैं। किसान भाइयों को हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि ये बहुत ही उचित समय है कि इन कृषि यंत्रों का प्रयोग करके खेत की जुताई कर ले, गहरी जुताई कर ले। अब जैसे ही वर्षा शुरू होगी तब हम लोग खेत जुता हुआ होगा, तो उसके बाद हम जो सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स होते हैं, जिसको हम द्वितीयक भू परिष्करण कृषि यंत्र बोलते हैं,
1: जी
0: इसमें हैरो आता है, कल्टीवेटर आता है,

0: और हमारा रोटावेटर आता है, ये वो कृषि यंत्र हैं जो कि बीज शैया की तैयारी कर देते हैं। आपकी मिट्टी की जुताई पूरी है, पहले से तैयार है, हम इन कृषि यंत्रों के उपयोग से जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं उनको तोड़ सकते हैं, चाहे वो डिस्क हैरो हो जिसमें कि तवे लगे होते हैं, जनरली हम देखते हैं 10 से 12 तवे होते हैं और आगे पीछे होते हैं, आगे के तवे मिट्टी को बाहर की ओर फेंकते हैं और जो पीछे वाले तवे होते हैं वो मिट्टी को अंदर की ओर फेंकते हैं, और जो मिट्टी के बड़े ढेले होते हैं उनको तोड़ देता है। कल्टीवेटर, ज्यादातर किसान कल्टीवेटर का उपयोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, वो जुताई के लिए भी इस कृषि यंत्र का उपयोग करते हैं, लेकिन इससे बहुत जो बोल सकते हैं कि कम गहरी जुताई होती है, हाँ ये मिट्टी के ढेले को तोड़ने में सहायक होती है। अभी एक जो नया कृषि यंत्र है जिस पर कि सरकार सब्सिडी भी दे रही है, जिसको हम रोटावेटर के नाम से जानते हैं, ये भी अच्छा एक कृषि यंत्र है। ये ट्रैक्टर के पीटीओ से चलित होता है और मिट्टी के ढेले को बारीक कर देता है और एक लेवल आपका तैयार, लेवल सरफेस जिसको बोलते हैं, जहां पे कि हम आगे बीज, जिसको बीज शैया की तैयारी बोलते हैं, बीज की सीधी बुआई कर सकते हैं, उस तरह का खेत ये यंत्रों के प्रयोग से हम लोग तैयार कर लेते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब जो है ना कि ये तो बुआई की बात होगी, लेकिन आज जो है ना कि खेती किसानी में जो है ना इतना यंत्र आ गया बने कि बुआई से लेकर के उनके निराई गुड़ाई से लेकर के या उनका कटाई तक कुल यंत्र बनल बना जेकर किसान भाई लोग प्रयोग भी करत हो। तो डॉक्टर साहब एक ही क्रम में जो है ना कि ये जानकारी देवल जाए कि जैसे बुआई करत के समय जो ना कौन कौन कृषि यंत्र आ गए बाय और उपयोग होते बाय।
0: हाँ, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि चूंकि जलवायु परिवर्तन में एक चीज हम लोग जो देख रहे हैं कि वर्षा की तीव्रता जो हो गई है वो बढ़ गई है। वर्षा की तीव्रता बढ़ने से हमारे को ज्यादा पानी बहता है और जमीन के नीचे पानी कम जाता है, तो ऐसे स्थिति में हमारी जो फसल है उसको हम लोग को दोनों अवस्था बचाना है। अगर ज्यादा पानी गिर गया तो पानी लगेगा, तो कुछ फसलें जैसे कि तिल्ली की फसल है, मक्का की, बाजरा की, ये अगर खेत में पानी भर जाएगा तो बहुत जल्दी खराब होने लगती है, अरहर की फसल है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को बहुत सारे नए कृषि यंत्र आए हैं जो कि भूमि में, जो भूमि का जो समतलित भूमि में पहले जो किसान सीड ड्रिल के द्वारा या ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा जो बुआई होती थी, अब उसको हम लोग बोलते हैं कि उसमें जो उसकी संरचना है, भूमि की जो सरफेस है, उसमें कुछ बदलाव करके बुआई करते हैं। तो जैसे कि इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, चार पांच कृषि यंत्र हैं मुख्य रूप से, इसको हम बोलते हैं बीबीएफ प्लांटर, एक बड़ा नया नाम और बड़ा प्रचलित नाम है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड बेड फरो प्लांटर्स हैं। ऐसे एक रिज फरो प्लांटर है, एक रेज्ड बेड प्लांटर है, ये कुछ ऐसे नए कृषि उपयोगी यंत्र आए हैं जो कि आपको जमीन में जो सरफेस है, भूमि की सतह है, उस पे इस तरह की संरचना बनाते हैं कि हम लोग जैसे रेज्ड ब्रॉड बेड प्लांटर की बात करेंगे तो ये 90 से 120 सेंटीमीटर चौड़ा एक बेड बनाता है, एक शैया बनाता है, उसके बाद 45 सेंटीमीटर की चौड़ाई की एक नाली बनाता है। हम लोग जो बुआई करेंगे वो बेड के ऊपर करेंगे और नाली जो होती है वो अधिक पानी की दशा में जल निकास का काम करती है, और कम पानी गिर रहा है तो यही नालियों में जो जल होता है वो संरक्षित होता है और धीरे धीरे ये प्लांट की रूट को मिलते जाता है। और इसमें मुख्यतः खरीफ में तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें मक्का की बुआई कर सकते हैं, तिल की, और रबी में ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही आजकल प्रचलित हो रहा है। इसमें क्या करते हैं कि फरों में पानी दे देते हैं, अगर आपके पास सूखा पड़ रहा है तो इन नालियों में हम लोग सिंचाई का जल दे देंगे, तो ये पूरे बेड को नमी पैदा कर देता है और फसल का उत्पादन अच्छा करता है। ऐसे ही एक और है, रेज्ड बेड प्लांटर की हम बात करेंगे। रेज्ड बेड प्लांटर में भी हम भूमि की सतह को ऊपर कर देते हैं और उसमें मक्के वगैरह की बुआई हम करते हैं। एक और जो तकनीक है जो हम जिसके बारे में जरूर बताना चाहेंगे कि रिज फरो प्लांटिंग की हम बात करेंगे, ये अरहर के लिए विकसित तकनीक है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा, और जो किसान भाई अभी बीज को फेंक के अरहर की बुआई करते हैं उनको हम ये कहेंगे कि इस मशीन का उपयोग करें, रिजर सीडर के नाम से आता है, और इसमें कूड़ के ऊपर बिजाई करें अरहर की और नाली में, नाली का उपयोग करेंगे जिससे कि जल निकास भी हो सकता है और पानी का संरक्षण भी हो सकता है।
1: मशीन डॉक्टर साहब कहाँ मिली?
0: ये आजकल सभी जगह उपलब्ध है, यूपी एग्रो अगर हम लोग बात करते हैं वहां पर भी मिलता है, और बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो मशीन बनाते हैं, वो लोग ये मशीन को उपलब्ध करा रहे हैं।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे आप बता देने कि जुताई के लिए कौन कौन कृषि यंत्र हुआ और बाद बुआई के लिए कौन कृषि यंत्र है, अब ये बताएं कि फसल लग जाले ओकरे बाद उसमें निराई गुड़ाई के लिए भी कोनो यंत्र आयल है कि ना भाई?
0: निश्चित रूप से, जैसे कि पहले पारंपरिक निराई की हम बात करते थे तो खुरपी से किसान भाई निराई करते थे, इसमें बहुत अधिक समय भी लगता है और

0: श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। अब ऐसे कृषि यंत्र आ गए हैं जो कि पेट्रोल से डीजल से चले थे, पावर वीडर्स हम बोलते हैं। और ये अगर आपने फसल को लाइन लाइन में बुआई करी, पहले जो क्या होता था किसान छीट के बुआई करते थे, उसमें ये संभव नहीं था, लेकिन इसीलिए अब अनुशंसित किया जाता है कि आप सीड ड्रिल से बुआई करें, ये डिफरेंट प्लांटर से बुआई करें, जिससे फसल एक लाइन में हो। उस लाइन के बीच में अगर कोई खरपतवार आता है तो ये छोटे ऐसे कृषि यंत्र आ गए हैं, छोटे छोटे कृषि यंत्र हैं जो कि पेट्रोल से डीजल से चलते हैं, बैटरी से भी चलने वाले हैं, और ये उसके दो फसलों की लाइन के बीच में निराई का काम करते हैं। इसको हम लोग पावर वीडर भी कह सकते हैं, और हाथ से चलने वाले हैंड वीडर्स भी हैं, ड्राई लैंड वीडर्स हैं, इन सब का भी हम प्रयोग करते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब यह समय तो खरीफ की फसल जो है लगावल जाता है, कुछ दिन में एकर कटाई भी हुई अक्टूबर वगैरह में, तो एकरे कटाई के लिए भी कृषि यंत्र आ चुका है मार्केट में?
0: निश्चित रूप से कटाई के लिए पहले से ही हम लोग अगर हार्वेस्टर कंबाइन की बात कर रहे हैं जो कि प्रयोग में लाए जा रहे हैं, रीपर मूवर ये भी कृषि यंत्र हैं जिनके द्वारा केवल फसल को कटाई करते हैं और थ्रेशर से इसकी फिर मड़ाई कर लेते हैं। और अगर एक ही बार में करना है तो कंबाइन एक कृषि यंत्र है जो बहुतायत में उपयोग में लाया जा रहा है, इससे कटाई मड़ाई एक साथ एक बार में की जा सकती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहब कि जैसे कोनो किसान भाई लोग जो नहीं, जितना आप कृषि यंत्र बतौनी है जो खेती में उपयोगी है, एक अगर लेवल चाहे तो वो कहाँ संपर्क करे, आई में का कोनो सब्सिडी मिले ले का?
0: निश्चित रूप से सरकार का ये कोशिश है कि कृषि यंत्रों को एक ग्रुप में बना लिया जाए, और एक जो हम लोग बोलते हैं कि सभी कृषि यंत्रों को किसानों को खरीदने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर का एक कंसेप्ट आता है जिसके लिए 80% सरकार अनुदान देती है, और किसानों को एक अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप या FPO के माध्यम से इसको खरीदे, तो जो टोटल लागत होगी उसमें 20% किसानों को वहन करना होगी और 80% सरकार उस पर अनुदान देती है। और इस तरह से क्योंकि तो कृषि यंत्रों का केवल 6 महीने में एक ही बार प्रयोग होता, तो सबको हम हमेशा ये भी बोलेंगे कि इसको हर को अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर एक ग्रुप बना के खरीदें तो सभी लोग उसका बारी बारी से प्रयोग करेंगे, तो इसमें निश्चित रूप से किसानों पर जो भार पड़ता है इसकी खरीददारी में वो भी कम होगा।
1: जी, तो डॉक्टर साहब जो ना डॉक्टर अनुपम कुमार नेमा जी, आज आप अपने स्टूडियो में ही ना, और खेती में कौन कौन उपयोगी कृषि यंत्र हुए पर इतना विस्तृत से जानकारी हमारे किसान भाई लोग के देना, एक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तू भैया
3: हाँ भैया,
2: बड़ी नगद के बात कही रहा है भाई,
3: हाँ
2: है
3: हो
2: खेती में उपयोगी जो उन्नत कृषि यंत्र हुआ और इसे अपन खेती कितना उन्नत करत है ना।
3: देखो मैं आवत सुधीर भैया कि देखो पहले हमनी के जोत कैसन रहे, खेतन में नमी कैसन होके, कितना महीन हो पावे, आ उसे और अब में देखा कितना अंतर हो गई कि
2: बिल्कुल
3: एकदम खेत रंग बन के बढ़िया हो जाता बोवे के समय।
2: भाई तकनीकी का तो अपन महत्व है, यही वजह से ना अपने जो कृषि विज्ञानी भैया लोग हुआ दिन रात मेहनत करत हूँ कि भाई अपने उत्पादन के कैसे बढ़ावल जाए,
3: बिल्कुल
2: कृषि में नया नया प्रयोग करत हुआ, और प्रयोग जब सफल होता तो हमारे तोहरे तक वो आवत हो जब तो ओकर प्रयोग हमन खेते में करत है, इससे उत्पादन बढ़त है।
3: तो डॉक्टर अनुपम कुमार नेमा से राकेश यादव कई बात कही रहा भैया लोग सुन लिया ना, और हम कहब ना भैया कि अब हाई खिलौना ना खिलौना लोग गीत है सुकेशी ऋषभ का,
2: अच्छा अच्छा
3: आवाज सुनल जाए और भैया उनके भी
2: अरे भाई
3: सुनवावल जाए।
2: सुनवाद खेलल जाता है खिलौना से।

0: सत्तू भैया
1: हाँ भैया,
0: बचपना याद आ गेल हो।
1: बिल्कुल याद करा
0: हाँ
1: दिया सुकेशी ऋषभ बहिन। देखा उनका कितना बढ़िया खिलौना गीत रहला। अब भैया
0: चला चलावत हमके काली का कार्यक्रम बता दे पंच भैया लोगन
1: बिल्कुल
0: के।
1: बता देते हैं, तो बिहाने जो 6:05 पे अपन कार्यक्रम होला ना खेती की बातें,
0: हाँ
1: तो ओमे करेला का खेती कैसे करे के है ये विषय पर जानकारी दी है अपने दिनेश कुमार सिंह। और संध्या के 6:30 पर जो अपन ये कार्यक्रम होला कृषि जगत ना, एमे पशुअन में लंपी बीमारी का होला, ओकर कारण का है, लक्षण का है, ओकर बचाव कैसे हुई, ये विषय पर डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर अली भैया से
0: बताइए
1: बात
0: ना
1: कही
0: जन।
1: हुई।
0: हाँ तो हमके भी एक साथे चला के बुलाओ तो पंच भैया लोगों से ज्ञान लेवल जाए। तो
1: बिल्कुल
0: पंचो
1: आज्ञा लिया जाए। पंचो राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है अंग्रेजी कार्यक्रम। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। इन इंग्लिश प्रोग्राम टुडे वी नाउ ब्रिंग यू अ टॉक द एथिक ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। टॉकर इज सोनिया कुमार।
1: Good evening, listeners. Today, I am going to tell you something about the ethics of sharing information online. With great power comes great responsibility. We have all heard this quote before, and in today's digital world, it's more relevant than ever. Every day, billions of people share photos, opinions, and information online. With a single tap, our thoughts can reach thousands.

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रोग्राम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस AIRVNS@gmail.com। जी हाँ श्रोताओं, अब आप मेल के जरिए भी अपनी फरमाइश के फिल्मी गाने सुन सकते हैं। प्रोग्राम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस में आकाशवाणी वाराणसी से हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, यानी इस मेल पर आपको अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचानी है AIRVNS@gmail.com। तो अब खतों, फोन इन, व्हाट्सएप और SMS के बाद अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाइए मेल के जरिए भी, और सुनिए फरमाइशी गीत एक्सप्रेस प्रोग्राम। तो अब हम हैं आपके साथ हर घड़ी, हर पल और हर प्लेटफॉर्म पर। आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। एक जरूरी सूचना, श्रोताओं के लोकप्रिय फरमाइशी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश का प्रसारण किया जा रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग आकाशवाणी वाराणसी के लिए प्रत्येक बुधवार को सुबह 10:30 से होगी। हमारा फोन नंबर है 2221052, यानी 222-1052। वाराणसी का STD कोड है 0542 अर्थात 0542। प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 11:30 से और रविवार को दिन में 12:00 से 1:00 तक किया जाएगा। साथ ही श्रोताओं, पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के लिए भी आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। तो भाग लीजिए हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में और मेल भेजिए पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में।

पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार साधना निवासी ग्राम लखक थाना कछवा जिला मिर्जापुर से दिनांक 12/5/2026 से लापता हैं। इनके संबंध में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 40 वर्ष, कद 5 फीट, दोहरा बदन और रंग सांवला है। इनका चेहरा लंबा और आंखें काली हैं। घटना के समय इन्होंने लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो कृपया अपने नजदीकी थाने या फिर इस पते पर सूचित करें। पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर।

पुलिस अधीक्षक जनपद वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार गीता निवासी फत्तेगंज थाना लोहता वाराणसी से दिनांक 10/6/2025 से लापता हैं। इनके संबंध में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 50 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। इन्होंने घटना के समय हरे रंग की साड़ी पहने हुई थी। किसी व्यक्ति को अगर इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो कृपया अपने नजदीकी थाने या फिर इस पते पर सूचित करें, पुलिस अधीक्षक जनपद वाराणसी। कोई भी व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बीबी जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7000

0: 145 करोड़ रुपए है।
1: प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में, कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है, ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेसवे की तरह का है, 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, कानपुर हमीरपुर महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे, बीओटी टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिन विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ है वो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा जो यहाँ के विकास को और गति देगा।
2: दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है रोड की कनेक्टिविटी रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाएं, जिससे भावी पीढ़ी समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।
2: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं है, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए SIT ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने SIT को आगामी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले 23 जून को SIT के प्रमुख सदस्य लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन VVGRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के 298 रुपए 80 पैसे से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327 रुपए

0: 40 पैसे प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि की गई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सृजनशील योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनमोन्मुखी हुई है। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल भुगतान, डीबीटी, यूपीआई, डिजी लॉकर जैसी ऑनलाइन सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और सुगम बनाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: टीईटी परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ से 30 जुलाई तक चलने वाले प्रदेश व्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जनपदों में मानसून सक्रिय रहा। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, संभल समेत कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल प्रदेश भर में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
3: मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम रसरंग।

अभी आपने अनुराधा पौडवाल और मनोहर उदास के युगल स्वरों में समीर का लिखा गीत सुना, जिसे धुन दी थी नदीम श्रवण ने और फिल्म थी सड़क।

आनंद मिलन के संगीत निर्देशन में अभी आपने संगीत फिल्म का ये गीत सुना। आवाजें थीं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की, और ये है कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अनुराधा पौडवाल के गाए फिल्म साथी की इसके साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रसिद्ध कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार थे प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम रसमाधुरी।

रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने अनजान का लिखा गीत सुना, जिसे अपनी आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने, और फिल्म थी वंदना।

तीसरी कसम, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा गीत सुना जिसे अपनी आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने और धुन तैयार की थी नौशाद ने। फिल्म का नाम गंगा जमुना था।

अभी आपने फिल्म गजल का ये गीत सुना। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना शाही के थे और संगीत मदन मोहन का। और ये है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: मोहम्मद रफ़ी गाए फिल्म पालकी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम रसमाधुरी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9

0: 80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
3: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत

0: और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
1: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी

0: स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में

0: विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Center notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के तहत बढ़ी हुई उजरतों का इतलाक आज से मुल्क भर में हो गया है। देही तरक्यात की वजारत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहें तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में बढ़ा दी गई हैं। वजारत ने कहा है कि पहली मरतबा 300 रुपये यौमिया की उजरत की एक अबूरी बुनियादी शरह मुतारिफ कराई गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस प्रोग्राम के तहत कोई भी नोटिफाइड उजरत इस सतह से कम ना हो। विकसित भारत जी राम जी के तहत कौमी औसत उजरत एमजी नरेगा के तहत 298.80 रुपये यौमिया से बढ़कर 327.40 रुपये यौमिया हो गई है, जो कि 10% का औसत इजाफा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज रहनुमा खतूत जारी किए हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की बुनियाद पर गाड़ी के हादसे में हलाक होने वाले मुतासरीन या दावा पेश करने वाले जख्मियों की सालाना आमदनी का तायुन अदालतें किस तरह करें। गाड़ियों के हादसे की सूरत में मुआवजों में यकसानियत लाने की गरज से एक अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तनख्वाह पाने वाले अफराद के लिए पिछले बरस की इनकम टैक्स रिटर्न ही सालाना इनकम का तायुन करने के लिए काफी होगी। अपना रोजगार आप चलाने वाले अफराद के सिलसिले में अदालत ने कहा है कि पिछले 3 बरस में दाखिल की गई ITR में बताई गई औसत आमदनी को ही आमतौर पर रेफरेंस पॉइंट बनाया जाएगा। जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि मोटर गाड़ियों के एक्ट के तहत सालाना आमदनी का हिसाब किताब लगाने के लिए कोई एक तयशुदा फार्मूला नहीं हो सकता, इसलिए उसने तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन और अपना रोजगार खुद चलाने वाले अफराद के दरमियान वाजह तफरीक कायम की है, ताकि उनकी अपनी अपनी ITR की बुनियाद पर मुआवजे का तायुन किया जा सके। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आबादी से मुतालिक तब्दीलियों के सिलसिले में आला सतह की कमेटी से कहा है कि वो जल्द अज जल्द अपनी सिफारिशात पेश करे। नई दिल्ली में कमेटी के साथ एक मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने यह हिदायत दी। कमेटी ने वजीर दाखला को मुत्तला किया कि वो मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों का दौरा करेगी, ताकि आबादी से मुतालिक तब्दीलियों के बारे में बर मौका इत्तलात हासिल कर सके और मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सके। कमेटी ने जनाब शाह को बताया कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से मुतालिका मालूमात हासिल करने की गरज से एक तफसीली सवालनामा पहले ही तैयार किया जा चुका है, जिससे उनके ये दौरे ज्यादा बामानी और ज्यादा तामुल पर मबनी हो सकेंगे। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरपर्सन पीपी चौधरी ने लोकसभा और रियासती कानून साज असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ मुनक्किद करने की जरूरत पर जोर दिया। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात का एक साथ इनेकाद करने से हुक्मरानी का निजाम मुस्तहकम होगा, बार बार होने वाले चुनाव से खलल अंदाजी में कमी आएगी और ये मुल्क की मईशत के लिए फायदेमंद रहेगा। जनाब चौधरी ने कहा कि इंतखाबात का एक इनेकाद कराने का ख्याल नहीं है और इंतखाबी कमीशन, लॉ कमीशन और माहिरीन पर मुश्तमिल दीगर इदारे बरसों से इसकी तजवीज पेश करते रहे हैं। एक मुल्क एक इंतखाब के फवाइद बयान करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि इससे मिसाली जाब्ता अखलाक के बार बार निफाज में कमी आएगी।
2: राष्ट्र प्रथम की नीति सोच करके आज देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है कि लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ हों। ये सोच जो है बहुत लंबे समय से चल रही, लेकिन उसको बिल के रूप में लाने का काम पहली बार हुआ।
1: मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने डेंगू से मुतालिक तैयारियों के बारे में दिल्ली सरकार के साथ एक जायजा मीटिंग के दौरान अवामी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि टीबी मुक्त भारत अभियान में तेजी आ सके। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि इस मुहिम से मुतालिक तमाम इत्तलात और मालूमात सादा और आसानी से समझ में आने वाली जबान में होनी चाहिए, ताकि अवाम तक वसी तर रसाई को यकीनी बनाया जा सके। भारतीय बहरिया के बहरी जहाजों INS तरकश और INS इक्षक ने सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया पर लंगर अंदाज होने का अपना दौरानिया मुकम्मल किया। वजारत दिफा ने आज बताया कि इन बहरी जहाजों का यह दौरा बहरे हिंद खित्ते में दोस्ताना बहरी मुल्कों के

हालत मेरी अब ये हो गई है जैसे मेरी कोई चीज़ खो गई है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंजुमन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंजुमन, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है रूपक, चौथे पहर की धूप, लेखन एवं प्रस्तुति उमेश दीक्षित की।
1: अरे क्या बिट्टू की चिट्ठी आई है?
2: तुम्हें तो पत्ता भी खड़कता है तो लगता है बेटू की चिट्ठी आई है।
1: बहुत दिन हो गए, उसकी कोई खबर नहीं मिली। न जाने बच्चों का क्या हाल है।
2: अच्छा अच्छा, अब भीतर चलो, अघेनी ठंडी हवा लग गई तो फिर गठिये का दर्द उठाएगा।
1: तुम एक दर्द की बात करती हो।
3: जीवन यात्रा आरंभ होकर वृद्धावस्था के अंतिम पड़ाव तक पहुंचती है। अंकगणित के हिसाब से यह अवधि भले लंबी लगे, लेकिन पता नहीं चलता कि वक्त कब और कैसे बीत जाता है।

0: यह सच तो है किंतु सापेक्ष सत्य। बचपन का भोलापन, किशोर अवस्था का संभ्रम और युवावस्था का उन्माद अथेड़ होते होते संयत और स्थिर होने लगता है।
1: भारतीय चिंतन जीवन को एक समग्रता के रूप में लेता है, एक निरंतर प्रवाहमान चक्राकार गति, जहां अथ और इति की सरल रेखा संभव नहीं होती।
0: इसीलिए हम जीवन मात्र को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। जन्म और जन्मांतर इसी सोच के परिणाम हैं।
1: शायद यहीं से हमारा सोच पाश्चात्य विचारधारा से अलग होता है, जहां मात्र भोगवादी प्रवृत्ति की बात ऊपर रहती है।
0: नियति और भाग्य दोनों शब्दों में यही अंतर है। हमारी नियति मनुष्य होने की है, किंतु वो मनुष्य कैसा बने अपने पुरुषार्थ से, वो हमारे हाथ में है, और जिसका पर्याय है भाग्य।
1: कनपटियों के बाल चांदी होने लगे, पेट की बढ़त स्थाई और सिर के बाल कम, तो समझिए कॉमेडी खत्म और नाटक का अवसाद अंक प्रारंभ।
0: पिच के गाल, लड़खड़ाती चाल, बाकी बचे एक दो दांत, न आंख से सूझे न कान से पूछे, भाई बंधु परवाह नहीं करते। हाय बुढ़ापा, वाह बुढ़ापा।
1: आप किसी हरे भरे उद्यान से बाहर निकलें और सामने तन मन झुलसाता रेगिस्तान मुंह बाए खड़ा हो,

0: आपको कैसा लगेगा? यही हालत होती है सेवानिवृत्त वृद्धजनों की।
1: वैसे प्रकृति का नियम है कि पेड़ पीले पत्ते झड़ने देता है और नए कोपलों की परवरिश में जुट जाता है।
0: जिंदगी की पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटते हुए खिलाड़ी के मन में यही आशंकाएं उठती हैं कि वो अब अनुपयोगी हो गया। पश्चिमी देशों में बूढ़ा होना एक अभिशाप सा है और इसीलिए एक बड़ी समस्या भी।
1: अपने देश की संस्कृति और संयुक्त परिवार प्रणाली ने वृद्ध जनों को काफी कुछ संभाल कर रखा,
0: किंतु आज के सुपरफास्ट युग में संयुक्त परिवार प्रणाली भी टूट रही है। अम्मा की धोती के पल्लू में बंधी चाबियां अब नई बहू के कब्जे में जा रही हैं, और मां है जो धरती की तरह चुपचाप इस परिवर्तन को झेल रही है, निरुपाय असहाय।
1: अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ एजेड के अनुसार इस समय विश्व में बुजुर्गों की आबादी लगभग 70 करोड़ है। जर्मनी और अमेरिका में इनका प्रतिशत काफी है। अपने देश में भी सन 2000 तक वृद्ध जनों की संख्या संभवतः 9-10% हो सकती है।
0: ये एक ज्वलंत प्रश्न है जो आपके, हमारे और सबके सामने है। समाज और सरकार दोनों को ही अपना दायित्व निभाना है।

0: वैसे शांतनु की तरह अक्षय यौवन की इच्छा वाले लोगों की कमी नहीं है हमारे बीच में, जो किसी न किसी नुस्खे या तरकीब से उम्र के बढ़ते सैलाब को रोकना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं डॉक्टर श्रीधर शर्मा, उप महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं भारत सरकार।
1: वृद्धावस्था एक वास्तविकता है, एक रियलिटी है, और वो रियलिटी जिसमें कि हर एक को जाना है। मेडिकल एंगल से बताना चाहूंगा कि इस अवस्था में आदमी में कई तरह के चेंजेस आते हैं। साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, शारीरिक अवस्था में चेंजेस आते हैं, जैसे सामाजिक चेंजेस आते हैं, आर्थिक अवस्था में चेंजेस आते हैं। और डॉक्टर के लिए विशेष करते क्योंकि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर
2: जी,
1: हार्ट डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डायबिटीज काफी ज्यादा होती है
2: जी।
1: और इस उम्र में ये बीमारियां ज्यादा ही नहीं होती, बल्कि उस बीमारियां बड़ी क्रॉनिक होती हैं
2: जी,
1: जिसमें एक लंबा इलाज चलता है। वृद्धावस्था को दूर रखने के लिए एक सबसे बड़ी जरूरी चीज है वो ये है कि आदमी के जो सेंसरी स्टिमुलेशन है उनको जितना हो सके वो प्रजर्व किया जा सके।
3: ये चौथेपन की धूप कितनी तीखी होती है, कितने भीतर तक बैठकर जीवन रस सोखती है, ये आप उन चेहरों को देखकर जान सकते हैं जिन पर पड़ी झुर्रियों और दमित पीड़ा ने उनका असली नक्शा ही बदल दिया है। ये है जिला अजमेर राजस्थान की मीरा और दिल्ली की ओमवती।
4: बूढ़ा पगड़ा खोटा है, गोडा दुखता है, कमर दुखती है, सर दुखता है, हड्डी हड्डी दुखती है, तो ईंट मसाला डालना पड़ता है। बीमार हो जाता तो भूखा रो सारा बिचार बच्ची सब, क्या खाते है? 20 रुपया मिलते है दाढ़ी का, तो इसको बिचा बच्ची को खुआऊं कि मैं खाती हूँ? कोई खुराक नहीं है, 20 रुपया में क्या खैर, क्या दाल रोटी पूर्ति नहीं होती है।
5: मेरी उम्र है 60-65 साल के करीब होगी।
0: कितने बच्चे हैं आपके?
5: मेरे 4 बच्चे हैं जी। बस जी ऐसा है कि पैसे की सुखी नहीं है इंसान को, इसको सोचे कि पैसा, कार, गाड़ी, जो भी बंगले हैं, इसी का सुख है, तो इंसान को बुढ़ापे में पैसे का सुख नहीं चाहिए। उसे अपने बच्चों का सुख चाहिए, उसको प्यार चाहिए, उसको कोई ये चाहिए कि कोई हमारी इज्जत करे, हमारा आदर करे, हमें प्यार दे, हमसे कोई आते जाते पूछे कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, तो वो अपने परिवार वालों के लिए। ये नहीं कि नौकर चाकर रखे हुए हैं, तो नौकरों से सुख वो तो नहीं होता जो अपने बच्चों से मिलता है।
0: बचपन और युवावस्था में भोगे अधिकार बुढ़ापे में अनुदान बन जाते हैं। 60 तक पहुंचते पहुंचते मेहनत और मशक्कत नहीं हो पाती, आर्थिक सहारा भी टूट जाता है, और लोग जीते हैं मात्र वर्तमान। अतीत का छोर पकड़े ढकेले जाते हैं उस भविष्य की ओर जहां केवल अंधेरा है, सब कुछ अनिश्चित।
3: परिवार से कटे, उपेक्षित, ये

0: वह वृद्धजन एक अभिशप्त जीवन जीते हैं। लोगों से अस्वीकृत और अपने से खारिज करार होने पर।
1: ये है श्री सी हरिशंकर, मद्रास निवासी।
2: मेरा पोता माँ बाप का घर आता है, बहुत अच्छा लगता है।
3: अच्छा।
2: में बड़े हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आजकल की जो पीढ़ी है वो थोड़ा शांति से काम करना सीखे और वरुण का आदर करना सीखे। ये नहीं समझे कि वे ही सब कुछ जानते हैं और बड़े लोग कुछ जानते नहीं है।
0: मद्रास के ही श्री एम आर कंकारिया ने बताया,
4: वो तो प्रकृति का नियम है, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है बुढ़ापा आता है और इसे आदमी को खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए, यही मेरा अभिमत है। और अगर खुशी से आदमी स्वीकार करता है तो ही उसका बुढ़ापा उसके लिए वरदान साबित हो सकता है। और जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़े तो उसको ज्यादा से ज्यादा सामाजिक काम में अगर वो भाग लेवे और परोपकार के काम में भाग लेवे तो उसका बुढ़ापा शांति से निकलेगा, ऐसी मेरी राय है।
0: श्री राम गोपाल दीक्षित, 73 वर्षीय हमीरपुर के सर्वोदयी कार्यकर्ता।
5: जिनसे भी हमारा संपर्क है, हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं, चाहे वो युवा हो चाहे वृद्ध हो, हम सबको यही सलाह देते हैं कि हमारे जीवन भर का ये अनुभव है कि यदि हम अपना शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, चुस्त रखना चाहते हैं, तो हमें योगासन व्यायाम अवश्य करना चाहिए।
1: वैसे तो 25 साल की आयु के बाद ही शरीर क्षय धीरे धीरे आरंभ हो जाता है। अपना शरीर तंत्र एक निश्चित अवधि के लिए बना है, हम उसे संभाल कर रखें तो ठीक से बीतेगी।
0: कलकत्ता के श्री सुरेंद्रनाथ मल्होत्रा 60 के ऊपर हैं, लेकिन हैं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त।
6: अभी थोड़े दिन की बात है, हम लोग 7-8 दोस्त गांव जा रहे थे तो रास्ते में कोई रात को 12:30 बजे का टाइम था, तो हमने एक जगह गाड़ी खड़ी करके तो वहाँ डांस करना शुरू कर दिया और सबके सब हम लोग कम से कम आधा घंटा तक वहाँ नाचे और गांव के लोग बाहर निकल के आ गए देखने के लिए क्या कर रहे हैं, तो बहुत हंसे गए बूढ़े लोग नाच रहे हैं। तो हमने तो पूछा आप लोग क्यों हंस रहे हो, तो बोले बूढ़े बूढ़े नाच रहे हैं। मतलब हम तो बूढ़े हुए नहीं भाई, हम तो अभी तक तो आप लोगों से जवान है, हमसे दौड़ के देख लीजिए। बूढ़ा तो जब भी आदमी होता है जब सोच ले महसूस करे कि मैं बूढ़ा हूँ।
1: बुढ़ापे के बारे में कलकत्ता के ही मोहम्मद गुलजार और हकीम मोहम्मद का कहना है,
7: अंदाजा 71 साल, मैं अभी तक अपने आप को बेहतर महसूस करता हूँ। पाकीदा खुराक, पाकीदा ख्याल, अच्छी आबो हवा, अच्छी औलाद, मुझे हर तरफ से खुशी है, मैं खुशी महसूस करता हूँ।
8: मेरी उम्र 72 साल की है, सन 1918 की पैदाइश अक्टूबर की। मैं घरेलू हालात के हिसाब से तो खुश हूँ, मुतमईन हूँ और ख़ानदान के बड़े की हैसियत सायेदार दरख्त की होती है, तो मैं उन लोगों के लिए बाई से तकलीफ नहीं बल्कि बाई से राहत और बाई से आराम हूँ।
0: बम्बई के श्री नारायण देसाई बहुत प्रबुद्ध मन के हैं।
9: अभी 70 होने वाले हैं। हमारे इर्द गिर्द जो जवान लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये बिन जरूरत के लोग हैं। ये जो एक फीलिंग उन लोगों में हमको दिखाई देती है, खासकर व्हीकल्स में और ट्रांसपोर्ट में और आते जाते ट्रेन में और ऐसा वैसा कि बुरा है बुरा है। खासकर तो दूसरे लोग ही हमें ये कॉन्शियसनेस पैदा करते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं और बूढ़े होने वाले हैं।
0: डॉक्टर सी आर आर वर्मा त्रिवेंद्रम में रहते हैं, रिटायर्ड इंजीनियर हैं और केरल नेचर क्योर फेडरेशन के अध्यक्ष हैं।
10: यूजुअली आई नेवर फील टायर्ड, जनरली आई ऑलवेज फील फ्रेश बाय एडजस्टिंग माय डाइट, बाय हैविंग ए पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ।
0: मैं कभी भी थकावट महसूस नहीं करता, मैं तो हमेशा तरोताजा रहता हूँ। मेरा खान पान नियमित है, मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आने वाले रोगियों को सलाह देता हूँ और समाज सेवा के काम करता हूँ। काम से मुझे संतोष मिलता है और यही मेरी प्रसन्नता का रहस्य है।
1: जो कभी पूरे परिवार का केंद्र रहा हो, करता रहा हो, एक दिन अचानक अपने आप को उन्हीं लोगों द्वारा बहिष्कृत महसूस करे तो कैसा लगेगा। मिसेस जोन्स सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं और समझ सकती हैं समय का इस तरह से उन्हें

0: कतरा कर निकल जाना, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाता वो है अकेलापन। कहती हैं उन्हें दिनों बीत जाते हैं लोगों से बात किए।
1: शायद ऐसे ही किसी कड़वे कसैले अनुभव के बीच महाप्राण निराला ने कहा होगा।
2: मैं

0: भारतीय जीवन दर्शन बहुत सुचिंतित है और इसका ठोस प्रमाण है चार आश्रमों की व्यवस्था। जुग-जुग जीवों की मंगल कामनाओं ने न जाने कितनों की कमर कमान कर दी। बेचारे आयु तो पा गए लेकिन आयु ढोने की सामर्थ्य शरीर नहीं जुटा पाया। दिल्ली के श्री राहुल बख्शी का कहना है,
1: हृदय अवस्था नहीं हो तो अच्छा है, वह तो बहुत ही दुखदायी और दयनीय होती है। इसमें ना तो कोई ख्याल रखता है और ना ही कोई ख्याल रखने के लिए विचार भी करता है। मेरे परिवार में चार बच्चे हैं और चारों ही मैंने लिखा पढ़ा के किसी भी तरीके से उनका अच्छे परिवारों से विवाह कराया और अब ये स्थिति आ गई है कि कोई भी हमारी सुनता नहीं है।
2: बंबई के संगीतज्ञ श्री मानिक दास ठाकुर दास इस दिशा में भाग्यवान हैं।
3: इसके लिए गुनेगार हम होते हैं न तो बच्चे। बच्चों को तो उनकी उम्र में तुम्हारी उम्र में प्रेम और माया दिया है, उस वक्त कायदा बजा है क्योंकि ऑफिसर के पोस्ट में था, रिटायर हो जाने के वाले वही ऑफिसर के आम में से गई नहीं, डिसिप्लिन चाहिए यूं चाहिए नहीं। अरे उसके उम्र में आनंद जब लेने का वक्त है, उस नए आनंद लेगा तो कब लेगा? अब तुम्हारे नसीब में नहीं मिला तो उसका कसूर क्या वो बच्चे के ऊपर?
0: जयपुर के एक संपन्न परिवार की श्रीमती कमला पंडित की बात और है।
4: हमने जो अपना जीवन व्यतीत किया है बहुत ही अच्छा और एक यानी हमारे जमाने का शाही जीवन ही कहना चाहिए, लेकिन अब वृद्धावस्था में हमको ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे से हमारे संबंधी भी दूर होते जा रहे हैं। बच्चे हैं वो भी ऐसा समझते हैं कि हम उनके लिए एक भार की तरह भार स्वरूप हैं।
0: और ये है रघुवीर।
5: वैसे मेरा नाम तो दरअसल रघुवीर है लेकिन मुझे रघु कहकर पुकारते हैं सब लोग। मैं यहाँ रिक्शा चलाता हूँ, उम्र मेरी कोई 70-72 साल की होगी।
6: इतनी उम्र में भी आप रिक्शा चला लेते हैं?
5: फिर क्या करें साहब, बात ये है कि इस वक्त मजबूरी है, महंगाई है, कहीं वो एक खेती नहीं हुई थी तो घर पर यहाँ आ गए, यहाँ आए तो कहीं पे फिरते रहे, कोई काम नहीं देता था तो किसी एक दोस्त ने एक रिक्शा दिलवा दी है तो उससे अपना गुजारा कर लेते हैं। अब उसके तो ये साहब कि रोज कुआं खोदना, रोज पानी भरना है, बच्चे जरूर हैं और बड़े भी हैं लेकिन अपना अपनी गृहस्थी लिए बैठे हैं, कौन किसकी पूछता।
2: बढ़ती उम्र में धर्म बहुत बड़ा सहारा बनता है। मथुरा की श्रीमती शीला गोस्वामी।
7: मेरी उम्र है 75 साल की और पति को उम्र है 41 साल हो गई और अभी 2 साल हुए जो लड़का भी गुजर गया। अब मेरा कोई साधन नहीं है। मथुरा में एक मंदिर है उसमें रहती हूँ, उसमें ही प्रसाद मिलता है मुझे, उसे पा लेती हूँ, ऐसे जीवन को व्यतीत कर रही हूँ।
0: प्रतापगढ़ के श्री विशंभर नाथ का कहना है कि हमें भविष्य की चिंता पहले से ही करनी चाहिए।
8: उसको अपने जीवन को बिताने के लिए ऐसा चाहिए कि शुरू से ही उसके लिए ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए कुछ बचत योजना बनाए रखना चाहिए जिससे कि चौथापन आने के बाद हमको किसी का सहारा न लेना पड़े और उससे हम अपना कार्य करते रहें।
0: फ्रांस के प्रसिद्ध मनीषी ज्यां पाल सार्त्र का कहना था, मैं बूढ़ों से घृणा करता हूं। उस समय सार्त्र की उम्र 70 साल थी। उनका मतलब बूढ़ों से नहीं वरन बूढ़े सोच से था। बंबई की समाजसेवी श्रीमती जसवंती देसाई की बात काफी उत्साहवर्धक है।
9: मैं 14 नवंबर को मुझे 66 कंप्लीट हो गए और 67 में मैं प्रवेश करूंगा।

0: एक मैं बात खास बता दूं कि पहले से हमार मेरा एक ये रहा है कि कभी एक अब उसको कहिए जो अर्जुन की गीता के बराबर है कि संसार में आप रहते हुए भी उससे अलिप्त रहिए, तो इसी दृष्टि से कभी इतनी अपेक्षाएं मैंने नहीं रखी। और मुझे यहाँ खलील जिब्रान का एक शब्द याद आता है कि बहता हुआ पानी और बीता हुआ जमी जीवन वो कभी उसी मार्ग पे वापस नहीं आता है। और बुढ़ापा वो भी एक कुदरत की देन है, वो हमारे सर पे अभिशाप नहीं है, हमारे पूरे जीवन का निचोड़ है।
1: प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक बर्नार्ड भरूच ने एक किताब लिखी है लाइफ आफ्टर 80। ये किताब उन्होंने 80 साल के होने के बाद लिखी। उनके अनुसार 80 साल का आदमी भी अच्छा जीवन जी सकता है। हाँ, आप 20-25 साल के जवान की तरह दौड़ भाग तो नहीं कर सकते। डॉक्टर एच एस अंबानी ने बताया,
2: मैं पहले यूपी में सर्विस में था, वहाँ से कंसल्टेंट होकर के जब रिटायर होकर के दिल्ली आए तो हमने एक अपना फाउंडेशन जिसका नाम सेंट मीरा फाउंडेशन है, उन्हीं के अंडर एक ओल्ड एज सेंटर अभी हाल में एज केयर इंडिया के सहयोग से इसको खोला है। जैसे आदमी बूढ़ा हो जाता तो उनकी हर चीज़ जो है हल्की हो जाती, उनको कोई ना कोई सहारा चाहिए। साथ ही साथ एक चीज जो है बहुत जरूरी जो है, जो एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जबकि फॉरेन कंट्रीज में पता नहीं कितने तक इस चीज की मतलब आगे बढ़ चुका है, हमारे इतने 120 मेडिकल कॉलेज में से एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है जिसमें यह कि इसका अलग से डिपार्टमेंट हो, जबकि वहां सेपरेट डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स है। तो मेरा सुझाव यह है कि कम से कम गवर्नमेंट को इसमें रुचि अब थोड़ी ज्यादा देनी चाहिए।
1: श्री एनएल कुमार एज केयर ऑफ इंडिया से सक्रिय रूप से जुड़े हैं।
3: एज केयर का फाउंडर हूं और आजकल मैं इसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं। जो बुजुर्ग लोग दिल्ली के आसपास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी या ये स्लम डेवलपमेंट्स हैं या और ऐसे ऐसे पछड़े हुए इलाके हैं, उनमें बुजुर्ग लोग जो हैं उनके लिए सेहत के लिए कोई साधन नहीं है, तो हम लोग वहाँ जाते हैं और महीने में 2 कैंप करते हैं जिसमें कि हमारे डॉक्टर्स उन बुजुर्गों की जांच करते हैं और उनको दवाई वगैरह देते हैं।
4: इसी प्रकार की न जाने कितनी और देशी विदेशी संस्थाएं हैं जो वृद्ध जनों की चिंता करती हैं, सहायता करती हैं। मतलब ये कि बुढ़ापा अभिशाप या वरदान नहीं होता, वो मात्र एक अवस्था है, मौसम, जैसे जाड़ा, गर्मी या बरसात।
1: आशा ये है कि वृद्धावस्था एक सत्य है और अवश्यंभावी भी, किंतु उसे आमंत्रित मत करिए, अपने घर का पता मत बताइए। आपका दरवाजा ढूंढते ढूंढते उसे काफी वक्त लगेगा।
5: ताक झांक आज भी होती है उसी खिड़की से जो मेरी उम्र की ढहती हुई दीवार में है।
4: इस ढहती हुई दीवार को अच्छी देखभाल और मरम्मत से काफी कुछ दिन चलाया जा सकता है। डॉक्टर वीणा कपूर एक मनोचिकित्सक हैं।
6: हालांकि बुढ़ापे में हम फिजिकल चेंज ज़्यादा देखते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब इंसान अपने बीते सालों के बारे में सोचकर कुछ नॉस्टैल्जिया सा महसूस करता है और आगे का एक अजीब सा भय जिसमें घबराहट और इनसिक्योरिटी होती है फील करता है, तो समझिए कि बुढ़ापे की शुरुआत है। कई बीमारियाँ हैं जो कि ज़रूरी बुढ़ापे में आती हैं, जैसे कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जिससे हार्ट अटैक्स होते हैं, या स्ट्रोक्स होते हैं जो पैरालिसिस के फॉर्म में आते हैं। अब इन चीज़ों के बचाव के लिए डाइट में वेजिटेरियन प्योर शाकाहारिक फूड ज़्यादा अच्छा माना गया है। इसमें सब्जियां, फल, दूध की तादाद ज़्यादा और सीरियल्स जैसे चावल है, चपाती है, तली हुई चीज़ें हैं वो कम खानी चाहिए। अल्कोहल, सिगरेट और नशे की चीज़ें

0: अवॉइड करनी चाहिए। सैर करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। अपना जनरल एटीट्यूड हमेशा चेयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए।
1: आज स्थिति कुछ विचित्र है। आधुनिक सभ्यता के तामझाम और चमक दमक में जीवन की सादगी कहीं खो गई है। कोठरी नुमा घर, छोटे वेतन और आकाश छूती आकांक्षाएं, और इसके बीच सबको पीछे धकेल कर आगे निकल जाने की होड़ बूढ़ों को कहां जगह देगी।
2: वृद्ध जनों की समस्याएं आर्थिक हैं, शारीरिक हैं, सामाजिक हैं, और साथ ही साथ उनकी वे समस्याएं भी हैं जो उनके वर्ग विशेष से ताल्लुक रखती हैं। हेल्पेज इंडिया के डायरेक्टर मेजर जनरल रघुबीर पनू ने बताया,
3: सर्विस में होते हुए भी मैंने काफी सीनियर सिटीजंस चेन्स बनाई, और यहाँ तक के जब मैं साउथ इंडिया के कमांड में था तो मद्रास के करीब तो हमारा पहला ओल्ड एज होम जो फौजों को एक सर्विसमैन के लिए बना वो मैंने बनवाया गंगोर के इलाके में, और इस तरह से मेरी ये दिलचस्पी काफ़ी हद तक कायम थी। और जब मैं रिटायर हुआ तो फिर मुझे और हेल्पेज इंडिया ने मुझे ये मौका दिया कि बुजुर्ग तबके की इमदाद की जाए, और उसमें मैं आज का मुबतला। देखिए, हेल्पेज इंडिया एक ऐसी संस्था है जो कि तमाम बुजुर्ग तबका जो हमारे मुल्क का है उनकी सहायता करती है, न कि सिर्फ एक या दो आदमियों की, इंडिविजुअल्स की हम सहायता नहीं करते और न कर सकते हैं इस वक्त, लेकिन हम सहायता करते हैं उन बाकी संस्थाओं की जो कि वॉलंटरी सेक्टर में हैं और जो कि बुजुर्ग तबके की मदद करने में खुद मुबतला है। इससे हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो रीच है, हमारी जो मदद है बुजुर्गों के लिए, वो ज्यादा दूर तक जा सकती है, क्योंकि इन संस्थाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें हासिल होता है जी, उसकी वजह से हम काफी आगे जा सकते हैं। अभी तक हमने तकरीबन 320 ऐसी संस्थाओं को मोटिवेट किया है जो कि अब हमारे साथ एज केयर की फील्ड में काम कर रही है, और तकरीबन 600 प्रोजेक्ट ऐसे हमने कायम किए हैं, जैसे कि मोतिया जिनको हो जाता है कि बीमारी आंखों में, उनका ऑपरेशंस, हियरिंग एड्स जो बहरापन है उसको दूर करने के लिए, दांत लगाने डेंचर्स, मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स जो कि अस्पताल लोग आ नहीं सकते उनके पास अस्पताल पहुंचाया जाए हमारे मुल्क में, कि हर किसी को दिलचस्पी है हमको बताने के लिए या सरकार को बताने के लिए कि क्या करना चाहिए बुजुर्गों में। तो मैं उनसे यही अर्ज करूंगा कि अगर वो खुद भी कुछ थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दें, इसके अलावा कि हमको वो बताएं कि क्या करना है शौक से, तो शायद अगर हर एक इंसान एक बुजुर्ग का ख्याल रखने लगे, चाहे वो उसी के कुंबे का क्यों ना हो, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा।
1: सुखद संयोग है कि वृद्धजनों की ये समस्याएं अभी हमारे गांवों तक उतनी भयंकरता से नहीं पहुंची है। गांव की गरीबी अपनी बेहाली को भी स्वीकार करती है, और दादी बाबा वहां शहरों की तरह आसानी से अस्वीकृत और खारिज करार नहीं दिए जाते।
2: अनेक देशों में वृद्धजनों को ज्येष्ठ नागरिक का सम्मान दिया जाता है। जापान में तो एक दिन विशेष ही वृद्धों के नाम समर्पित है। अपने देश में भी अनेक ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं और लोग हैं जो वृद्ध जनों की समस्याओं का निराकरण करते हैं, उनके लिए ऐसा वातावरण बनाने की चेष्टा करते हैं जिसमें वे अपने आप को अकेला और अनुपयोगी न समझें।
1: सच पूछिए तो चौथे पहर की तीखी धूप झेलते ये वृद्धजन भी समाज के अभिन्न अंग हैं, जो उसको निरंतरता देते हैं, दायित्व बोध कराते हैं और तन मन से नई पीढ़ी की राह संवार रहे हैं।

चौथे पहर की धूप। अभी आप सुन रहे थे ये रूपक। आलेख एवं प्रस्तुति उमेश दीक्षित की थी। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम कुछ सुनवा रहे हैं गायन। कलाकार हैं विदुषी किशोरी अमोनकर। आज हम आपको सुनवा रहे हैं इनका गाया राग संपूर्ण मालकोस। आपके साथ तबले पर संगत की है बाल कृष्ण अय्यर ने। तो आइए सुनते हैं विदुषी किशोरी अमोनकर का गाया राग संपूर्ण मालकोश।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायन। कलाकार थी विदुषी किशोरी अमोनकर। आज आपने सुना इनका गाया राग संपूर्ण मालकोस। आपके साथ तबले पर संगत की थी बालकृष्ण अय्यर ने। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था।

विश्व संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायन। कलाकार थी विदुषी किशोरी अमोनकर। आज आपने सुना इनका गाया राग संपूर्ण मालकोस। आपके साथ तबले पर संगत की थी बालकृष्ण अय्यर ने। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची

0: 7 men's cricket, India were 124 in 13.3 overs against England in the first T20 international of the five-match series at the Riverside Ground in Chestiller Street when reports last came in. Earlier, Indian skipper Shreyas Iyer won the toss and opted to bat first. Spinners Varun Chakrabarty and Ravi Bishnoi have returned to the playing 11 for India, while Vaibhav Suryavanshi has been kept on bench. The men in blue will look to bounce back from the shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 241.5 मीटर था, 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी छोटी घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:53 पर अपने कार्यक्रम साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।